इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: दर्शन के इस बहुत ही प्यारे से पवित्र प्रोग्राम में आप सभी का मैं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो हैं ऋतुपर्णो दास साहब, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं दास साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, स्वागत करते हुए कहूंगा कि हमारे सभी दोस्तों के मुखातिब होइए, प्रेजेंट करिए, हमें बताइए ना आप भला कौन है, कहां है, क्या करते हैं आप दास साहब।
1: मेरा परिचय है, दो परिचय है। एक परिचय है कि मैं फिलहाल रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैनेजमेंट के अध्यापक हूं। मेरा दूसरा परिचय है मैं एक गायक हूं। मैं खास करके भक्ति गीति के ऊपर, जिनके जहां पर आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी के ज्यादा प्रभाव हो, ऐसे भक्ति गीति निराकार ईश्वर के ऊपर मैं फिलहाल उस पे मैं ध्यान दे रहा हूं, और उसके ऊपर मैं गीत रचना और गीत गाना, गीत का सुर बनाना, ऐसे कामों में मैं इन्वॉल्व हूं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जाहिर से बात है दोस्तों, आपने जाना कि दास साहब दरअसल एक अध्यापक हैं, मैनेजमेंट कॉलेज में सीनियर फैकल्टी हैं, साथ साथ सिंगर हैं और निराकार भजनों की रचना भी करते हैं दास साहब। तो चलिए दास साहब के साथ विचार विमर्श करने के लिए हम तैयार हैं, आइए कुछ सीखते हैं दास साहब से कि दीस दास साहब ने इस विषय में क्या समझा। दास साहब, सबसे पहली बार स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्म के बारे में आपने कब सुना, किसने बताया था आपको आध्यात्म क्या होता है, कब?
1: मैंने पहली बार आध्यात्मिकता के बारे में अपनी मामा को सुना। मेरे मामा का नाम था डॉक्टर प्रणव रंजन घोष, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में बांग्ला साहित्य का अध्यापक थे। वो बाल ब्रह्मचारी थे और वो आध्यात्मिकता के मूर्ति थे। उन्होंने काफी खूब सारे किताब, खूब सारे रचना लिखे थे आध्यात्मिक कथा के ऊपर। उनका पीएचडी का जो टाइटल था वो आध्यात्मिक बांग्ला साहित्य में स्वामी विवेकानंद के प्रभाव, ये उनका था पीएचडी का टाइटल। वो एशियाटिक सोसाइटी के फेलो भी थे, तो उन्होंने मुझे बड़ा किया है, तो मैं उनसे ये आध्यात्मिक कथा सीखा।
0: ऑलराइट, तो जाहिर सी बात है इतने प्रबुद्ध इंसान से, इतने प्रबुद्ध व्यक्तित्व से आपने अध्यात्म के बारे में जाना, तो हमें भी बताइए कि अध्यात्म क्या मतलब क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी इज, हम क्या समझे अध्यात्म से, कोई एक साधारण व्यक्ति क्या समझे?
1: आध्यात्मिक मतलब के दो मतलब होता है, दो मायने होता है। एक है जो थियोरिटिकल आध्यात्मिकता है, स्वयं को खोजना, स्वयं की आत्मा को खोजना और उसको ये विश्वात्मा से उसको मिलाना, ये थियोरिटिकल। प्रैक्टिकल है, आध्यात्मिकता का अर्थ है भेदभाव नहीं करना और सभी के प्रति निस्वार्थ प्रेम करना।
0: ओके, ऑलराइट। सो आज ये चीज और बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जैसा दास साहब ने बताया कि आध्यात्मिकता के दो मतलब हो सकते हैं, एक जो लिटरल मीनिंग है, उसका जो लिटरल मीनिंग है वो है आत्मा का अध्ययन, परमात्मा के साथ मिलन और आपस में उन दोनों का संबंध सीखना, और दूसरा जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दास साहब ने बताया है कि निस्वार्थ भाव से सभी के साथ एक जैसा व्यवहार। बहुत सुंदर, एक नई तरीके की परिभाषा अलग शब्दों में आज दास

0: आपने हमें बताई है। बहुत सुंदर। अगर इसी स्पिरिचुअलिटी के बारे में आगे बढ़कर बात करें तो चलिए, आपके तो मामा जी ने आपको इतने प्यार से बताया, आध्यात्मिकता के बारे में इतना डीप नॉलेज दिया, क्या आज के जो यूथ जनरेशन है उसको ये स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता ज्यादा समझ में आती है? और अगर आती है तो वो किस तरीके से इसको परसीव करते हैं? हाउ डू दे टेक इट? स्पिरिचुअलिटी को क्या समझते हैं वो?
1: ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, हम इस पर कोई सामान्यकरण या जनरलाइजेशन नहीं कर सकते।
0: ऑलराइट।
1: लेकिन ज्यादातर आजकल के जो यूथ है, इन लोगों को अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने का ज्यादा इन लोगों का टेंडेंसी है। तो इन लोगों में से खूब सारे लोग आजकल मंदिर में जाते हैं, मंदिर मस्जिद ये इसमें जाते हैं, जाके दान करते हैं। तो एक तरह का ये इनको दान करना, जो अपना अपना जो आय है, अपने आय का एक अंश दान करना, ये लोग एक बड़ा समाज सेवा मानते हैं, ये एक तरह की यूथ में दिखता है।
0: ओके।
1: और दूसरे यूथ कुछ है जो आध्यात्मिकता में के लिए ज्यादा कुछ सोचते नहीं है, वो लोग वी कॉल देम मटेरियलिस्ट। ये लोग भोगवादी होते हैं। तो इनको आगे जाके करियर बनाना या बिजनेस में लाभ करना, ये एक तरह का होता है। और जहां पे बिजनेस में लाभ करना है, वहां पे वो लोग मंदिर मस्जिद में भी दान करते हैं, लेकिन वो उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हिसाब में दिखाते हैं उनके रिपोर्ट में शो करने के लिए क्या इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलने के लिए। अगर आप दान करेंगे किसी मंदिर में, भलाई आपका बिजनेस ना हो, आप अगर सैलरीड इंडिविजुअल है, किसी मंदिर में आप दान करिए, चैरिटेबल ट्रस्ट में दान करिए, आपको इनकम टैक्स का छूट मिलता है।
0: हाँ।
1: ये एक है। और फाइनली कुछ पढ़े लिखे उच्च लेवल के व्यक्ति है, मैंने उन लोगों को देखा, उसके अंदर नोबेल लॉरेट भी है, नोबेल प्राइज विजेता भी है, वो लोग युक्ति यानी लॉजिक या रीजनिंग पे बिलीव करता है।
0: ओके।
1: वो लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते हैं। उनके लिए विज्ञान ही सब कुछ है, विज्ञान वैज्ञानिक आविष्कार जो होता है वो लोग उसके बेसिस पे उसके लॉजिक पे आगे जाके चलते हैं।
0: ओके ओके ओके।
1: और जगह पे जाके वो लोग रुक जाता है, जैसे मैथमेटिक्स में द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को उतना तक जाके उसके बाद वो लोग रुकते हैं, फिर सोचते हैं कि उसके आगे भी कुछ है, बस इतना तक।
0: ओके ओके। बहुत क्लियर है कि आज का यूथ दरअसल स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या सोचता है और उसको कैसे परसीव करता है, ये चीज दास साहब ने हमें समझाई। बिल्कुल ठीक दास साहब। जब हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आप ही का गाया हुआ एक प्यारा सा भजन हम अपने सुनने वालों को सुनाएं, फिर वापस लौटते हैं आपसे बातचीत के लिए, विचार विमर्श के लिए।

0: बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही प्यारी गायकी। दास साहब, आगे बढ़ते हुए इस विषय में बात करें तो आध्यात्म के बाद एक बहुत ही कॉमन शब्द है जो बार बार डिस्कस किया जाता है, समझने की जिसको आवश्यकता है, वो है धर्म, यानी कि रिलीजन। क्या है धर्म आपके हिसाब से? आप क्या परिभाषा बताना चाहेंगे धर्म की?
1: मेरे हिसाब से, या तो मैंने जितना किताब पढ़ी है और जितना आध्यात्मिक लोगों की, व्यक्तियों की जीवनी पढ़ी है, उसके हिसाब से धर्म और आध्यात्मिकता एक दूसरे का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। कोई धर्म समझो कि, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग, कि मैं निराकार ईश्वर में विश्वास करता हूं, तो उसके बारे में नोबेल लॉरिएट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैज रिटेन रियल लिरिक्स, रियल पोएम्स ऑन हिज डिवोशन टू द फॉर्मलेस गॉड, निराकार ईश्वर। तो उसमें निराकार ईश्वर धीरे धीरे एक जगह पे जाके एक ज्योति के हिसाब से प्रकट होते हैं, जो हमें, इफ वी विजुअलाइज इन अवर माइंड, अगर हम हमारे मन में कल्पना करें, तो निराकार ईश्वर एक ज्योति होता है जिनका कोई आकार नहीं होता है। और ये अच्छे अच्छे क्लासिक इंग्लिश मूवी जैसे 10 कमांडमेंट्स, वहां पर भी ये चीज दिखाया गया, ईश्वर एक ज्योति है, उसका कोई आकार नहीं होता है, कोई गुण नहीं होता है। तो ऐसे और भी धर्म है जो निराकार निर्गुण ईश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इसमें निराकार ईश्वर से जाके हम लोग उस ज्योति में, हम लोग अपने आत्मा को खो देते हैं, मेरे मन की ज्योति उस ज्योति में विलीन हो जाता है, ये होता है आध्यात्मिकता, अगर हम निराकार में विश्वास करें तो।
0: जी जी जी।
1: और अगर हम आकार में विश्वास करें तो उसकी, उसके प्रोसेस जो है वो थोड़ा अलग है, तो वो हम किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, दैट इज एब्सोल्युटली सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। दोस्तों, एक अलग ही तरह से दास साहब ने हमें इस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो रुकिए, एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं और दास साहब का ही गाया हुआ एक और प्यारा सा भजन पहले हम सुने, फिर आगे बढ़े।

0: बहुत सुंदर। अब दास साहब आज की प्रैक्टिकल दुनिया की बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने आध्यात्म आपसे समझा, धर्म आपसे समझा, अब आज की दुनिया में अगर यंग जनरेशन हमारे इस प्रोग्राम को सुन रही है तो वो ये भी जानना चाहेगी और हम भी ये जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का आध्यात्म पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग 90% कह लीजिए, या चलो ठीक है मैं किसी परसेंटेज को यूज नहीं करूंगा, सोशल मीडिया में हम बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं, तो सोशल मीडिया का स्पिरिचुअलिटी पर क्या असर है?
1: सोशल मीडिया में कुछ आध्यात्मिक सामग्री भी मौजूद है, अच्छे सामग्री भी मौजूद है, तो जो सोशल मीडिया में सक्रिय लोगों को मदद कर सकते हैं।
0: जी,
1: जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में खूब सारे पौराणिक कथाएं हैं, उनमें से पौराणिक कथा कुछ ऐसे है जो सारे धर्मों में कॉमन है।
0: ओके,
1: सारे धर्मों में सामान्य है, ऐसे कुछ पौराणिक कथा है। जैसे जो भी व्यक्ति ईश्वर के प्रति अनुराग करता है उसको कुछ ना कुछ दर्द सहना पड़ता है। वो दर्द कहां से भी आए, कहीं से भी आए, किसी आदमी से भी आ सकता है, प्रकृति से भी आ सकता है, समाज से भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ईश्वर के प्रति उसका इतना भक्ति या जो भी है होता है, उसका चाहत होता है ईश्वर के लिए, वो उसको जाके आगे जाके अपना आत्म अनुभव, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलता है, उसको उस स्टेज तक, उस स्तर तक लेके जाता है कि बाद में समाज उससे उपकृत होता है, वो एक बड़ा संत, बड़ा महात्मा बन जाता है, उसके बातें सुन के हजारों भटके हुए लोग सही राह पे आते हैं। तो इसको ये एक तरह का प्रभाव आप बोल सकते हैं जो रिलीजियन या धर्म के प्रभाव होता है आध्यात्मिक कथा के ऊपर। ये ज्यादातर आपके आध्यात्मिक कथा जो निराकार रास्ते में चलते हैं उनके लिए है, निराकार ईश्वर के रास्ते
0: जी,
1: और जो साकार ईश्वर के रास्ते में चलते हैं उनके लिए शायद मेरे हिसाब से ये प्रोसेस थोड़ा ऑपोजिट है।
0: ओके,
1: वो पहले साकार ईश्वर को मानते हैं, मानने के बाद उनको उनका उस ईश्वर के भक्त हिसाब से उनका अपना अनुभव होता है, आत्मा अनुभव, फिर वो इस जगत को अपना अपना जो ऐश्वरिक प्रेम, डिवाइन लाभ वो देना शुरू करते हैं, तब उनसे मानव जाति उपकृत होते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या ढंग से, बहुत प्यारे ढंग से दोस्तों, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, कितने प्यारे ढंग से दास साहब ने इस चीज को क्लियरली एक्सप्लेन किया है। नाराकार ईश्वर और साकार ईश्वर में डिस्क्राइब करते हुए दास साहब ने हमें एक्सप्लेन किया, बहुत सुंदर। आइए दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लें और एक भजन दास साहब की ही बहुत प्यारी सी आवाज में सुने और फिर लौट के आते हैं हम दास साहब के पास।

0: बहुत सुंदर। अब दास साहब देखिए, ये तो थियोरेटिकल बात हुई अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, निराकार ईश्वर के बारे में और साकार ईश्वर के बारे में। अब अगर हम लोग, फिर हम लोगों सोशल मीडिया के बारे में भी बात की, आज का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है दुनिया का। अब हम बात करें एक और प्रैक्टिकलिटी की, आध्यात्मिकता का हमारी जिंदगी में यूज क्या है, हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो क्या अध्यात्म हमारे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग से आजाद होने में हमारी मदद कर सकती है क्या? स्पिरिचुअलिटी वो कैसे करेगी हमें इन सब चीजों से मुक्ति दिलाने में?
1: देखिए सर, एक सही आध्यात्मिक जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में इन जैसे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फियर, ये धीरे धीरे

0: तो उसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को प्रेम करना चाहिए, उनको अपने माता पिता की प्रेम करना चाहिए बिना स्वार्थ के कि माता पिता हमें उनका प्रॉपर्टी देंगे इसके लिए नहीं, ऐसा कोई मोह माया नहीं रहना चाहिए। जब उनका जन्म हुआ माता पिता ने अपने स्वार्थ भूल के उनको बड़ा किया, माता पिता ने कभी ये नहीं सोचा कि ये बच्चे आगे जाके बड़ा होके हम उनको देखेंगे कि नहीं, उनको केयर लेंगे कि नहीं, उन्होंने कोई माता पिता ऐसा नहीं सोचते। तो उनको भी अपने माता पिता को सबसे पहले इसी तरह प्रेम देना है,
1: करेक्ट,
0: फिर अपने बच्चे जो होंगे अपने पत्नी जो होंगे उनके प्रति भी निस्वार्थ प्रेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है ऐसा हो रहा है तो यानी मतलब है आपके परिवार में आध्यात्मिकता की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज शुरू हो चुका है,
1: वाह, ओके
0: यानी आप सभी के अंदर अपने आत्मा को देख रहे हो। यू आर यूनाइटिंग योर सेल्फ विथ ऑल रेस्ट हुसोएवर इज अराउंड यू, आपके साथ जो है उनके साथ आपका आपका आत्मा की एक जोग स्थापित हो गया, यही है आत्मा आध्यात्मिकता।
1: वाह, ब्यूटीफुल, क्या बात बताई आपने। एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में, अलग शब्दों को इस्तेमाल करते हुए आपने बड़ी ही प्यारी चीज हमारे सामने रखी भाई, बहुत सुंदर। कई बार ऐसा होता है कि इस चीज को समझकर भी, आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को समझकर भी लोग बाग इसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उसको अपनी जिंदगी में नहीं उतार पाते। मतलब बात तो वही हो गई, कहने को कुछ और, करने को कुछ और, लेकिन फिर भी कोई एक सीधा साधा सा इंसान हो तो वो क्यों नहीं कर पाता है ये स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस, दास साहब क्यों नहीं कर पाता, व्हाई?
0: क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक आत्म अनुशासन और त्याग की आवश्यकता है, और कुछ जिसको हम बोलते हैं कि फॉर्मल क्वालिफिकेशन या किसी ज्ञानी व्यक्ति की सहचर्य, उनके साथ किसी बने व्यक्ति के साथ रहना, जिसको बोलते हैं कि आपको संग बोलते हैं, साधु संग। साधु ज्यादा मीन साधु का मतलब ये नहीं कि कोई फॉर्मली गेरुआ पहन के घूम रहा है, साधु व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति उनके संगत से ये प्राप्त होता है। इसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। तो आत्मानुशासन, त्याग और ज्ञानी व्यक्ति की संग, ये अगर मिले एक हो जाए तब आपको धीरे धीरे आपके पास आध्यात्मिकता की झलक आना शुरू होगा।
1: ओके, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, बहुत खूब। जाहिर सी बात है, उस तरीके का सानिध्य, उस तरीके का माहौल, उस तरीके का एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ हो, तब हम उस तरफ आकर्षित हो सकते हैं, तब हम प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। सुंदर,
0: बिल्कुल
1: बहुत सुंदर सुधा साहब। तो चलिए एक और प्यारे से भजन के साथ एक पॉज लेते हुए दास साहब की आवाज में सुनते हैं ये प्यारा सा भजन, और फिर हम वापस लौटते हैं।

0: दास साहब, फर्ज कीजिए कोई बहुत ही साधारण सा इंसान, सीधा साधा, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वो आपकी बातें सुनकर, इस प्रोग्राम को सुनकर प्रभावित हो जाए और उसे लगे कि ये तो एक अच्छी प्रैक्टिस है, एक अच्छा अभ्यास हो सकता है, मेरे को शांति मिलेगी, तो आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस वो कैसे शुरू करे? कुछ प्रैक्टिकल इजी रोजमर्रा के स्टेप्स थोड़े से सजेस्ट कीजिए ना।
1: देखिए सर, आध्यात्मिकता की शुरू वो कर सकते हैं ऐसे कि हमारे समाज में आज भी दारिद्र है, आज भी कुसंस्कार सुपरस्टिशन है, आज भी गलत अभ्यास गलत प्रैक्टिसेस है, तो जिनमें जहां पे लोग भटके हुए लोग हैं सही रास्ते में, लोग धीरे धीरे आज के युवा समाज में देखिए, आज के जो समाज ओवरऑल इट इज ज्यादातर इट एग्जिस्ट, ये कहां पे समाज टिका हुआ है आपको दिखेगा, नजर आएगा सोशल मीडिया में, लोग अपने परिवार अपने बंधु इन सबको साथ रहते हैं लेकिन अपने मोबाइल में डूबे रहते हैं, कोई अपने लैपटॉप में डूबे हुए रहते हैं, तो इन लोगों को कोई कुछ समय नहीं है कि ये आध्यात्मिकता के लिए कुछ समय निकाले। लेकिन एक चीज आप जरूरी है, अगर हर व्यक्ति समाज के एक कोई दरिद्र शिशु को, दरिद्र व्यक्ति को, दरिद्र कोई लड़का लड़की जो भी है, वो अपने साध्य के अनुसार, हम जो कोई एक घंटा करके जो दरिद्र शिशु है उनको पढ़ाए, या किसी कहीं पर जाके, खूब सारे मैं आपको बोलता हूँ चैरिटेबल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कलकत्ता में COVID-19 के टाइम में रविन हुड बोल के एक बैच हुआ करता था, जिसमें कॉलेज के लड़के अपने आप को रविन हुड सोचते थे, और जहां पर जिसको खाने की अभाव हो या कुछ द्रव्य की नेसेसरी आर्टिकल्स, जहां पर जिसका भी कुछ भी अभाव हो रहा है, सप्लाई नहीं मिल रहा है, वो लोग जाके उद्योग अपने उद्योग में अपने मेहनत में लोगों को हेल्प करते थे, खास करके ओल्ड कपल्स, बूढ़े पेरेंट्स जिनको अपने पुत्र छोड़ गए, खास करके कुछ दरिद्र फैमिली जो हु आर लिविंग ऑन फुटपाथ, ऐसे करे। तो ऐसे किसी सही ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो समाज के लिए कुछ करता है, कोई ऊपर का दिखावटी नहीं है, ऐसा कुछ है, इसमें लिए कुछ थोड़ा सा टाइम निकाले, निकाल के उनके साथ कनेक्ट करें, ऐसा ऐसा करके हम लोग आध्यात्मिकता का मतलब यही है कि मेरा आध्यात्मिक उन्नति से क्या होगा अगर ये समाज का के लिए भी कुछ अच्छा ना हो, तो हम हमारे आध्यात्मिकता का इस तरह का हम शुरू कर सकते हैं कि हम समाज के काम में आए, समाज मतलब और दूसरे सारे लोग, मेरे परिवार के बाहर जो लोग हैं, सभी आम लोग हो जाए, जो आर्थिक रूप से आपके ज्यादा धनवान नहीं है, इन लोगों के कुछ काम में आए, जो पढ़ाई में पीछे है ऐसे बच्चों को कुछ काम में आए, ज्यादातर आप देख लेंगे सेंट्रल

0: बोर्ड के जो होते हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ऐसे बच्चे पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा पढ़ाई में आगे होते हैं। स्टेट बोर्ड में जो है वो हम लोगों ने देखा है, स्टेट बोर्ड के बच्चे थोड़ा पीछे होते
1: थोड़ा
0: हैं।
1: पीछे होते
0: काफी
1: हैं।
0: बच्चों के पास गाँव में काफी बच्चों के पास सर मोबाइल स्मार्टफोन नहीं होती है।
1: राइट,
0: आजकल के पढ़ाई एआई एमएल से है, बहुत सारे एडुटेक कंपनी है, कॉलेज के पढ़ाई के साथ भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मिलता है जो हमारे जो स्टेट बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे को नहीं मिलता, उनको पता भी नहीं है। तो ऐसे बच्चों को जो पीछे है, ये बच्चे हमारे समाज के जाति है, फ्यूचर है, दे आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। तो वो अगर हम उन बच्चों को भी थोड़ा हेल्प करें, मदद करें थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, तो इसमें आध्यात्मिकता ही, ये आध्यात्मिकता ही प्रैक्टिस है। और कोई व्यक्ति बिना आध्यात्मिकता, उसको पता नहीं स्पिरिचुअलिटी पता नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर प्रेम करके वो अपने आप ये काम कर रहा है, तो वो बिना जाने विदाउट हिज नॉलेज ही स्पिरिचुअल।
1: वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बिल्कुल ठीक है। सिंपल सी प्रैक्टिस है, जैसा कि अभी अभी दास साहब ने बता दिया, नॉर्मल रूटीन, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। आसपास ही बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद लोग मिल जाएंगे जिनकी आपने मदद की, तो आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। भाई वाह, क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर दास साहब की आवाज का एक और भजन हम लोग सुने, फिर आगे बढ़े।

गया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आपको ये भी आज समझ में आया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है या सिमिलैरिटी क्या है, क्या तो समानता है या इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से कैसे देख सकते हैं। बहुत सुंदर। चलिए ना एक और भजन के लिए रुकते हैं और फिर वापस आते हैं।

दास साहब, चलते चलते मुझे ये बताइए कि आगे आने वाला समय जो है, जो भी आज चल रहा है, ठीक है, आपने आध्यात्मिकता की, धर्म की जो कुछ भी जानकारी

0: ज्ञान लिया, आपके मामा जी से लिया, आपने बहुत सारी पढ़ाई की, आपका इंटरेस्ट था, सीखा आपने, और आज का जो करंट प्रस्पेक्टिव है उसमें भी आपने दोनों की रेलेवेंस को, मतलब उसकी क्या कहना चाहिए, उसकी जो रियलिटी है उसको समझा आज के प्रस्पेक्टिव में। अब आगे की बात करें, आगे का जो फ्यूचर है जो कि हम अपने यंग जनरेशन को देकर जाएंगे, उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब रहेगा? क्या आगे बढ़कर, लेट से आगे 20 इयर्स ऑनवर्ड स्पिरिचुअलिटी काम आएगी, क्या उसकी सार्थकता होगी?
1: देखिए सर, निकट भविष्य में युद्ध बिना शादी की भविष्यवाणियां की जा रही है। तब अधिकाधिक लोग संसार की दिखावटी सुंदरता से विमुख हो जाएंगे, वे अपने भीतर झांकेंगे और स्वयं को खोजने का प्रयास करेंगे।
0: ओके।
1: तो ये आने वाले दिन में वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग एक आशा रखते हैं कि आशा नहीं, आशा बोलिए या दुराशा बोलिए, एक तृतीय विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वार, ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं, या इससे भी कम कुछ आजकल नहीं हो रहा है। आजकल का चारों तरफ जो युद्ध की माहौल बनी हुई है, अंतर्देशीय युद्ध की माहौल जो बनी हुई है, इसमें हम लोगों का वो जो भय है हमारे मन के अंदर, वो भय हम लोगों को जब सच हो जाएगा वो युद्ध, तब हम लोगों का बहुत नुकसान होगा। अपने अपने आदमी हम लोग खोएंगे, हम हमारे स्वजन को खोएंगे, हम हमारे संपदा खोएंगे, शायद हम लोग अपना देश भी खो सकते हैं। तो उसमें उसी टाइम हम अपने भीतर भी जाएंगे, क्योंकि दुनिया का आकर्षण हमारे लिए उस टाइम धीरे धीरे कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी में से कुछ लोग अपने आप झांकेंगे, स्वयं को खोजने का प्रयास करेंगे, ये जब वो शांति को खोजना चाहेंगे।
0: करेक्ट।
1: तो ये आने वाले दिन का मुझे भविष्य ऐसा लगता है।
0: ऑल राइट, बिल्कुल सही बात है। आज के प्रस्पेक्टिव में जिस तरीके का भी माहौल चारों तरफ बना हुआ है, हम अलग अलग तरीके से उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। दास साहब ने बिल्कुल न्यूट्रल होकर एक पिक्चर हमें दिखाई है कि ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। तब लेकिन दास साहब का मानना है, और उन्होंने हमें बताया कि आध्यात्मिकता की, रिलीजन की, धर्म की, और इस बारे में विचार करने की सार्थकता, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, नॉलेज, यूटिलिटी बढ़ेगी। सोचना पड़ेगा, मजबूरी में ही सही, विचार तो करना पड़ेगा, क्योंकि दुख इतना ज्यादा हो जाएगा जब कभी किसी अपने को खो देंगे तो अवसाद में डूब जाएंगे, तो फिर आध्यात्मिकता ही है जो हमें बाहर निकालेगी। बहुत सुंदर,
1: बिल्कुल
0: भाई, बहुत सुंदर। दास साहब, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमें बहुत सारी चीजें क्लियर की आपने। सरल शब्दों में बताया कि क्या है आध्यात्मिकता, क्या है धर्म, क्या है उसका यूसेज, क्या है सोशल मीडिया पर उसकी प्रेजेंस, क्या है यंग जनरेशन के लिए उसका मतलब, बड़ी सारी चीजें आपने बहुत ही प्यारे ढंग से और आज के नए भाषा में आपने हमें समझाई। दास साहब, आपके भजन तो फिर सोने पे सुहागा हो गए। जिन बातों को आपने प्यार से समझाया, आपके भजनों ने उसको सपोर्ट किया और हमें बहुत बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया क्या है अध्यात्म और क्यों हमें अध्यात्म को स्वीकारना चाहिए। चलते चलते हमारे सभी सुनने वालों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप दास साहब?
2: सर, आपने मुझसे पूछा कि मैं श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहता हूँ। मेरा उत्तर यह है कि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे को देश या राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव सिखाना चाहिए, राष्ट्र की आत्मा में अपनी आत्मा को देखना सिखाना चाहिए, तभी आध्यात्मिकता स्वतः उत्पन्न होगी। स्वतंत्रता के इतिहास को ही देख लीजिए, हर स्वतंत्रता सेनानी आध्यात्मिक थे। एक और बात यह है कि हर कोई मृत्यु से डरता है, केवल आध्यात्मिकता ही इस भय को दूर कर सकती है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा और बिल्कुल प्रैक्टिकल एडवाइस दी है दास साहब ने। दोस्तों, बिल्कुल सच, एकदम खरी खरी एडवाइस, बहुत खूब। दास साहब, बहुत बहुत आभार है आपका, बहुत बहुत साधुवाद कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत साफ तौर पे आपने कई चीजें हमें बताई और आपके भजन भी हमने प्यारे प्यारे सुने। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: मोस्ट वेलकम सर।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। गली नंबर 9, जहां पपीज गॉसिप करते हैं, चिक्स फैशन शो करती हैं, और लाइफ थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक एक्सपीरियंस है। एक ऐसी जगह जहां लॉजिक छुट्टी पे होता है और हैप्पीनेस फुल ड्यूटी पर। सीन 1, शहर के कोने में एक सीक्रेट जगह। हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जो गूगल मैप्स पे नहीं मिलती, ना उसका एड्रेस क्लियर होता है, ना उसका लॉजिक, पर फिर भी कुछ लोग गलती से वहां पहुंच ही जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो थोड़े बदल जाते हैं। आज की कहानी है गली नंबर 9 की, एक पापा की बेचैनी। शाम का वक्त, ट्रैफिक, हॉर्न्स, नॉर्मल सिटी का क्योस। राजीव ऑफिस से घर लौट रहा है, थोड़ा टायर्ड, थोड़ा स्ट्रेस्ड। दरवाजा खोलता है, आन्या बेटा मैं आ गया, कहाँ हो आप? और एकदम साइलेंस। वो मुस्कुराता है, छुप गई क्या, कहाँ गई मेरी आन्या? पर 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, साइलेंस सेम रहता है। उसकी हार्ट बीट तेज होने लगती है। घर चेक करता है, बालकनी, बेडरूम, किचन, प्ले रूम, आन्या कहीं नहीं। अब वो सिर्फ फादर नहीं है, वो एक डर से भरा हुआ इंसान है। पैनिक हो जाता है, फोन कॉल्स, नेबर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, और सबका जवाब, आन्या को नहीं देखा। राजीव के दिमाग में 1000 थॉट्स चल रहे हैं, किडनैपिंग, एक्सीडेंट, और फिर एक अजीब सी इंट्यूशन उसे ले जाती है गली नंबर 9 की तरफ। जैसे ही वो गली में एंटर करता है, आवाजें धीरे हो जाती हैं, ट्रैफिक की नॉइज गायब, हवा थोड़ी सी हल्की लगती है, और एनवायरनमेंट थोड़ा सा अजीब बट पीसफुल। राजीव रुकता है, सोचता है, ये जगह पहले कभी नहीं देखी, नहीं, पर फिर भी जैसे ये जगह उसे जानती हो, पहचानती हो, और उससे बात कर रही हो। थोड़ा सा आगे बढ़ता है और राजीव फ्रीज हो जाता है। जमीन पर आन्या बैठी है, और उसके सामने एक छोटा सा क्यूट सा पपी, बिल्कुल आन्या के ही साइज का। पर ये नॉर्मल सीन नहीं है, पपी नॉन स्टॉप भौंक रहा है एक्सप्रेसिव टोन में, और आन्या फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ बोल रही है, फिर उसने क्या बोला? राजीव का ब्रेन, ये तो इंटरव्यू चल रहा है। राजीव धीरे से पास आता है, आन्या बेटा, आन्या, पापा इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है, और पपी भाव भाव, ट्रांसलेशन स्पॉइलर मत दो। राजीव, आई थिंक मुझे थेरेपिस्ट की जरूरत है। तभी आसमान बदलता है और बारिश शुरू। राजीव सोचता है, चलो अब घर, पर नहीं, गली नंबर 9 में स्टोरी अभी भी वार्म अप पे है। दूर से एक आदमी आता है, और उसके पीछे 3 टाइनी चिक्स। पर ट्विस्ट क्या है जानते हैं?
सबने कलरफुल मिनी रेनकोट्स पहने हैं, रेड ब्लू येलो सब अलग कलर्स, जैसे रेनबो चला रहा हो चिक्स का। चिक्स फुल कॉन्फिडेंस के साथ कैटवॉक मोड ऑन में। राजीव मन में सोचता है, ये फैशन वीक है क्या? और वो आदमी चिक मॉनसून कलेक्शन 2026 लॉन्च करता हुआ। आन्या क्लैप करती है, पापा देखो कितने क्यूट हैं। और पपी जेलस, वाओ। ट्रांसलेशन, मुझे भी आउटफिट चाहिए। रियलिटी ऑफिशियली ब्रेक होती है। राजीव खुद से, मैं सपना देख रहा हूं या ये सच्चाई है? आन्या, पापा रिलैक्स, यहां सब नॉर्मल है। और तब स्लो मोशन में एंट्री होती है एक टाइनी ची हुआ डॉगी की। नाम प्रिंसेस लोलो। सनग्लासेस, स्टाइलिश वॉक, पीछे दो लोग, कैमरा रेडी। रील शूटिंग चल रही है, म्यूजिक इमेजिनरी बज रहा है। लोलो पोज देती है, हेड टिल्ट, स्लो ब्लिंक, कैप्शन रेडी, रेन वाइब्स ओनली। और राजीव सोचता है, बस अब मैं गिव अप करता हूं। राजीव धीरे धीरे ऑब्जर्व करता है, एक बच्ची पपी के साथ बात कर रही है, चिक्स रेनकोट में खुश हैं और ची हुआ अपनी लाइफ जी रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ कोई स्ट्रेस नहीं है, ना EMI, ना डेडलाइंस, ना SIP, ना ओवरथिंकिंग, सिर्फ एक प्रेजेंट मोमेंट। राजीव के दिमाग में एक थॉट आता है, मैं कब इतना सीरियस हो गया? मैं कब लास्ट बार बिना रीजन के हंसा था? मैंने कब सिर्फ रुक के कुछ फील किया? और उस मोमेंट में गली नंबर 9 से आंसर आता है। राजीव आन्या के पास बैठता है। आन्या बेटा, मैं भी सुन सकता हूँ पापी की स्टोरी? आन्या स्माइल करती है और बोलती है, ऑफ कोर्स पापा। पापी, बाव। ट्रांसलेशन, मेंबरशिप अप्रूव्ड। और उस मोमेंट में राजीव सिर्फ फादर नहीं रहता, वो फिर से एक बच्चा बन जाता है। बारिश रुकती है, लाइट्स नॉर्मल होती हैं। राजीव और आन्या घर की तरफ चल देते हैं। राजीव पीछे मुड़ के देखता है, गली नंबर 9 जैसे कभी थी ही नहीं। दोस्तों, गली नंबर 9 कोई जगह नहीं है, एक फीलिंग है, जहां आप थोड़ा स्लो हो जाते हो, थोड़ा ड्रीम करते हो, थोड़ा इमेजिन करते हो, थोड़ा ऑब्जर्व करते हो और थोड़ा रियलाइज करते हो कि लाइफ उतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जितनी हम बना देते हैं। अगर आपको कभी गली नंबर 9 मिल जाए तो क्या आप रुकोगे या फिर जल्दी में इग्नोर कर दोगे? मैं हूं आपकी दोस्त, थोड़ा सा बचपन बचा के रखिए, थोड़ा पागलपन जिंदा रखिए, क्योंकि लाइफ का असली मजा वही है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: सिलेक्टिव मेमोरी वाला दोस्त, अपनी गलती कुछ याद नहीं, और आपकी गलती डेट, टाइम, लोकेशन, कपड़े सब याद, जैसे मेमोरी नहीं कोई हाईलाइट फीचर हो गया हो।

मॉर्गन मफल, सुबह का शैतान या स्लीपर लेजेंड। नमस्कार दोस्तों, आज का फनी वर्ड है थोड़ा स्टाइलिश, थोड़ा फनी और थोड़ा डेंजरस भी। मॉर्गन मफल सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई जर्मन विलन हो। मैं हूँ मॉर्गन मफल और मैं सुबह को बर्बाद करने आया हूँ। पर इसका असली मतलब बहुत सिंपल है। वो इंसान जो सुबह उठते ही दुनिया से थोड़ा नाराज होता है, मतलब अलार्म बजते ही, क्यों सनलाइट आते ही बंद करो ये ब्राइटनेस, और कोई गुड मॉर्निंग बोल दे तो जवाब मिलता है नॉट गुड। चलिए कहानी सुनते हैं। एक शहर था, नाम था नींद नगर। जी हाँ, नींद नगर। इस शहर में दो टाइप के लोग रहते थे, एक थे मॉर्निंग लवर्स और दूसरे थे मॉर्गन मफल्स। मॉर्निंग लवर्स 5 बजे उठ जाते, योगा, वॉक, सनराइज सेल्फी, सूर्य नमस्कार। और मॉर्गन मफल्स, उनके लिए सुबह एक कॉन्स्पिरेसी थी। इस शहर में रहता था राघव, प्रोफेशनल डेजिग्नेशन सर्टिफाइड मॉर्गन मफल। अलार्म बजता 5 मिनट और 5 मिनट के बाद और 5, और फिर ऑफिस के लिए लेट। राघव का एक ही रूल था, सुबह बिना कॉफी के मैं इंसान नहीं हूं। उसकी मम्मी, बेटा गुड मॉर्निंग, और राघव, कॉफी दो पहले। उसकी दोस्त नैना, तू इतना इरिटेटेड क्यों रहता है सुबह सुबह? राघव, मैं इरिटेटेड नहीं हूं, मैं मॉर्गन मफल हूं। एक दिन ऑफिस में एक चैलेंज अनाउंस होता है, अर्ली बर्ड वीक। जो 7 दिन तक सुबह 6 बजे ऑफिस आएगा उसे मिलेगा बोनस। राघव सोचता है ये तो इंसल्ट हो गई भाई, और नैना, ट्राई कर, तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। राघव बोलता है, सुबह 6 बजे तो मेरी सोल भी ऑफलाइन होती है। नेक्स्ट डे अलार्म सुबह 5:30 बजे पे सेट। अलार्म बजता है, राघव आंख खोलता है और सीधा अलार्म बंद कर देता है। नाइस ट्राई। डे 2, उठने की कोशिश। डे 3, कॉफी गिर गई। डे 4, ऑफिस गया पर बिना बात किए। बॉस कहते हैं, गुड मॉर्निंग राघव, और राघव ओनली ग्लेज, सिर्फ घूरता है। डे 5, राघव सुबह उठ तो जाता है, बाहर भी जाता है और पहली बार सनराइज देखता है। लाइट धीरे धीरे फैल रही है, बर्ड्स की आवाज, हवा ठंडी, और राघव रुक जाता है। क्या ये रोज होता है? नैना हंसती है, हाँ, बट तू तो सोता रहता है। उस मोमेंट में राघव को समझ आता है, सुबह प्रॉब्लम नहीं है, उसका कनेक्शन मिसिंग था। पर अगले दिन फिर अलार्म बजता है, राघव फिर से, बस 5 मिनट और। नैना कहती है, तू चेंज नहीं होगा। राघव बोलता है, मैं इंप्रूव तो हो रहा हूं, कंप्लीटली चेंज होने में टाइम लगेगा। दोस्तों, हर इंसान का एक वर्जन होता है, कोई मॉर्निंग लवर, कोई नाइट आउल और कोई मॉर्गन मफल, और ये परफेक्टली ओके है, क्योंकि लाइफ का मतलब ये नहीं है कि सब एक जैसे हो जाएं, बल्कि ये है कि हम अपने वर्जन को समझकर उसे थोड़ा बेटर बना सके। तो अगर आप भी सुबह उठ के थोड़ा ग्रंपी फील करते हो, अगर आपको भी पहले कॉफी चाहिए और फिर कॉन्वर्सेशन, तो टेंशन मत लो, आप अकेले नहीं हो, आप हो मॉर्गन मफल्स की टीम का एक हिस्सा। आप कौन सा टाइप हो ये जरूर बताना मुझे, मॉर्निंग लवर, नाइट आउल, या फुल ऑन मॉर्गन मफल। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी कॉफी स्ट्रॉन्ग है या वीक? मैं हूं आपकी दोस्त, और अगली कहानी तक याद रखिए, सुबह चाहे जितनी ही मुश्किल हो, एक कप कॉफी और थोड़ी सी मुस्कान सब कुछ ठीक कर देती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: गुड मॉर्निंग विद फ्लावर इमोजी एंड सनराइज इमोजी। सुबह 6 बजे ही इतने फ्लावर्स भेज देते हैं लोग कि लगता है फोन में ही गार्डन उग गया।

सिलेनोफिल, वो चांद जो सिर्फ देखता नहीं महसूस करता है। नमस्कार दोस्तों, आज का वर्ड थोड़ा मुश्किल है पर फीलिंग बहुत सिंपल है। वर्ड है सिलेनोफिल, मतलब वो इंसान जो चांद से प्यार करता है। पर दोस्तों, क्या चांद से प्यार करना इतना सिंपल होता है या उसके पीछे कोई कहानी होती है? चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे लड़के की जो सिर्फ चांद को देखता नहीं चांद में जीता था। आरव, थोड़ा अजीब थोड़ा अलग एक शहर था, नॉर्मल सा, रश, ट्रैफिक, लोग बिजी। और उस शहर की एक बिल्डिंग की छत पर रोज रात को एक लड़का बैठता था, नाम था आरव। अब आरव थोड़ा अलग था, जहां लोग रात को रील्स देखते थे आरव आसमान को देखता था, जहां लोग गुड नाइट मैसेज भेजते थे आरव चांद को गुड नाइट करता था। हेलो चांद, आज तुम थोड़े ज्यादा ब्राइट लग रहे हो, कभी कभी थोड़ा साइड हो जाओ, स्टार्स को भी चांस दो। कॉलोनी के लोग कहते थे ये लड़का थोड़ा फिल्मी है, दोस्त बोलते थे भाई तू गर्लफ्रेंड बना ले, चांद से बात करने से तो बेटर है। आरव हंसता था, गर्लफ्रेंड ऑनलाइन होगी या नहीं पता नहीं, चांद तो रोज आता है। कनेक्शन डीपर था और हम सोच भी नहीं सकते, पर सच ये था आरव का चांद से कनेक्शन फन नहीं था, वो पर्सनल था। बचपन में उसकी माँ उसे सुलाते हुए कहती थी, आरव चांद देखा

एकदम साइलेंस। फिर उसने देखा, उसने फिर देखा, फिर से और फिर से, पर कुछ नहीं। उस रात आरफ को रियलाइज हुआ, आदत भी कभी कभी जरूरत बन जाती है। तभी हल्की सी एक आवाज, तुम उसे ढूंढ रहे हो? आरफ पलट के देखता है, एक लड़की खड़ी है, सिंपल वाइट ड्रेस, आंखों में एक अजीब सा काम। आरफ पूछता है, तुम कौन हो? लड़की कहती है, मैं उसकी तरफ से आई हूँ। आरफ बोलता है, उसकी तरफ मतलब चांद की? लड़की कहती है, हाँ आज वो थोड़ा बिजी है। आरफ कहता है, बिजी? चांद भी कभी बिजी होता है? लड़की बोलती है, अरे भाई इतने लोग उसे देखते हैं, थोड़ा वर्कलोड तो होगा ना। आरफ हल्का सा हंसता है, पर फिर सीरियस, पर वो आज दिख क्यों नहीं रहा? लड़की आसमान की तरफ देखती है, चांद हमेशा होता है, बस कभी कभी हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता, जैसे फीलिंग्स, जैसे यादें, जैसे वो लोग जो चले जाते हैं पर कहीं नहीं जाते। आरफ चुप हो जाता है। लड़की मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हें लगता है सिलेनोफिल का मतलब सिर्फ चांद से प्यार करना है? आरफ बोलता है, शायद। लड़की, गलत, वो इंसान सिलेनोफिल होता है जो अंधेरे में भी रोशनी देख लेता है, जो तन्हाई में भी कनेक्शन फील कर लेता है, जो ऊपर देखना नहीं भूलता और जो यादों को बोझ नहीं रोशनी बनाता है। आरफ धीरे से बोलता है, मेरी माँ कहती थी। लड़की बीच में ही बोल देती है, वो सही कहती थी। आरफ शॉक्ड, तुम्हें कैसे पता? लड़की बस मुस्कुराती है। हवा चलती है, आरफ आंख झपकाता है और लड़की गायब। बादल धीरे धीरे हटने लगते हैं और फिर चांद वापस सुंदर, खूबसूरत, सफेद, आज थोड़ा ज्यादा ब्राइट है। आरफ स्माइल करता है, वो समझ गया, आज वो सिर्फ चांद को नहीं देख रहा, वो उसे फील कर रहा है। दोस्तों, सिलेनोफिल होना सिर्फ एक वर्ड नहीं है, एक नजरिया है, जहां आप अंधेरे से डरते नहीं, उसमें रोशनी ढूंढते हो, जहां आप अकेला फील करते हो पर अकेले होते नहीं, जहां आप ऊपर देखना नहीं भूलते। आज रात जब आप आसमान देखें, तो क्या आप सिर्फ चांद देखेंगे या उसमें किसी की याद, किसी की बात, किसी की मुस्कान और शायद थोड़ा सा खुद को भी? और अगली कहानी तक याद रखिए, चांद कभी गायब नहीं होता, बस कभी कभी हम देखना भूल जाते हैं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: पासवर्ड रीसेट करने वाला इंसान, हर बार लॉगिन करो रॉन्ग पासवर्ड, रीसेट करो, न्यू पासवर्ड कैन नॉट बी सेम एज ओल्ड पासवर्ड। भाई मैं ही हूँ, मुझे ही एंट्री नहीं दे रहे।

0: तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटा भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ में आपकी रेडियो साथी आरजे भावना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हर रोज हाजिर होती हूं आप सभी के बीच में चर्चा का एक नया विषय लेकर। आज भी हाजिर हूं आप सभी के बीच में लेकर चर्चा का एक नया विषय, और आज का विषय है दंत स्वास्थ्य। इस चर्चा के विषय के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस गर्ग, जो कि वरिष्ठ दंत चिकित्सक हैं जिला झाबुआ मध्य प्रदेश के। सर, सबसे पहले हमारे रेडियो स्टेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू
1: सर। आज हम जिस चर्चा के विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है दंत स्वास्थ्य। इसके बारे में सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को कुछ बता दीजिए।
2: दंत स्वास्थ्य जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें क्या है कि दांतों को कैसे अपन स्वस्थ रख सकें, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि जब दांतों में ब्लैकनेस आ जाती है, कालापन आ जाता है और कैविटी फॉर्म हो जाती है, गड्ढा हो जाता है दांतों के अंदर, तो लोग बोलते हैं कि मेरे दांत में ठंडा गर्म लग रहा है ना,
1: झंझनाहट
2: होती है, या फिर उसमें ये बोलते हैं कि सर खाना फंस जाता है जब दांत के अंदर, तो उस समय दर्द होता है, या फिर हमेशा दर्द नहीं रहता है,
1: कभी कभी दर्द रहता है।
2: तो ऐसे समय में मरीज को कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा नाइट में पेन चालू हो जाता है, मतलब असहनी दर्द भी होता है दांतों का।
1: कभी कभी हो जाता है।
2: तो फिर वो नजदीक किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाते हैं या फिर दवाइयों के मेडिकल से खरीदते हैं वो लोग। फिर वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है, जैसे मान लो सूजन आ जाना
1: या मसूड़ों पे सूजन आ जाना,
2: वो दर्द की वजह से
1: जी।
2: ऐसा तो वो क्या होता है दांतों की सड़न, या फिर उसको कैसे हम बचाएं, या क्या ट्रीटमेंट उचित रहेगा उसके लिए, क्या इलाज उचित रहेगा
1: जी।
2: तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति के मुंह में ऐसे ही सिंपल एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब अपन निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कि उसके दांतों में कहीं कालापन आ रहा है, ठीक है, कालापन आ रहा है, तो उसकी क्या वजह है, क्या गड्ढा हो रहा है, इधर कुछ लोग उसको कीड़े लगना बोलते हैं,
1: कीड़े लग गए का यूज करते हैं,
2: कुछ लोग कोचर बोलते हैं, कोचर हो गया है
1: जी।
2: तो उसको अपन कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर उसका
1: उपचार क्या हो सकता है,
2: क्या उपचार हो सकता है। डेंटल में क्या होता है कि सबसे पहले नजदीक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं या जिला चिकित्सालय है, सिविल हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर दंत चिकित्सक की पोस्टिंग है
1: जी,
2: वहां पर मरीज को जाके चेकअप कराना चाहिए
1: जी,
2: है ना, और वहां जो दंत चिकित्सक है उसकी सलाह मानना चाहिए
1: जी,
2: तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट, उचित ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं और ट्रीटमेंट भी करते हैं
1: जी।
2: हमें दांतों का स्वास्थ्य कैसे अच्छे रख सकते हैं बगैर दंत चिकित्सक की उपस्थिति में
1: जी।
2: तो सबसे पहले खाना खाने के बाद, बहुत लोगों का होता है ब्रशिंग टेक्निक नहीं मालूम होती है
1: जी।
2: ब्रशिंग मेथड नहीं मालूम होती कैसे करें, ठीक है, तो सबसे पहले खाना खाने के बाद एक अच्छा क्वालिटी का ब्रश लें और पेस्ट लें थोड़ा सा
1: जी।
2: जो टूथपेस्ट आता है
1: जी।
2: दोनों टाइम खाना खाने के बाद ब्रश करें, हमेशा ही खाना खाने के बाद। क्योंकि खाना ही जो दांतों में फंस जाता है ना, वही दांतों को सड़ाता है
1: जी।
2: मतलब जो गड्ढा होता है या दांतों में कैविटी बोलते हैं इसको, या कीड़ा लगना बोलते हैं, उसकी मुख्य वजह होती है उसमें खाना रह जाना
1: जी।
2: दांतों और मसूड़ों के बीच में, तो वो जो सड़न पैदा करता है खाना, उससे बैक्टीरिया या कीटाणु फॉर्म होते हैं
1: जी।
2: वो कीटाणु ही दांतों को सड़ाते हैं।
1: सर मतलब ये कह सकते हैं कि जो कालापन होता है वो इन फंसे हुए खानों के कारण होता है।
2: हाँ, जो कण रह जाते हैं, खानों के कण रह जाते हैं, उसकी वजह से बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं मुंह के अंदर
1: जी।
2: और वो बैक्टीरिया जो है दांतों को सड़ाते हैं, कैविटी फॉर्म करते हैं। वो फिर बहुत डीप जब हो जाता है, गहरा गड्ढा हो जाता है, तो दांत के अंदर खून होता है जो दांत को जिंदा रखता है, उस तक पहुंच जाता है तो बहुत तेज दर्द होता है। शुरू में ही यदि अपन ब्रशिंग अच्छे से करेंगे बचपन से लेके जब दांत आ जाते हैं, तो दांतों में सड़न नहीं होगी
1: जी। सड़न नहीं होगी तो दर्द भी
2: हाँ, नहीं होगी, तो हेल्दी रहेंगे
1: जी।
2: कई बार क्या होता है, लोग अलग अलग तरीके के मेथड यूज करते हैं, है ना। कुछ लोग दतून करते हैं
1: जी
2: दांतों को साफ रखने के लिए, कुछ लोग उंगली से साफ करते हैं
1: जी,
2: कुछ लोग ब्रश यूज करते हैं। तो जो हम लोग जो रिकमेंड करते हैं, जो सही तरीका है, ये मेरी सलाह है कि खाना खाने के बाद सिर्फ ब्रश यूज करें, क्योंकि उंगली से और दांतों से प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती, दांतों की सफाई नहीं होती है
1: जी सर
2: ऐसा। और ब्रश की क्वालिटी भी अच्छी होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, उसके जो धागे होते हैं ना ब्रश
1: जी,
2: के,
1: ताकि वो गड़े ना और
2: हाँ,
1: करने वालों को दर्द ना हो,
2: दर्द ना हो। तो इस तरीके से दांतों को सड़ने से बचाया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि हो सके तो चिपचिपे पदार्थ नहीं खाना चाहिए, जैसे चॉकलेट है और आपका ब्रेड है, जो दांतों में फंसता है,
1: जो चिपक जाए,
2: हाँ जो चिपक जाती है वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो जब दांतों में चिपक जाता है, आसानी से निकलता नहीं है, तो सड़ने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे मीठा जो रहता है, मीठा शुगर वाले, जिसमें शुगर ज्यादा, हाई शुगर रहता है, उससे दांत सड़ते हैं।
1: तो सर ये बड़े तक तो ये आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन बच्चों को ये समझाना मुश्किल होता है। बच्चे क्या करते हैं, मीठे के वो खुद कीड़े होते हैं, जहाँ मीठा है वहाँ बच्चे हैं, तो बच्चे ये मीठा जरूर खाते, तो उनको कैसे दूर रखा जा सकता है, या फिर उनके दांतों को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है।
2: ये तो क्या है, उनके मदर फादर माता पिता को ध्यान देना पड़ेगा, है ना, कि बच्चों को शुरुआत में ही किसी डेंटल सर्जन के पास, जो दंत चिकित्सक है, जिला चिकित्सालय में, उनसे एक बार काउंसलिंग करवा दे, उसकी सलाह ले लें उससे, कैसे बच्चे ज्यादा मीठा खाते हैं ना, थोड़ा सा उनपे उनको नियंत्रण रखना पड़ेगा कि भाई मीठा ज्यादा न खाएं, और यदि खाते भी हैं तो तुरंत ब्रश कराएं। ऐसा
1: कहने का ये मतलब है कि जब एक बार सुबह उठे तो एक बार ब्रश करें, और जैसे खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद एक बार करें, रात में एक बार, खाना खाने के बाद सोने से पहले। और सर हमने गांव में अक्सर देखा है लोग कोयले का भी उपयोग करते हैं दांतों को साफ रखने के लिए, कुछ लोग नमक का उपयोग करते हैं, तो क्या ये सब सही हो सकता है उनके स्वास्थ्य के लिए?
2: नहीं, उससे क्या होता है, कोयला जो होता है कि पहले जमाने में मैंने देखा था, हम लोग भी बचपन में जब छोटे थे तो गांव में कोयला के यूज करते थे लोग, या बिटको मंजन आता था, है ना
1: जी।
2: तो वो नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि जो जैसे पाउडर फॉर्म में, पाउडर के उसमें आते हैं
1: जी,
2: वो उसमें क्या होता है, खुरदरापन रहता है
1: जी,
2: एब्रेसिव पार्टिकल बोलते हैं इसको, वो दानेदार रहता है, जिससे क्या होता है, दांत का जो एनेमल होता है, ऊपर की जो सफेद परत होती है, उसके मतलब क्षरण होने की संभावना ज्यादा होती है, मतलब वो घिस जाती है, घिस जाती है, तो क्या होता है, फिर वो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ठंडा गर्म लगता है।
1: हाँ।
2: तो कोयला भी नहीं करना चाहिए, और कंडे की जो राख गांव में करते हैं वो भी नहीं करना चाहिए, और जो लाल दंत मंजन है जो पाउडर फॉर्म में आता है, ठीक है कि नहीं, या जो बीको बजट दंती जिसको बोलते हैं, मतलब उसको कुल मिला के है कि पाउडर जो आते हैं खुरदरे, वो नहीं करना चाहिए। पेस्ट फॉर्म में दांत का कोई नुकसान नहीं होता है
1: जी।
2: पेस्ट फॉर्म में।
1: तो सर आप हमारे श्रोताओं को कोई पेस्ट रिकमेंड करना चाहेंगे, टूथपेस्ट?
2: नहीं, ऐसा पर्टिकुलर कोई टूथपेस्ट हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं
1: जी।
2: लेकिन सबसे बेसिक जो होता है कैल्शियम, जिसमें रहता है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, वो थोड़ा सा मात्रा में लेके, ब्रश अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए जो दांतों को क्लीन कर पाए और मसूड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, ऐसा उस तरीके का ब्रश और पेस्ट यूज करना चाहिए। मार्केट में कई तरह के पेस्ट अवेलेबल हैं, कुछ महंगे भी आते हैं
1: जी।
2: इतना मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा महंगे टूथपेस्ट की जरूरत है, सादा सिंपल जो पेस्ट होता है उसको, चाहे वो कोई से भी कंपनी का ले लें उसको, और ब्रश की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, उससे ब्रश दोनों टाइम करें खाना खाने के बाद
1: जी। सर दांतों को स्वस्थ रखने में पानी का रोल हो सकता है क्या? ठंडा पानी पिए, या फिर कुछ लोग होते हैं जो काफी गर्म पानी पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा ठंडा पीते हैं, तो इसका कोई,
2: इसमें ऐसा है कि बहुत ज्यादा गर्म भी यूज नहीं करना चाहिए, और बहुत ज्यादा ठंडा भी यूज नहीं करना चाहिए पानी
1: जी।
2: एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, एक सामान्य तापमान वाला पानी यूज करना चाहिए ये, क्योंकि जब एकदम बहुत गर्म पानी यूज करेंगे
1: जी
2: और उसके बाद तुरंत ठंडा यूज करेंगे या कोई भी वस्तु जैसे आइसक्रीम है या कॉफी है या चाय है, यदि अपन ने हॉट ली और फिर एकदम से ठंडा ली तो उसमें दांतों का जो सिकुड़ना बोलते हैं और दांतों का फैलना ऐसा बहुत पता नहीं चलता है, बहुत ऐसा होता है, इस वजह से दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, कई बार दांत डैमेज भी हो जाता है, मतलब परमानेंटली उसका जो खून है वो चलना बंद हो जाता है, इसलिए सामान्य टेम्परेचर वाला ही लिक्विड चाहे वो पानी हो चाय हो कॉफी हो यूज करना चाहिए
1: जी। सर दांतों को स्वस्थ रखने में मसूड़ों का अहम रोल होता है। मसूड़ों में कई बार हमने देखा है कि दांतों के नीचे लालिमा आ जाती है दर्द की वजह से, तो ये क्यों होता है और इसका उपचार क्या हो सकता है?
2: एक बीमारी होती है जिसको हम लोग जिंजिवाइटिस बोलते हैं हमारी भाषा में, या फिर यूं कहें कि मसूड़ों की बीमारी पायरिया जिसका नाम है
1: जी।
2: वो क्या होता है कि ये जो दांतों को कसा हुआ जो चमड़ी रहती है जिससे दांतों को सपोर्ट मिलता है ठीक है, जो पिंक कलर का होता है मसूड़े जिनको बोलते हैं, वो मसूड़े में यह है कि यदि कोई गंदगी जमा होती है या फिर फूड मटेरियल रहता है या पत्थर जिसको बोलते हैं कैलकुलस बोलते हैं हमारे, पत्थर जम जाता है दांतों के चारों तरफ, या कुछ लोग तंबाकू वगैरह खाते हैं या गुटखा खाते हैं या पाउच खाते हैं या फिर कोई सुपारी खाते हैं मीठी सुपारी भी खाते हैं बच्चे भी आजकल खाते हैं, वो वहां जम जाता है मैल जैसा ठीक है कड़क पत्थर जैसा, वो मसूड़े की बीमारी पैदा करता है, मतलब वहां से मसूड़े खराब होते हैं, होते वो कीटाणुओं से ही है लेकिन उसका सफाई रखना चाहिए, तो जो हमने बताया ब्रश करना तो वो दोनों के लिए लाभदायक है, मसूड़े के लिए भी और दांतों के लिए भी, तो ना तो उससे मसूड़े की बीमारी होगी और ना ही दांतों की बीमारी होगी
1: जी। सर सर हमने कुछ बच्चों को देखा है जो कि अंगूठा चूसते हैं और साथ ही कुछ बड़े जो कि बचपन से ही नशा करते हैं जैसे कि गुड़ाखू, तो इन सब से उनके दांतों को कितना नुकसान हो सकता है, कृपया इसके बारे में बताएं।
2: देखो कुछ आदतें होती हैं जिनको हम लोग बुरी आदत बोलते हैं जो बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान करती है, जैसे खासकर बच्चों में एक थंब सकिंग बोलते हैं इसको, अंगूठा चूसने की आदत है ना, या उंगली चूसते हैं
1: जी।
2: कुछ बच्चे ओट का यूज करते हैं, ओट चूसते हैं है ना, लिप सकिंग बोलते हैं इसको
1: जी।
2: कुछ बच्चे जवान हिलाते हैं अंदर ही और जवान दांतों को धक्का मारते हैं, ऐसी कुछ हैबिट्स बन जाती है उनकी। कुछ बच्चे पेन मुंह में देते हैं, पेंसिल मुंह में देते हैं
1: जी, जी।
2: कुछ बच्चे हमने देखा है नेल वाइटिंग करते हैं, नाखूनों को काटते हैं दांतों,
1: ये बड़ों में भी अक्सर पाया गया है,
2: बड़ों में पाया जाता है, तो नाखून जो काटते हैं ना वो, और थंब सकिंग या फिंगर सकिंग मतलब अंगूठा चूसना उंगली चूसना या फिर ओट चूसना या फिर नेल वाइटिंग करना नाखूनों को काटना या फिर कोई नशे वाली आदत जैसे तंबाकू खाना है सुपारी खाना या फिर ऐसी जो कड़क चीज होती है वो दांतों को नुकसान पहुंचाती है। कैसे नुकसान पहुंचाती है, हैबिट होती है बॉटल से दूध पिलाने की है ना, बहुत सी माताओं को दूध नहीं आता शुरू में तो फिर वो बॉटल से दूध पिलाती है बच्चों को, वो 6 मंथ तक तो ठीक है पिलाना चाहिए लेकिन उसके बाद नहीं पिलाना चाहिए, वो चम्मच से या कटोरी से या गिलास से दूध पिलाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि उससे क्या है भविष्य में जब बच्चा बड़ा होता है तो दांत आड़े तिरछे आते हैं टेढ़े हो जाते हैं, किससे बॉटल का जो दूध पिलाते हैं उससे
1: जी।
2: ऐसे ही नाखून जो होता है
1: जी।
2: नाखून से क्या होता है दांतों में छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं क्योंकि दांत ये नाखून कड़क होते हैं तो नाखून नहीं काटना चाहिए दांतों से है ना
1: जी।
2: एक है आपका अंगूठा चूसना, अंगूठा चूसने की जो आदत होती है उसमें क्या होता है कि ऊपर के जो दांत वो टेढ़े हो जाते हैं बाहर चले जाते हैं
1: जी।
2: और दोनों दांतों के बीच में गैप हो जाता है, जब वो बच्चा 12 13 14 साल का होता है बड़ा होता है जवान होता है तो फिर उसको जब देखते हैं तो वो अंगूठा जो मुंह में रखते हैं उससे दांत बाहर चले जाते हैं और बीच में गैप आ जाता है दांतों के बीच में, तो फिर वो आड़े तिरछे दांत अच्छे नहीं दिखते हैं
1: जी सर,
2: है ना, तो वो नहीं चूसना चाहिए।
1: सर अगर जैसे बचपन में तो ये सब कर चुके हैं अब बड़े हो चुके हैं उनका दांत बाहर आ चुके हैं तो उसको ठीक करने के लिए क्या कोई उपाय?
2: उसका एक उपाय है जैसे मान लो अलग अलग टाइम पे, जैसे कोई बच्चा मान लो 8 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में 12 साल की उम्र में आता है डॉक्टर के पास तो वो लोग उचित सलाह देते हैं, कुछ ट्रीटमेंट भी करते हैं है ना
1: जी।
2: उस समय आजकल आड़े तिरछे दांतों का ट्रीटमेंट होता है जो लगभग सभी डेंटिस्ट करते हैं, सभी दंत चिकित्सक करते हैं, उसको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है ब्रेसेस लगते हैं है ना, उसको तार से दांत को सीधा करते हैं, कुछ अप्लायंस बनाते हैं, कुछ ऐसे डिवाइस बनाते हैं, वो मुंह में पहना देते हैं, उससे दांतों को सीधा किया जा सकता है यदि किसी को ऐसी समस्या हो गई है।
1: जी सर, तो उसे दांतों को कोई नुकसान
2: नहीं, कोई नुकसान नहीं होता उससे दांतों को।
1: जी सर, जैसे अभी हम झाबुआ जिले में हैं और यहाँ के लोगों को समझा पाना बहुत मुश्किल होता है कि आप दांतवन मत करो, ब्रश करो। लोग कहते हैं ब्रश जूठी हो जाती है, उसे बार बार नहीं किया जा सकता, और दांतवन है रोज फ्रेश वो लोग करते हैं, तो उन्हें कैसे समझाया जा सकता है दांतवन और ब्रश का डिफरेंस?
2: नहीं, दांतवन भी मैं स्वयं दांतवन करता था बचपन में, 12th तक, कक्षा 12वीं तक मैंने दांतवन किया, नीम की दांतवन, बबूल की दांतवन। हमारे, मैं भिंड का रहने वाला हूँ तो उधर बहुत ज्यादा बबूल और नीम होता है, और ये उससे क्या है, यदि कूची प्रॉपर बनाई जाए, जो दांतवन होती है ना उसको दांतों से चबा चबा के टाड़ों से अच्छे से कूची बनाई जाए और प्रॉपरली ढंग से चारों तरफ दांतों के क्लीन हो जाए तो कोई बुरा नहीं है दांतों करना, ठीक है। और दूसरा, वो फ्रेश भी रहता है
1: जी।
2: लेकिन दांतों से अच्छा है ब्रश करना, ब्रश इफेक्टिव होता है, ज्यादा प्रभावी होता है, उसको अंदर से पूरा साफ करना, उसके ब्रिसल्स होते हैं।
1: हाँ।
2: तो ब्रश से ही करना चाहिए, मेरी ये रिकमेंडेशन है
1: जी सर। हाँ। सर, कुछ लोगों में ये भी पाया गया है लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है, तो इस दुर्गंध के आने का कारण क्या हो सकता है?
2: मुंह से बदबू आने का तो एक ही कारण होता है कि मुंह में जो डिपॉजिट्स हैं, जो मैल जमा हुआ है, तो उसी से बदबू आती है। तो यदि अपन शुरू से ही अच्छा ब्रश करेंगे, मुंह में कोई गंदगी जमा नहीं होगी, तो मुंह से बदबू नहीं आती है, बहुत कम चांस रहते हैं। बाकी यदि ऐसी समस्या किसी को हो चुकी है तो डॉक्टर पास जाके उसके दांतों की सफाई बोलते हैं डॉक्टर, है ना, वो एक बार सफाई कर देते हैं। कुछ कोल्ले करने की दवाई भी आती है, जो कीटाणुनाशक, जो मुंह में थोड़ी सी दवाई डाल के पानी के साथ मिला के उससे कोल्ले करते हैं और फिर थूक देते हैं, तो उससे भी मुंह के जो बदबू आना बंद हो

0: आती है, ऐसा हम लोग रिकमेंड करते हैं।
1: जी सर। सर ये सफाई कितने दिनों में कराना चाहिए अगर किसी के मुंह से कंटिन्यू बदबू आ रही हो?
0: बार बार सफाई नहीं कराना चाहिए, एक बार अच्छे से डॉक्टर से सलाह समझ लेना चाहिए। तो एक बार सफाई कराने के बाद एक पॉलिशिंग होती है, उसको हम लोग स्केलिंग बोलते हैं
1: जी।
0: और उसके बाद पॉलिशिंग होती है, दांतों को चिकना करते हैं। पॉलिशिंग मतलब कुछ नहीं होता, एक ब्रश आता है जो मशीन से चलता है, उससे दांतों को स्मूथ कर देते हैं, तो दोबारा से वापस गंदगी जमा नहीं होती है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा है और ब्रश नहीं ढंग से करता है, या फिर वो जो नशे की आदत है, कोई तंबाकू खाता है, तो उनको तो फिर बार बार कराना ही पड़ेगी।
1: जी सर, हमारा एक और प्रश्न है आपसे कि यदि किसी को दांतों में बहुत ज्यादा दिक्कत हो, सड़न हो, या फिर उनके में बहुत ज्यादा दर्द हो, या फिर पायरिया का गंभीर बीमारी हो, तो उसके लिए हमारे श्रोता क्या कर सकते हैं, उसका उपचार कहाँ और कैसे करा सकते हैं, कृपया उसके बारे में बताइए।
0: श्रोताओं को मेरा एक ये संदेश है, यदि मान लो किसी को दांतों की बीमारी हो गई है, मान लो पायरिया हो गया है, या फिर दांतों में सड़न है, दर्द होता है ना
1: जी,
0: या उसको रात को नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो वो लोग जो है सभी जिला चिकित्सालय झाबुआ में जो डेंटल क्लिनिक है, यहाँ पे दंत विभाग है
1: जी,
0: है वहाँ पर सभी सुविधाएं हैं। जैसे मान लो आपका दांतों में फिलिंग होना है ना
1: जी,
0: या रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको, RCT बोलते हैं, वो होना, या फिर सफाई, दांतों की सफाई, जो पायरिया जिसको बोलते हैं ना, पायरिया हो गया है उसका ट्रीटमेंट है ना, तो अपने जो जिला झाबुआ के जिला चिकित्सालय है उसमें ये सब सुविधाएं हैं, वो लोग वहाँ के ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इलाज ले सकते हैं, ये सुविधाएं हैं।
1: यदि किसी को दांतों के बारे में कोई भी दिक्कत हो, दांतों से संबंधित या मसूड़े संबंधित,
0: हाँ हाँ,
1: तो वो झाबुआ के जिला चिकित्सालय में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। साथ ही चाहेंगे कि आप अंत में हमारे झाबुआ जिले के श्रोताओं को एक प्यारा सा संदेश दें।
0: दांतों के स्वास्थ्य के लिए जो मेरा एक ही संदेश है कि सभी लोग जो है ब्रश दोनों टाइम करें, खाना खाने के बाद ब्रश करें, और मुंह से संबंधित या दांतों से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके उनको दिखाएं, और वहां से दंत चिकित्सक को दिखाएं, मतलब वहां से रेफर हो जाए पेशेंट जो जिला चिकित्सालय के, उनका यही मेरा संदेश है।
1: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रेडियो स्टेशन पे आने के लिए, और आपने इतना समय निकाला, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी आपने जानकारियां दी और इतना अहम जानकारियां जिससे वो अपने दांतों को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, इसके लिए आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से भी। और साथ ही जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो भी आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, लेकिन वो कर नहीं सकते, तो उनकी ओर से हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
0: थैंक यू मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग शब्दों की सतरंगी दुनिया का है। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो शब्दों से संवाद करती है, जो हर कविता में एक ऋतु का रंग और एक रात की मधुरता घोल देती है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आज हमारे दौर की अजीब शख्सियत गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। वे शब्दों के बारे में कहते हैं, शब्दों के रिश्ते भी अजीब होते हैं, कुछ सुन लेते हैं, कुछ कह नहीं पाते। शब्द जो कभी चुपचाप मन की गहराइयों से निकलते हैं और कविता बनकर आत्मा को छू जाते हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी ही संवेदनशील सर्जक जो शब्दों से संवाद करती हैं, उन्हें जीती हैं और हर रचना में एक ऋतु की रागनी बहा देती हैं। ऋतु रागनी जी, जिनके लिए लेखनी एक सखी है और कविता आत्मा की साधना, उनकी रचनाएं नारी मन की सूक्ष्म संवेदनाओं, प्रकृति की मधुर लय और जीवन के गहरे भाव बोध से सराबोर हैं। वे अनेक सम्मान जैसे मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न, जयपुर रत्न, लक्ष्मीबाई शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं। साथ ही उन्हें भारत सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज में भी काव्य पाठ का अवसर मिला है। और उल्लेखनीय ये भी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भेंट उनकी सृजनात्मक यात्रा के अविस्मरणीय पड़ावों में से एक रही है। तो आइए मित्रों, स्वागत करें संवेदनाओं की साक्षात अभिव्यक्ति, शब्दों की सखी, कवित्री ऋतु रागिनी जी का। ऋतु जी नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इतने सुंदर कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग में मुझे आमंत्रित किया। और मैं आशा करती हूँ कि आज का जो हमारा संवाद है शायद श्रोताओं को वो पसंद आएगा, और मैं प्रयास करूंगी कि ऋतु के हर रागिनी में मैं उन शब्दों को बयां कर पाऊं जो कि आपकी तरफ से प्रश्नों के रूप में मुझे कही जाएंगे। धन्यवाद।
0: तो ऋतु जी, शुरुआत करते हैं, आपके नाम से ही शुरुआत करते हैं। आपका नाम ही जैसे कविता का पर्याय बन गया है, शब्दों की सखी ऋतु रागिनी। यह नाम कैसे जन्मा, इसके पीछे क्या प्रेरणा रही?
1: देखिए सर, मेरा जो दरअसल जो मेरा वास्तविक नाम है वो तो ऋतु है, और जो रागिनी है वो मेरी आत्मा का स्वभाव है। मुझे लगा कि हर ऋतु की अपनी एक धुन होती है, जैसे हर मन का अपना एक राग होता है, और जब उस राग में शब्द बहने लगते हैं तो मैं भी अपने आप को एक ऋतु की रागिनी मैं मान लेती हूँ। और वहीं से तभी एक नाम जो ये है मेरे लेखन का प्रतीक बना, और ऋतु रागिनी जैसे मौसम की भावनाएं और सुरों की संवेदनाएं।
0: बहुत सुंदर।

0: आप कहती हैं कविता मेरी साधना है, सखी से संवाद है। क्या आप इस सखी का कुछ अर्थ हमारे श्रोताओं को समझाना चाहेंगी?
1: देखिए, सखी तो एक ऐसा रिश्ता है, मित्रता की जो एक बात कही जाए कि जिसमें ना कोई खून का रिश्ता है, पर जो आत्मीयता है वो सबसे ज्यादा होती है। तो मेरे लिए सखी कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वह आवाज है जो भीतर से उठती है, और यह मेरे मन की एक आत्मीय साथी है जो दुख में सांत्वना देती है और सुख में मौन रहकर मुस्कुराती है। जब मैं कविता लिखती हूँ तो वास्तव में उसी सखी से बात करती हूँ, और वो आपके समक्ष एक कविता के रूप में बहती है।
0: बहुत सुंदर, मुझे आपकी ये बात बहुत पसंद आई। सखी से या सखा से हमारा जो रिश्ता लहू का नहीं होता, खून का नहीं होता, लेकिन आत्मीयता का होता है, और वही रिश्ता जो होता है वही संवेदनाओं से भरा होता है। बहुत सुंदर, चलिए आगे चलते हैं। आपकी कविताएं गहरे भावबोध और संवेदना से भरी होती हैं। जब आप कविता लिखती हैं, क्या वह सहज भाव में आती है या कोई विशेष अनुशासन प्रक्रिया होती है उसके लिए, कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट या डिसिप्लिन आपको फॉलो करते?
1: आलोक जी, कविता कभी भी किसी योजना से नहीं आती, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं कविता के रूप में भावनाएं लिखती हूँ, इमोशंस लिखती हूँ। बस एक ये उस एक क्षण की अनुभूति होती है जिसको कि आपने या तो महसूस किया है, या कोई एक ऐसा दृश्य आपके सामने आया और उसमें से कोई एक ऐसा क्षण जिसने मतलब आपको उस समय पे हिट किया, तो वो एक जो अनुभूति है उसी को मैं शब्दों में ढालती हूँ। हाँ, ये जरूर है कि शब्दों में अनुशासन और लय का ध्यान जरूर रखती हूँ। तो कह सकती हूँ कि भाव सहज होते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति साधना मांगती है।
0: एक कवित्री के रूप में आप भावों का अवलोकन कैसे करती हैं? क्या आप प्रकृति, समाज या भीतर की अनुभूति से प्रेरणा लेती हैं?
1: देखिए, एक बहुत ही ऐसा प्रश्न है, लेकिन मैं इसको इस तरह से कहना चाहूंगी कि प्रकृति, समाज और मन की भावना, ये तीनों ही मेरी कविता का एक मतलब यहीं से शुरू होती है, क्योंकि प्रकृति मुझे एक दृश्य देती है और समाज मुझे विचार देते हैं, और भीतर की अनुभूति आत्मा की गहराई देती है। और जब इन तीनों का संगम जो होता है, तो जो एक भाव निकल करके आते हैं वही कविता का रूप ले जाते हैं।
0: बहुत सुंदर।

0: क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी साधारण घटना या दृश्य ने एक गहन कविता का रूप ले लिया हो? कोई अगर उदाहरण देके साझा करें तो बहुत अच्छा लगेगा हमें।
1: जी, ऐसे बहुत क्षण मैंने जीवन में मेरे जीवन में इस तरह के आए कि जहां पे मतलब कई बार जो उन क्षणों के अंदर सोचने को मजबूर कर दिया कि ऐसा क्यों। लेकिन कुल मिला के जो बात है कि जिंदगी के अपने अलग अलग मायने हर व्यक्ति के, किसी के लिए एक वो किस्सा है तो किसी के लिए कसक है। तो बस मैंने उसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक छोटी सी मेरी एक जो कविता है मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी
0: सुनिए, स्वागत।
1: जी, कि कुछ कसक कुछ किस्से, क्योंकि जिंदगी का हर जिंदगी जो अपने हर मायने रखती है हर व्यक्ति विशेष के अलग अलग रूप में। जैसा मैंने कहा किसी के लिए किस्से हैं तो किसी के लिए कसक हैं और
0: जी
1: किसी की
0: जी
1: ख्वाहिश है तो मैं इजाजत चाहूंगी।
0: जी स्वागत है।
1: कुछ ख्वाहिशें अनकही, कुछ ख्वाहिशें अनकही, कुछ ख्वाब मुकम्मल से, कुछ जवाबों की तलब, कुछ सवाल अधूरे से, कुछ जमा कुछ खर्च का हिसाब है जिंदगी, कुछ जमा कुछ खर्च का हिसाब है जिंदगी, कुछ कसक कुछ किस्सों की किताब है जिंदगी, कुछ अनसुलझी पहेलियां, कुछ अनसुलझी पहेलियां, कुछ जज्बात कह गए, कुछ पल दो पल की खुशियां, कुछ हालात सह गए, कुछ रूठने कुछ मनाने का अंदाज है जिंदगी, कुछ खोना कुछ खपाने का राज है जिंदगी, कुछ खोना कुछ पाने का राज है जिंदगी।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिंदगी को आपने कितने विभिन्न कोणों से सामने रख दिया, कितनी भाव इसमें आ गए। बहुत सुंदर, बहुत ही मजा आया। मैं आपसे बाद में पूर्व कहने वाला था एक कविता सुनाइए, लेकिन आपने तो बिल्कुल मेरे मन की बात छीन ली। बहुत सुंदर, बहुत
1: धन्यवाद।
0: बढ़िया। आपकी रचनाओं में अगर हम देखें तो नारी मन, संघर्ष, आत्मबल, प्रेम और प्रकृति, सबका सुंदर संगम दिखता है। इन विषयों का आप किस तरह से चयन करती हैं, क्या करती हैं, क्या इसके बारे में सोचती हैं, और सोचती हैं तो फिर किस तरह से विषय आता है आपके दिमाग
1: आलोक जी, विषय मैं नहीं चुनती, जीवन चुनता है। कुछ ऐसे क्षण हैं जो अपने आप अंदर समाहित हो जाते हैं, तो कभी कभी कोई आंसू कविता बन जाता है, कभी कोई खामोशी। और नारी मेरे भीतर का स्वर है, प्रेम मेरी ऊर्जा है और प्रकृति मेरी प्रेरणा है, और बस यही संगम मेरे शब्दों का संचार रचता है और एक कविता का रूप ले लेता है।
0: बहुत सुंदर।

0: अब ये जो परिदृश्य बदल रहा है विशेषकर महिला लेखन का, तो वर्तमान समय में महिला लेखन परिदृश्य को आप कैसे देखती हैं? कि आज की कवियत्रियों के लिए अभिव्यक्ति के नए आयाम खुले हैं?
1: जी बिल्कुल, मतलब बहुत सशक्त और जीवंत देखती हूँ मैं लेखन परिदृश्य को, कि आज की जो कवित्रियां हैं अपनी सच्चाई बिना झिझक के कह रही हैं। अब नारी मतलब लेखन की जो सीमाएं थी उनसे बाहर निकलकर आत्मा की स्वीकृति और आत्मसंवाद की ओर बढ़ रही है, और जो ये समय है वो एक नारी के पुनर्जागरण का समय है, क्योंकि आज उनके पास बहुत मतलब पहले क्या होता था कि कहना बहुत कुछ चाहते थे लेकिन वो व्यक्त करने के लिए अभिव्यक्त करने के लिए मंच नहीं मिलता था या वो जगह नहीं मिलती थी, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आपके अंदर एक वो लगन होनी चाहिए और आपकी बात जो कलम है उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, तो बहुत सारे मतलब जो मंच है वो बहुत मतलब सशक्त और जीवंत आपके लिए खड़े मिलते हैं।
0: ये सवाल मैंने नहीं सोचा था आपसे पूछूंगा, कोई आज की जो कवित्री है इनमें से कोई आपकी फेवरेट हो या आप जिनको बहुत अच्छा मानती हो, कोई नाम लेना चाहेंगी आप?
1: देखिए मतलब मैं सभी को सुनती हूँ, लेकिन जो पुरानी जो कवित्रियां रही हैं जो कि आज एक माइलस्टोन की तरह है, जबकि जिनका लिखा मतलब एक आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, तो मेरी प्रेरणा तो वहीं से रही है। बाकी मैं किसी व्यक्ति विशेष का या किसी महिला विशेष का नाम नहीं लेना चाहूंगी, सभी अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा लिख रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, तो मैं उसके लिए कि वो बहुत अच्छे हैं या कम है या ज्यादा है ये मैं अपने उसको नहीं कहना चाहूंगी।
0: जी बहुत बढ़िया, क्योंकि हमारा जो रास्ता तो है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, इनकी कविताएं, सुभद्रा कुमारा चौहान, इनकी कविताएं सुन के हम लोग बड़े हुए हैं,
1: माइलस्टोन है वो।
0: जी जी बिल्कुल,
1: और हम तो उनके कहीं अड़ते भी नहीं है, चाहे मैं हूँ या मेरे समकक्ष हो है जो भी है, मुझे लगता है कि शायद वो ही अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, एक यूनिवर्सिटी है जहाँ से हम लोग निकल करके बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। संगीत के रूप में कहा जाए तो लता जी के सामने हम बात करें कि आज के हम किसी का नाम ले ही नहीं पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत बहुत आपने दिल की बात कह दी। और ये देखिए कि ये जो महान कवित्री हैं, इनका नाम और इनका काम इतने वर्षों के बाद भी वहां का वहां बनाए, इनफैक्ट वो उसका आयाम या उसका कद और ऊंचा होता जा रहा है, और आज के नए बच्चे भी उनको बहुत सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। ये बात बिल्कुल सही है।

0: अब थोड़ा सा हम रुख बदलते हैं और समाज और सोशल मीडिया से जुड़ाव के संबंध में बात करना चाहेंगे। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया लेखन का एक बहुत बड़ा मंच बन गया है, देख ही रहे हम लोग, क्या इससे साहित्य का कोई स्वरूप बदला है?
1: डेफिनेटली बदला है सर, बिल्कुल बदला है। जो सोशल मीडिया का सिर्फ साहित्य नहीं, मतलब हर परिप्रेक्ष्य में जो टेक्नोलॉजी आई है उसने बहुत चीजों को बिल्कुल बदल दिया है, और अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत पॉजिटिव वे में उन्होंने किया है कि जो कविताएं आज तक मन की दीवारों में कैद थी या सिर्फ एक कागज के पन्नों में थी, तो वो आज उन कविताएं दीवारों से निकलकर स्क्रीन तक पहुंच गई है। ये परिवर्तन बहुत सुंदर है क्योंकि इससे कविता आम जीवन का हिस्सा बनी है। पर साथ ही हमें ये भी याद रखना चाहिए कि तेज दृश्यता हमेशा गहरी संवेदना ही नहीं होती, हाँ एक पहुंच हो जाती है कि आज कविता इस सोशल मीडिया के माध्यम से का जो प्रचार और प्रसार है वो बहुत त्वरित गति से होता है।
0: ये बात आप सही कह रही हैं, लेकिन अभी क्या सोशल मीडिया की त्वरित प्रतिक्रियाएं जैसे लाइक्स है, प्रशंसा है या आलोचना है, इसने कभी आपके लेखन को भी प्रभावित किया है कि कुछ इससे फर्क पड़ता है कभी आपको भी?
1: जी जी जी, ऐसा देखिए जब नई नई शुरुआत जब सोशल मीडिया के साथ की थी तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मुझे कभी इन्होंने प्रभावित नहीं किया। हाँ कभी कभी बिल्कुल किया, लेकिन समय के साथ मैंने सीखा कि शब्दों की यात्रा लाइक से नहीं, आत्मसंतोष से मापी जाती है, इसलिए मैं प्रतिक्रिया से अधिक अपनी सच्चाई से जुड़ी रहती हूँ। लेकिन सोशल मीडिया की जो त्वरित प्रतिक्रियाएं जो होती हैं कभी कभी हमें जागरूक कर देती है, झकझोर देती है कि नहीं ये बहुत अच्छा है या इसमें कमी है या इसको और अच्छा किया जा सकता है, अगर वो वास्तविक प्रतिक्रियाएं हो, किसी को मतलब परेशान करने की ना हो, तो ऐसा मेरा मानना है।
0: ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। और फिर आजकल ये जो डिजिटल युग में संवेदना और सतहीपन के बीच में, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे हर तरह की चीज बहुत जल्दी पोस्ट करते हैं लोग, पास कविता लिखी, कहानी लिखी, कोई संस्मरण आया, एकदम उस पे लिख के डाल दिया, तो इसमें कुछ संवेदना और सतहीपन मतलब हल्कापन के बीच में संतुलन आप कैसे बनाए रखती हैं या कैसे, क्या कोई इसका कोई तरीका हो सकता है?
1: आलोक जी, मेरा मानना है कि संतुलन बनाने के लिए सबसे बड़ा जो मंत्र है वो है मौन। मौन मुझे भीतर से जोड़ता है, और जब दुनिया बहुत शोर करती है मैं कलम से बात करती हूँ और वही मेरा संतुलन है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब जिसको कहते हैं त्वरित प्रतिक्रिया आप किसी भी चीज पे नहीं देती और आप उसको
1: खामोशी से
0: उसका जवाब देती है और अपनी लेखनी से देती है। सबसे सुंदर बात है अपनी लेखनी से उसका जवाब देती है, अपनी रचनाओं से उसका जवाब देती है।
1: बहुत कुछ इसी पे भी कुछ खामोशी पे मैं अपनी कुछ पंक्तियां आपसे अगर साझा करना चाहूंगी।
0: हाँ, बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल स्वागत।
1: कि जब ये सब तरफ इतना सब जब ये कहते ना एक तरह से भूचाल जब आ जाता है, जब आप कहते हैं त्वरित प्रक्रिया की बात करते हैं, तो मैं खामोशी के लिए बात इस तरह से कहूंगी कि खामोश रंगों की दास्तां से रंगा जीवन मेरा, खामोश रंगों की दास्तां से रंगा जीवन मेरा, जिसमें जिसमें उतर आता है अक्सर अक्स तेरा, की सैकड़ों कोशिश की हर रंग बोले, बजे साज तो बन आवाज कहीं कुछ होले होले, सिर्फ तेरा नाम लेकर के बिखेरा हर रंग मैंने, कि जुबा रंगों को मिले और बन के गजल दिल को छूले, कैसे संभालू हर रंग कब तक हिफाजत में करूं, टूटेगी कब ये खामोशी बस यही इंतजार करूं, टूटेगी कब ये खामोशी हाँ बस यही इंतजार करूं,
0: टूटेगी कब ये खामोशी बस यही इंतजार में करूं। वाह बहुत सुंदर, वाह बहुत सुंदर। आपने जो मौन की बात को किस तरह से प्रस्तुत किया है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मजा आ गया।

0: आपने कई सम्मान भी आपको मिले हैं देश में, मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न, जयपुर रत्न, लक्ष्मीबाई शिरोमणि आदि। इतने सम्मान और प्रसिद्धि के बीच आपने सादगी और आत्मिक जुड़ाव को आप कैसे बनाए रखती?
1: देखिए, पुरस्कार अवार्ड सम्मान ये जो मिलते हैं उनसे मेरी कविताओं के नेचर में कहीं कोई बदलाव नहीं आता, ये एक प्रोत्साहन है। हाँ, ऐसा नहीं पुरस्कार अवार्ड सबको पसंद आते, सबको अच्छे लगते हैं, पर मेरे लिए लेखन मेरी सेवा है। लेखन मतलब एक मेरे लिए एक सेवा की तरह ही है, एक आत्मा की सेवा। और जब सेवा में विनम्रता आ जाती है तो ये पुरस्कार और ये खुशी तो देते हैं, पर लेकिन कहीं एक रुकावट नहीं बनते, कहीं अपने आप में एक कहते ना कि एक सुर को नहीं बदलते कि नहीं एक अभिमान हो जाए या एक तरीके सब ऐसा हो गया वो हो गया। तो सादगी अपने आप विनम्र, जो सेवा अगर भाव रखा जाएगा आत्मा से शब्दों के साथ में, तो विनम्रता स्वाभाविक है, उसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा ऐसा मानना है।
0: बहुत सुंदर। और ये जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से आपकी व्यक्तिगत भेंट हुई है, उस अनुभव को हमारे साथ साझा करना चाहेंगी? किस तरह से आपको बुलाया गया, आप कैसे वहां गई, क्या क्या बातचीत हुई, क्या महसूस हुआ आपको, कुछ उस अनुभव को हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी?
1: जी बिल्कुल करना चाहूंगी। मतलब मेरे लिए बिल्कुल अविस्मरणीय और अविश्वसनीय क्षण थे जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मेरा आमने सामने मुलाकात हुई, और जब महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से जब मुलाकात हुई राष्ट्रपति भवन में, और प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई प्रधानमंत्री आवास में ही। तो जब उनसे मिली, जब देखा इतने बड़े नाम, आज इतना बड़ा पद, लेकिन जो उनके अंदर जो सहजता, वो वाकई जैसे कि हम अभी तक उनको हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, सब कुछ सारा, लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से जब उनसे मिलते तो लगता है जैसे घर का कोई बड़ा अपने बच्चों से कैसे बात करता है, किस तरह की बातें करते हैं। मतलब एक वो सहजता उनकी बातों में थी, मेरे लिए बहुत ही मतलब अविश्वसनीय क्षण थे कि मुझे अपने आप लगा कि हाँ वाकई मैं यहाँ हूँ, नहीं हूँ ऐसा लग रहा था। पर उससे भी जो वो क्षण अविश्वसनीय तो थे ही थे, पर उससे भी बड़ा भाव था कृतज्ञता का। मैंने बस मन ही मन कहा, हे ईश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे शब्द किसी को छू पाए। और उस दिन लगा कि कविता सिर्फ शब्द नहीं, संसार को जोड़ने का एक सेतु है, और मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। और उनके द्वारा मतलब जो एक सहजता को मैंने महसूस किया कि जो आदमी जितना बड़ा उतना सरल और सहज कैसे हो सकता है, ये मुझे उनसे मिलकर के सीखने को और देखा।
0: बहुत सुंदर। ये भी तो कितनी बड़ी बात है कि आप अपनी कविता की वजह से या अपनी पोइट्री की वजह से आप वहां तक पहुंची, मतलब वो ही आपकी उपलब्धि रही। और लोगों को तो जाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आप अपनी कविता की वजह से जो पहचान बनी है उसकी वजह से आप ऊपर पहुंची।
1: जी बहुत मतलब

0: इतना अच्छी एक अनुभूति लगती है जब आपके शब्द गाते हैं, बोलते हैं और किसी के मन को प्रभावित करते हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा सम्मान होता है। और जब उस उन भावनाओं को, उन शब्दों को, उन पंक्तियों को इतने विरले, या कहते ना कि बहुत इस तरह के लोग जब सुनते हैं, समझते हैं, आपको सराहते हैं, तो फिर अपने आप में शायद इससे बड़ा अवार्ड या रिवॉर्ड मेरे हिसाब से और कुछ नहीं हो सकता।
1: बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।

0: अब थोड़ा जीवन दर्शन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो कवि हैं उनका जीवन दर्शन के प्रति क्या विचार है, ये हम जानना चाहेंगे। आपके लिए कविता सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं, आत्मा की साधना है। यह साधना आपके जीवन में किस रूप में उतरती है?
1: देखिए आलोक जी, बहुत गहरा प्रश्न है, पर लेकिन कविता मेरे लिए मौन से संवाद है और मेरे आत्मा की अभिव्यक्ति है। हर दिन मैं कुछ ना कुछ लिखती हूँ, भले ही वो एक पंक्ति हो। मतलब मेरे लिए जो लेखन है वो एक ध्यान है, मेडिटेशन है, और जब मैं लिखती हूँ तो मेरा मन उससे शांत होता है और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं कोई प्रार्थना कर रही हूँ। तो और मेरा मौन से संवाद मेरी कलम से कागज पे उतर जाता है।
0: तो जब आप लेखन नहीं कर रही होती तो जीवन को कैसे जीती है? क्या उस समय भी शब्द आपके मन में चल रहे होते हैं, विचार चल रहे होते हैं, फिर जब आप बैठती हैं तब उनको उतारती हैं कागज पर?
1: देखिए ये तो विज्ञान भी कहता है कि एक दिन में कितने हजारों विचार हमारे दिमाग में आते और चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर वक्त मेरे हाथ में कलम हो या हर बार ही मैं उसको लिखूं, पर जब भी, क्योंकि मैंने क्या कहा कि मैं इमोशंस लिखती हूँ, भावनाएं लिखती हूँ, और कोई एक क्षण होता है जो मुझे हिट कर जाता है और मुझे लगता है कि हाँ ये मेरी आत्मा से, इसके बारे में मैं आवाज में कुछ कह सकती हूँ, तो मैं उसको महसूस करती हूँ। और मेरा ये मानना है कि हर क्षण में कविता है। और जैसे किसी बच्चे की हंसी है, और जैसे मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, उनकी द्वारा, मतलब उनकी उनकी भी हंसी, उनके द्वारा कही गई कोई बात, और जैसे आज चिड़ियों का चहकना और फूलों का महकना, ये भी अपने आप में कविता है। तो मैं बस शब्दों के बिना भी, मतलब एक जो मेरी भावनाओं को उन क्षणों के साथ जोड़ लेती हूँ, तो मेरे अंदर जैसे वो एक तरीके से समाहित हो जाते हैं। और जब मैं लिखने के लिए जब कलम उठाती हूँ तो बिना किसी प्रयास के मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं और अपने आप, मतलब मुझे एक वो लय दे देते हैं कि मैं शब्दों के साथ संवाद करूं, मौन के साथ संवाद करूं और उनको शब्दों में ढाल के एक कविता के रूप में प्रस्तुत करूं।
0: बहुत बहुत सुंदर। अब मैं थोड़ा सा एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ लूं, मैंने सोचा नहीं था आपसे पूछूंगा।
1: जी
0: ये
1: बिल्कुल।
0: जो लेखक या कवि होते हैं, अब ये अपने व्यक्तिगत जीवन में किस तरह से अपना समय को मैनेज करते हैं, क्योंकि घर के अंदर शोर भी होता है, वो भी होता है, तो किस तरह से आप अपना एकांत तलाशते हैं और किस तरह से अपने आप को बाहरी दुनिया से काटते हैं और फिर अपने लेखन से जुड़ते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि ये मन में सवाल चलते रहते हैं, क्या लेखक बिल्कुल अलग से कमरे में बैठ जाते हैं, शांति से बैठ जाते हैं, घर वालों को मना कर देते हैं कि भाई शोर मत करो, मोबाइल नहीं उठाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो अब ये मैं एक थोड़ा सा हल्का फुल्का सा सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, ये
1: जी
0: प्रक्रिया
1: बिल्कुल।
0: होती कैसे है?
1: देखिए जैसा कि मैंने कहा ना कि वो जो क्षण है वही अंदर कैद हो जाते हैं दिमाग में। तो आपने बड़ा सुंदर एक सवाल किया, क्योंकि जैसे मैं एक महिला हूं तो मेरे घर, मेरे ऊपर अपने घर की, बच्चों की, परिवार की जिम्मेदारी भी होती है,
0: वही
1: उसके
0: वही
1: अलावा
0: वही मैं
1: सामाजिक
0: जानना चाहता
1: जिम्मेदारियां भी हैं। तो
0: हूँ।
1: जैसा कि
0: जी
1: मैंने कहा ना, कविता के लिए आपको किताब या कॉपी या पेन लेकर के नहीं बैठना होता है। वो क्षण आपके जो मन में क्या होता है, अपने आप एक जगह बना लेते हैं, एक ऐसा कोना होता है जहाँ पे भावनाएं इकट्ठी होती जाती हैं। और जब कभी भी जैसे कि, क्योंकि घर में हमेशा हर चीज सही हो, सरल हो, ऐसा मुमकिन नहीं है, कुछ भी होता है, लेकिन वो चीजें मुझे वो मोटिवेशन देती है, मुझे प्रेरणा देती है कि हाँ ये इस तरीके से भी इस बात को कहा जा सकता है। और कविता क्या है, एक तरीके से कविता एक तरीके से मेरे लिए एक जीवन है कि आज मैं अगर किचन में काम कर रोटी बना रही हूँ तो भी अगर मेरे मन में कोई भाव आता है तो वो सहेज लेती हूँ और जब समय मिलता है उसको लिख लेती हूँ। क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको कि मेरे लिए कविता एक ध्यान है, एक मोटिवेशन है। और ध्यान करने के लिए आपको किसी बंद कमरे की या किसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है। आप कर रहे, चाहे कितना भी शोर हो, चाहे कुछ भी चलता रहे, अगर व्यक्ति को ध्यान में रहना है तो वो अपने आप, वो अपनी धुन में खो जाता है, उसको किसी और की आवश्यकता। जैसे मीराबाई थी तो वो कहते ना, मैं मीरा के से अपनी तुलना नहीं कर सकती, लेकिन एक भाव को बताना चाहती हूँ।
0: जी जी जी
1: पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट में खड़ी थी, लेकिन जो कृष्ण की भक्ति और प्रेम जो उनके पास था, तो उनको किसी लिए कोई रोड़ा ही नहीं बनी उनके लिए। क्योंकि कई लोग बोलते हैं मेडिटेशन कैसे किया जाता है, तो मैं ये आपके माध्यम से बात कहना चाहूंगी, जितना मैंने समझा है कि मेडिटेशन करने की चीज नहीं है, मेडिटेशन इज अ बीइंग स्टेट, आप मेडिटेशन में होते हैं फिर चाहे आप काम कुछ भी करते रहे, ऐसा मेरा मानना है सर।
0: भाई आपने ये जो अंत में कहा ये बहुत जोरदार बात है, मेडिटेशन इज ए बीइंग स्टेट, मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको पहाड़ पे बैठ के जाके बैठने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया।
1: मेडिटेशन में तो आप होते हैं फिर चाहे आसपास जो भी गतिविधियां चले आपको अपने ऊपर एक वो कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप सहज रूप से उसके अंदर पहुंच सकते हो।

0: अच्छा ये बताइए, आप कोई अपने साथ डायरी रखती हैं या मोबाइल पे नोट करती हैं जब कोई थॉट आपके दिमाग में आया, कोई विचार आया कि इसको मैं बाद में एक्सपेंड करूंगी, ऐसा कुछ प्रैक्टिकल क्या करती?
1: आपको मतलब हंसी आएगी ये बात सुन के कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो बिल्कुल मैं उस नटखट बच्चे की तरह होती हूँ। जब मेरे मन में कोई विचार आता है तो मैं कोई डायरी या पेन अपने पास नहीं रखती हूँ, ना मोबाइल भी। मतलब मोबाइल तो आज हुआ है, लेकिन जब भी लिखना शुरू किया तो मेरे को मोबाइल थोड़ा कम मतलब वो रहता है कि, तो उस टाइम जैसे अगर मुझे मान लीजिए किसी अखबार का टुकड़ा मिल गया है रास्ते में, कोई कागज, या मान लीजिए कोई कैलेंडर ही है, और अगर मैं खाना बना रही हूँ तो अगर सूखा आटा बिखेर कर भी वो दो शब्द लिख लेती हूँ अगर मुझे उनको याद रखना होता है तो इस
0: वाह
1: तरीके से तो ये सहज बात है और ये सच्ची बात है कि हमेशा आप कॉपी और पेन को साथ नहीं रख सकते हैं। तो अगर मैं सफर कर रही हूँ तो अगर डैशबोर्ड में कोई कागज रखा होगा तो पेन ढूंढ ढांड के कहीं किसी कोने में, किसी बिल के कोने में, किसी कार्ड के कोने में कुछ एक वो पंक्तियां वो शब्द लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद में उसको इलैबोरेट कर देती हूँ।
0: ये अगर हमारा इंटरव्यू जवाहर कला केंद्र में हो रहा होता और
1: जी
0: आपने ये बात कही होती कि मैं आटे पे अपने विचार लिख लेती हूं, तो
1: जी
0: कल के अखबार
1: बिल्कुल
0: की हेडलाइन बन जाती
1: ये मुझे पता नहीं, लेकिन सर जो बिल्कुल ये सच्ची बात है, मतलब जो मैं हूं वो मैं ऐसी ही हूं, वो नटखट वो बच्चा अभी भी मेरे अंदर है और वो ढूंढता रहता है कि हाँ मुझे क्या करना है। उसके लिए उसको मतलब साधनों की जरूरत नहीं है, बस आपके मन में विचार आया और लिख दिया। जी
0: ये मतलब एक महिला के लिए एक अल्टीमेट ट्रिब्यूट है कि वो किस तरह से अपने विचारों को व्यक्त करती है। बहुत सुंदर,
1: बिल्कुल सर, सूखा आटा बिखेर करके उस पे भी शब्द लिखे जा सकते
0: बिल्कुल बहुत सही बात।
1: हैं
0: वो हमारे यहाँ किसी जमाने में तो उससे मैदा से उससे कुछ बनाया भी करते थे ना,
1: जी रंगोली बनाया, अभी आज तो मूर्ति रंगोली।
0: रंगोली। हाँ वही वही वही रंगोली बनती। सही बात। आज के युवाओं के लिए जो लेखन या कविता की दुनिया में आना चाहते हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: सर देखिए जो आज का युवा है, तो क्योंकि आज का युवा मतलब बड़ा जल्दीबाजी वाला युवा है सर, और टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा मतलब जैसे कहते ना कि आश्रित हो गया है टेक्नोलॉजी के ऊपर, और यही कारण होता है कि कभी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कभी अभी आप लोग व्यक्त नहीं कर पाते हैं, या कहीं अगर वो एक लकीर के फकीर भी हो जाते हैं कभी कभी। तो मेरा उन बच्चों से यही एक संदेश रहेगा कि लेखन में जल्दीबाजी ना करें। इसके अंदर मतलब ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि हमने बस जो हमें आज लिखना ही है, आज अगर आपके मन में भाव नहीं है तो उसको ना लिखें, लेकिन क्योंकि सच्ची कविता हमेशा जीवन से जन्म लेती है और उस शब्दों से नहीं। मतलब आप सोचे बस हमने चार शब्द लिख के उनको एक फॉर्मेट में डाल दिया और ये हमारे लिए कविता हो गई, तो मेरा ऐसा मानना है कि सब कविताएं हमेशा जीवन से जन्म लेती हैं, शब्दों से नहीं। तो उसके लिए खूब पढ़ें, खूब महसूस करें, और सबसे पहले अपने भीतर उतरे, और वहीं से आपको अपनी प्रेरणा मिलेगी और वहीं से आपके पास शब्द होंगे और उन शब्दों को रच करके आप कविता के रूप में प्रस्तुतिकरण कर पाएंगे।
0: जी बिल्कुल सही बात है। ये कोई 2 मिनट मैगी नहीं है कि आपने 2 मिनट में बना दी और
1: हाँ
0: कविता लिख दी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर।

0: मैं आपसे अभी निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी कविता सुनाएं, लेकिन एक और कविता हम आपसे सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक प्रश्न का और उत्तर दे दीजिए कि
1: जी
0: अगर मैं आपसे कहूं कविता जीवन है, तो आपका
1: जी
0: एक पंक्ति में क्या उत्तर होगा?
1: कविता जीवन है, ये अपने आप में उत्तर हो गया सर। लेकिन कविता वही है जहाँ जीवन सांस लेता है, कविता वही है जहाँ जीवन सांस लेता है, और जीवन वही है जब कविता जागती है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आप कोई अपनी प्रिय कविता सुनाना चाहें तो उसका स्वागत है। हम चाहेंगे कि आज का समापन किस आपके कुछ प्रिय पंक्तियों से ही करें हम।
1: जी, तो कुछ दो पंक्तियां मैं अपनी कविता से पहले आपको मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। कि
0: जी
1: शब्द बिखरे हैं हवा में, शब्द बिखरे हैं हवा में जैसे कोई दुआ तैर रही हो, शब्द बिखरे हैं हवा में जैसे कोई दुआ तैर रही हो। मैं लिखती नहीं, बस सुनती हूँ जो मन की सखी कह रही हो। तो आज मैं अपनी जो कविता है कि
0: आप
1: महफिल,
0: पहली पहली लाइन दोबारा बोलिए, उस जो दुआ बह रही हो हवा में, बहुत सुंदर लगी मुझे, उसको दोबारा सुनाइए। बहुत अच्छी है।
1: जी बिल्कुल। शब्द बिखरे हैं हवा में, शब्द

0: बिखरे हैं हवा में जैसे कोई दुआ तैर रही हो। मैं लिखती नहीं बस सुनती हूँ, मैं लिखती नहीं बस सुनती हूँ जो मन की सखी कह रही हो।
1: बहुत सुंदर।
0: अपनी ये कविता आपके सामने छोटी सी प्रस्तुत करना चाहूंगी, क्योंकि मतलब मैं वही स्त्री के ऊपर मेरी कविता है नारी मन कि आज, क्योंकि हम तो उस कह रहे ना कि जिस जहां से हम लोग अपने जीवन की शुरुआत की उस जमाने से बात कर रही हूँ जहां पे महिलाओं को इतनी आजादी नहीं थी, लेकिन आज भी महिलाओं को आजादी है लेकिन आज भी वो पूरी तरीके से उन्मुक्त नहीं है। तो मैं चाहे वो किसी भी एरा की महिला हो, चाहे आज की हो या पहले की हो, तो मैं एक ये महिला को एक पंछी के रूप में वो करके अपनी एक बात इस तरह ही कहना चाहूंगी कि उन्मुक्त गगन की मैं पंछी, उन्मुक्त गगन की मैं पंछी, फितरत ना मेरी बंध पाऊं। उन्मुक्त गगन की मैं पंछी, फितरत ना मेरी बंध पाऊं। मैं सीमित कर सीमाओं में सरहदों में कैसे सिमट जाऊं। तुझको ऐ तकदीर मेरी, तुझको ऐ तकदीर मेरी, तारीखों में लिखूं कैसे वक्त वजह की बंदिश में, खुशियां कैद करूं कैसे। चुनो चुनौती चाहत की, चुनो चुनौती चाहत की, ना बरबस में थोपी जाऊं, बन शिखर पता का फहराए दीवारों में ना चुनवाई जाऊं। हदे हटा दी ए मानस, हदे हटा दी ए मानस, जबरन जंग ना होने दे, ख्वाहिशों के खेतों में सपनों की फसलें बोने दे, ख्वाहिशों के खेतों में सपनों की फसलें बोने दे।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आपने जिस तरह से कल्पना की है पंछी हुई और महिला की, बहुत बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इनफैक्ट हमारा तो मन कर रहा है अभी आपसे और सुने, लेकिन समय की अपनी सीमाएं होती है।

0: तो वहां ऋतु जी, आपकी बातों में जितनी गहराई है उतनी ही मधुरता भी, मानो हर शब्द एक अनुभूति बनकर हमारे दिलों में उतर गया हो। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, आपने आज हमारे श्रोताओं के साथ अपनी भावनाएं, अपने अनुभव और अपनी सृजन यात्रा साझा की। हम कामना करते हैं कि आपकी लेखनी यूं ही भावों के नए क्षितिज छूती रहे और हर ऋतु में आपकी रागनी गूंजती रहे। मेरे को दो पंक्तियां याद आ रही हैं, आपने राष्ट्रीय स्तर पर तो अपनी पहचान बना ली है, मैं चाहता हूं आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाए। दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा, दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा, दीवारों में दरवाजे बन जाएं। इसलिए हमारी यह कामना है कि आपके लिए सारे दरवाजे एक के बाद एक खुलते रहें और आपकी दस्तक यूं ही चलती रहे और आप एक के बाद एक दरवाजे खोलती जाएं अपने लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपने इतनी सुंदर इस कार्यक्रम की संरचना की, इतने सुंदर सवाल मुझसे पूछे, और दो पंक्ति के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि जिंदगी कोई सफर नहीं, जिंदगी कोई सफर नहीं एक सरगम है, जिंदगी कोई सफर नहीं एक सरगम है, कभी सांस टूटे कभी स्वर कम हुए, कभी सांस टूटे कभी स्वर कम है, पर जब मन की रागनी गूंजती है तब हर दर्द भी गीत बन जाता है, तब हर दर्द भी गीत बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने सुंदर कार्यक्रम में आमंत्रित किया जिंदगी के रंग गीतों के संग, और मैं सभी श्रोताओं से भी इजाजत लेना चाहूंगी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और शब्दों की सखी ऋतु रागनी को सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।
0: तो श्रोताओं बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत, एक नई कहानी और नई प्रेरणा स्रोत के साथ, नमस्कार।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर, सुनना ना भूलिएगा।
2: छोटी सी हमारी कायनात बन गई।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज,
5: एकता और ऐश्वर्या।
6: कैसे हो बच्चों? नमस्ते नमस्ते। अरे भैया आज तो सब बड़े खुश नजर आ रहे हो।
7: हाँ, भैया
6: लेकिन ये क्या, ये तुम कुछ छुपा रहे हो क्या?
7: नहीं कुछ नहीं छुपा रहे।
6: नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं देखो देखो, ये कुशागर और ये निशांत, इनके इन्हें इनके हाथ में शायद कुछ है। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है भाई है? इतने सुंदर फूल, वाह वाह वाह, कितने सुंदर फूल है, वाह क्या खुशबू है इन फूलों की। अच्छा ये बताओ भाई, इन फूलों को तुम लेकर कहाँ से आए?
7: ऋचा के बाग के फूल है।
6: ऋचा के बाग के
7: है? हाँ भैया ये मेरे बाग के फूल है।
6: अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद ऋचा, बहुत बहुत अच्छे फूल लेकर आई हो, तो बहुत अच्छे फूल है ये। अच्छा ये बताओ कि ये फूल तुम लेकर क्यों आए हो मेरे लिए?
7: भैया हम आपको उपहार देना चाहते
6: अच्छा।
7: थे। आप हमें एक कहानी इतनी सुंदर भी तो सुनाते हो।
6: अरे वाह क्या बात है मेरे शेर, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, वाह क्या खुशबू है इन फूलों की। सचमुच फूल तो सभी को अच्छे लगते हैं, एकता और ऐश्वर्या को भी फूल बहुत सुंदर लगते थे।
7: ये कौन है भैया?
6: वही तो बताने वाला हूँ। हाँ तो बच्चों मेरी कहानी का नाम है एकता और ऐश्वर्या, और आज के मेरे अक्षर हैं ए और ए। ए ए
8: ए ए
6: ए,
8: ए,
6: ए,
8: ए,
6: ए। हाँ शाबाश, ए से एकता और ए से ऐश्वर्या, एकता और ऐश्वर्या। तो एकता और ऐश्वर्या दो बहनें थीं, दोनों एक दिन एक बाग में घूमने के लिए गईं।
7: ए से एड़ी
6: हाँ तो बच्चों वहां पर सुंदर सुंदर फूल खिले थे, जैसे तुम लेकर आए हो मेरे लिए, है कि एकता उन्हें एक टक देखती रह गई।
7: ऐसे एकता,
6: ऐसे एकता,
7: एकटक,
6: ऐसे एकटक। शाबाश। हाँ तो बच्चों, उसने सोचा माली से पूछूं कि उन्होंने इतना सुंदर हर एक गुलाब और हर फूल खिलाया कैसे। हाँ तो बच्चों, फिर एकता और ऐश्वर्या माली को ढूंढने लगी। हाँ तो पता है, माली काका मिले ही नहीं।
7: क्यों?
6: बताता हूँ बच्चों। उन्होंने बहुत ढूंढा तो देखा कि माली काका बाग के कोने में एकांत में बैठे थे। एकांत यानी शांत, खाली जगह। तो ए से
7: एकांत,
6: एकांत। शाबाश, ए से एकांत,
7: एकांत।
6: तब बच्चों, ऐश्वर्या ने माली काका से पूछा,
9: माली काका आपने इतने सुंदर फूल और वो भी इतने बड़े बड़े उगाए कैसे।
6: तो माली काका एकदम गुस्सा हो गए और बोले, दूर हटो यहाँ से।
7: माली एकदम से गुस्सा क्यों हो गए?
6: अरे बताता हूँ ऋचा, लेकिन पहले बताओ, ए से
7: एकदम,
6: ए से
7: एकदम,
6: एकदम। शाबाश। तो गुस्से में ऐठ गए माली काका। ऐसे शाबाश
10: भैया, ऐसे ऐसा
7: भैया, ऐसे ऐसे।
6: सही कहा तुमने, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसा। बिल्कुल सही, शाबाश। तो बच्चों, एकता और ऐश्वर्या की बात सुनकर माली काका बोले,
11: अरे ना जाने यहाँ कैसे कैसे लोग चले आते हैं। मैं इतनी मेहनत से फूल उगाता हूँ और ये लोग एक एक फूल तोड़ कर ले जाते हैं, मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। हाँ
7: ये तो बहुत बुरी बात है भैया।
6: हाँ बहुत बुरी बात है।
10: मालिक आता है, दुखी होते होंगे।
6: बिल्कुल होते थे बच्चों,
7: मेहनत करने
10: ऐसा नहीं करना चाहिए।
6: बिल्कुल सही कहा तुमने, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
7: मैं तो कभी भी फूल नहीं तोड़ता,
6: फूल।
7: फूल।
6: शाबाश। तो बच्चों, तब एकता ने पता क्या किया?
7: बताता हूँ जल्दी।
6: हाँ जल्दी बताता हूँ। तब बच्चों, एकता ने एक पेड़ की डाल पर ये लिखकर टांग दिया, यही कि यहाँ फूल तोड़ना एकदम मना है। और ऐश्वर्या ने भी बाग के बाहर ये ऐलान कर दिया। उसने ये ऐलान किया कि जो भी फूल तोड़ेगा उस पर जुर्माना होगा, और जिसे बाग देखने आना है उसे टिकट भी लेना होगा।
7: अरे वाह, टिकट लगा दिया।
6: हाँ टिकट लगा दिया,
7: की तो कमाई हो।
6: बिल्कुल कमाई हो गई, शाबाश। हाँ। तो बच्चों बताओ, ऐसे
7: ऐश्वर्या,
6: ऐसे ऐश्वर्या,
7: ऐनक,
10: ऐसा
6: ऐसा, और ऐसे ऐलान, ऐसे ऐलान। हाँ ऐलान कर दिया उसने। तो बच्चों, इस तरह से एकता और ऐश्वर्या ने मिलकर ये बहुत अच्छा काम किया। माली काका की मेहनत भी बेकार नहीं गई और मेहनत का इनाम भी मिला। बताओ कैसे मिला?
7: अब लोग टिकट लेने लगे।
6: बिल्कुल सही,
7: माली काका को भी कमाई हो गई।
6: बिल्कुल कमाई भी हो गई।
7: अब कोई उनका फूल नहीं तोड़ेगा।
6: अब कोई उनके फूल नहीं तोड़ेगा। शाबाश।
7: अब खुश रहते हैं।
6: अब खुश रहते हैं
7: और बहुत सारे फूल खिलेंगे।
6: बहुत सारे फूल भी खिलेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने बच्चों। अब लोग टिकट लेकर बाग देखने आते थे और हाँ फूल भी नहीं तोड़ते थे। इस तरह से न तो फूल टूटते थे और न ही बाग की सुंदरता कम होती थी, बल्कि बाग की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और हाँ साथ साथ माली काका धन भी कमाने लग गए थे।
7: खुश हो गए।
10: उनके यहाँ चिड़िया भी आने लग गई।
6: टूरिस्ट आने लग गए।
7: और उनकी फोटो बाहर छप गई,
6: अखबार में छप गई। यानी उनका बहुत प्रचार हो गया, वो बहुत प्रसिद्ध हो गए दूर दूर तक।
12: ए

बाग का माली था बैठा। पूछा जब ऐश्वर्या ने तो माली थोड़ा सा ऐठा। माली को गुस्से में पाकर दोनों का दिल था बैठा। ऐसे एकांत और ऐसे ऐश्वर्या और

0: एकता और ऐश्वर्या ने पूछा,
1: काका गुस्सा क्यों ऐसे? माली बोला,
2: लोग यहाँ पर आते हैं जाने कैसे कैसे, एक एक फूल को तोड़ फेरते हैं मेरी मेहनत पर पानी जैसे।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: तूतुन की रेल छूट गई, पता नहीं कहाँ रह गए बच्चे सभी।
2: अरे लो, आ गए बच्चे, आ गए। नमस्ते, आओ बैठो, चलो अपने बैठो।
3: बच्चों आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो।
4: हम पार्क में खेल रहे थे।
2: अच्छा, तो बहुत मस्ती की होगी तुमने पार्क में, है ना?
3: अच्छा ये बताओ, तुम और कहाँ कहाँ मजे करते हो?
4: झूले पर।
2: अच्छा, और
4: सहेली के घर पे, मामा जी।
3: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये बताओ, नानी जी के घर कौन मजे करता है?
4: मैं गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाता हूँ।
2: अच्छा,
4: मैं भी जाता हूँ और हम नानी के घर पे खूब शैतानी करते हैं और उधर मामा जी भी होते हैं हमारे और मेरी मम्मी भी होती है।
3: भाई वाह। अच्छा बच्चों पता है, तुम्हारे जैसा ही एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना नटखट सा बच्चा था जिसका नाम था तूतुन।
2: क्या नाम था?
5: तूतुन।
3: तूतुन को भी अपनी नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था, तुम्हारी तरह।
2: हाँ, और नानी के घर से वापस आने का उसका मन ही नहीं करता था।
4: मेरा भी मन नहीं करता आने का। मैं तो सर्दियों में जाता हूँ।
3: तो ठीक ऐसे ही तूतुन का मन नानी के घर बहुत लगता था, बड़े मजे आते थे उसे वहाँ। एक बार गर्मी की छुट्टियों में तूतुन नानी के घर गया तो छुट्टियां खत्म होने पर तूतुन की मम्मी ने तूतुन से कहा,
2: अरे अरे बेटा तूतुन, कहाँ हो? चलो जल्दी से अपना सामान बांधो। हाँ भाई, रेलगाड़ी आने वाली है 5:30 बजे, छूट जाएगी, कहाँ हो तूतुन?
3: और पता है बच्चों, 5:30 बजे का मतलब क्या होता है?
2: क्या होता है? हाँ
3: सोचो सोचो। अरे मैं बताता हूँ, 5:30 यानी 5:30 क्या?
5: 5:30।
3: शाबाश,
2: बिल्कुल सही कहा। और फिर पता है क्या हुआ? जाने की बात सुनकर तूतुन बहुत उदास हो गया और सोचने लगा,
6: ओहो हम कितनी जल्दी वापस जा रहे हैं, काश हमारी रेलगाड़ी छूट जाए, छूट जाए।
2: पर अब क्या हो सकता था, तूतुन को तो जाना था। तो तूतुन अपने मम्मी पापा के साथ 5:15 पर ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया। तब तूतुन के पापा बोले,
7: अरे भाई तूतुन जल्दी करो।
8: अरे 5:15 बेटा, कहीं ट्रेन छूट ना जाए।
2: और सुनो सुनो, आगे सुनो। ट्रेन छूटने की बात पर तूतुन बहुत खुश हो गया और फिर पता है क्या सोचने लगा?
3: लगता है हमारी ट्रेन छूट गई। अरे मजा आ गया, हमारी ट्रेन छूट गई। अब मैं और भी देर तक नानी के घर रह सकता हूँ।
2: तो बच्चों बताओ, क्या तूतुन की ट्रेन निकल गई थी? हाँ
4: नहीं, क्योंकि ट्रेन तो 5:30 निकलनी थी ना।
9: अभी 5:15 ही तो बजे थे।
3: बिल्कुल सही तुमने बताया ईशान। अब ये बताओ, 5:30 का क्या मतलब हुआ?
5: 5:30।
3: शाबाश।
2: और 5:15 का मतलब क्या हुआ?
5: 5:15।
2: बिल्कुल सही,
3: इसी बात पर हो जाए ताली। पर बच्चों तूतुन को ये पता ही नहीं था, वो तो खुश हो रहा था कि उसकी ट्रेन छूट गई।
2: और तब तूतुन के पापा ने तूतुन को बताया,
8: अरे बेटा अभी ट्रेन को आने में 15 बाकी हैं, ट्रेन 5:30 पर आएगी, अभी तो 5:15 ही है।
4: अब तो तूतुन दुखी हो गया होगा।
10: तो जाना होगा,
11: अब तो उसे जाना ही पड़ेगा।
3: अरे नहीं बाबा, सुनो तो सही, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ।
2: हाँ क्योंकि ट्रेन तो आई ही नहीं। उन लोगों को बहुत देर तक वही इंतजार करना पड़ा।
11: अरे ये कैसे हुआ?
3: यही पूछने तो तूतुन के पापा स्टेशन मास्टर के पास जा पहुँचे और बोले,
8: स्टेशन मास्टर साहब ये ट्रेन क्यों नहीं आई अभी तक, हम बहुत परेशान हैं। अब देखो हमारे टिकट पर तो 5:30 लिखा है।
4: तो स्टेशन मास्टर ने क्या कहा?
8: स्टेशन मास्टर ने कहा, सर 5:30 का मतलब है 5:30, असल में आपकी गाड़ी 5:30 पर चली गई।
3: क्या?
8: सर देखिए, रेलवे में शाम के 5:30 को 17:30 कहा जाता है, यानी 17 घंटे 30 मिनट। क्या मतलब?
5: 17 घंटे 30 मिनट।
3: शाबाश।
4: 17 घंटे 30 मिनट काफी अजीब सा लग रहा है।
2: हाँ, तुम्हारी ही तरह तुतुन को भी 17 घंटे 30 मिनट सुनकर ना अजीब लग रहा था।
4: पर ऐसा क्यों कहते हैं दीदी?
2: ऐसा इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि रेलवे में 12 नहीं 24 घंटे की घड़ी का प्रयोग होता है।
3: हाँ, 12 घंटे की घड़ी में एक ही समय 2 बार आता है, इसलिए हमें उसके साथ सुबह, दोपहर, शाम, रात ये सब लगाना पड़ता है।
12: जैसे सुबह के 9 बजे
2: और रात के 9 बजे,
3: सुबह के 5 बजे
2: और
5: शाम के 5 बजे।
3: शाबाश। अच्छा, सुबह के 11 बजे
5: और शाम के 11 बजे।
3: शाम के 11 बजे नहीं बेटा, रात के 11 बजे। बजाओ ताली इसी बात पर।
4: तो तुतुन की रेल छूट गई थी ना? तुतुन को तो बड़ा मजा आ गया होगा।
3: हाँ बच्चों, बहुत मजा आया था। लेकिन अब तुतुन ने 24 घंटे की घड़ी में समय देखना सीख लिया था।
2: हाँ, और पता है 24 घंटे की घड़ी में जब दोपहर के 12 बजे के बाद 1 बजता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं 13 घंटे।
3: क्या कहते हैं?
5: 13 घंटे।
3: हाँ, यानी 12 घंटे में 1 घंटा और जोड़ दिया तो हो गए कितने घंटे? 13 घंटे। शाबाश। अच्छा गुड़िया, तुम मेरी घड़ी देखकर बताओ कि इस वक्त कितने बजे हैं?
4: 4 बजे हैं।
3: 4 बजे हैं, बिल्कुल सही। और शाम होने को है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ?
4: शाम के 4 बजे हैं।
3: शाबाश गुड़िया, बजाओ इसी बात पर ताली।
2: हाँ, तो अब ये बताओ 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से क्या समय हुआ?
3: बताओ बताओ।
4: 12, 13, 14, 15, 16
2: बताओ।
4: 16 बजे हैं।
3: 16 बजे हैं नहीं, 16 घंटे हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा बताओ बच्चों, 12 घंटे की घड़ी में शाम के 6 बजे हूँ तो 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से क्या समय होगा?
5: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 घंटे।
3: शाबाश, बिल्कुल सही कहा तुमने, 18 घंटे।
2: तो अब ये बताओ शाम के 6:30 हो तो
4: 18 घंटे 30 मिनट।
3: वेरी गुड।
2: और शाम के 7 बजे? हाँ हाँ, सोचो सोचो।
4: 19 घंटे।
3: अरे वाह, शाबाश, बड़े होशियार बच्चे हैं। वैसे एक बात है, तुतुन भी तुम्हारी तरह बहुत होशियार हो गया था। तो इस तरह हुई कहानी खत्म। बजाओ ताली।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: भूखा अमरूद।

0: Boka Amrud. एक थी ची ची चिड़िया और एक थी गुनगुन गिलहरी। दोनों सहेलियां थी। हाँ बच्चों, एक दिन चींची ने गुनगुन से कहा,
1: चलो गुनगुन अमरूद के पेड़ पर चढ़कर खेलें।
0: तो बच्चों दोनों पहुंची अमरूद के पेड़ के पास और बोली,
1: अमरूद भैया क्या हम यहाँ खेल सकती हैं?
0: अमरूद ने कहा,
2: हाँ हाँ खेल लो, लेकिन ध्यान रहे मेरी टहनियाँ ना टूटें।
0: चींची चिड़िया हैरान होकर बोली,
1: अरे अमरूद भैया तुम्हें दर्द होता है क्या?
2: और नहीं तो क्या, तुम्हें दर्द होता है ना, वैसे ही हम पेड़ों को भी दर्द होता है।
1: अच्छा अच्छा, हम नहीं तोड़ेंगे टहनियाँ।
0: ऐसा कहकर बच्चों दोनों खेलने लगी हैं। और कुछ देर के बाद उन्हें भूख लगी। गुनगुन बोली,
1: अमरूद भैया क्या हम तुम्हारे अमरूद खा लें?
0: ये सुनकर बच्चों अमरूद ने कहा,
2: मैं अभी भूखा हूँ, तुम पहले मेरे लिए भोजन लाओ, यानी मेरे आहार का इंतजाम करो।
0: हैरान होकर चींची ने पूछा,
1: अरे तुम खाना भी खाते हो?
0: तो अमरूद बोला,
2: इसमें हैरान होने की क्या बात है, खाना तो सभी को चाहिए, खाना खाकर ही तो हम बढ़ते हैं। तुम भी तो पहले छोटी नन्नी मुन्नी थी, तुम्हारी अम्मा तुम्हें दाना ला ला कर खिलाती थी, तभी तो तुम बड़ी हुई और चलने उड़ने लगी।
0: ये सुन बच्चों चींची ने कहा,
1: लेकिन तुम्हारे लिए खाना कौन लाता है?
0: गुनगुन बोली,
1: और भला तुम खाते क्या हो, हमें बताओ तो झटपट तुम्हारे लिए ले आए खाना।
0: अमरूद ने कहा, बच्चों
2: मैं तो मिट्टी से अपना आहार यानी खाना लेता हूँ, जब जमीन में पानी डाला जाता है ना, तो मेरी जड़ें उस पानी को पीती है, तने उस पानी को पहुंचा देते हैं पत्तियों तक, पत्तियां सूरज की रोशनी की सहायता से बनाती हैं खाना, मेरा आहार।
0: गुनगुन ने पूछा,
1: अरे भाई प्रकाश यानी रोशनी से कैसे बनता है तुम्हारा खाना?
0: अमरूद का वृक्ष बोला,
2: जैसे मुन्नी की अम्मा अंगीठी में खाना बनाती है ना, वैसे ही सूर्य का प्रकाश है हमारी अंगीठी, उसी की मदद से पत्तियां

0: पेड़ की ये बात सुनते ही चींची खुश होकर बोली,
1: अरे ये तो बड़ी आसान बात है, गज्जू हाथी तो हमारा दोस्त है। दोस्त अभी लेकर आते हैं उसकी सूंड में भरकर पानी।
0: तो बच्चों झट दोनों पहुंची गज्जू हाथी के पास। उनकी बात सुन गज्जू ने अपनी सूंड में ढेर सारा पानी भरा। फिर वे तीनों चल पड़े अमरूद के पेड़ की ओर। अमरूद के पेड़ की जड़ में गज्जू ने सारा पानी उंडेल दिया, ढेर सारा पानी। बस जड़ों ने पानी ऊपर खींचा, तनों ने पत्ती तक पहुंचाया। सूर्य के प्रकाश की मदद से पत्तियों ने पेड़ का आहार बनाया। अमरूद का पेड़ अब भूखा ना रहा और बोला,
2: आओ आओ तुम भी अपनी भूख मिटाओ, लो ये अमरूद खाओ खाओ।
0: चींची चिड़िया, गुनगुन गिलहरी और गज्जू हाथी ने मिलकर बच्चों खूब मीठे मीठे अमरूद खाए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 10 के अभिल 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: एक तिनका।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM जाबवा की आवाज।
1: अपनी जिम्मेदारी निभाना।

0: महानगर के एक बस स्टैंड पर संजय अपने पिताजी के साथ बस का इंतजार कर रहा है। संजय स्कूल के लिए बस की प्रतीक्षा में है। बस स्टैंड पर काफी भीड़ है।
1: आप किस बस में जाएंगे?
2: कौन से नंबर की बस निकली है अभी?
0: संजय पिताजी से पूछता है,
3: बाबूजी अभी तक बस नहीं आई, कहीं स्कूल को देर ना हो जाए।
4: आती ही होगी बस। अरे देखो ना, अपनी बस के इंतजार में लोग सड़क के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं।
3: हाँ बाबूजी, ऐसे में सामने से आती बस दिखाई कैसे देगी?
4: हाँ ये तो है।
0: तभी एक युवक उन दोनों के पास आता है और कहता है,
5: आप दोनों बीच सड़क से हटकर फुटपाथ पर आ जाइए।
4: जी।
3: आप कौन है?
5: मेरा नाम आदित्य है। आप थोड़ा फुटपाथ पर आ जाइए।
4: जी ठीक है, आओ बेटा आओ, इधर ऊपर आ जाओ फुटपाथ पर।
5: भाई साहब अब आप भी आ जाइए फुटपाथ पे।
6: क्यों? इतने लोग खड़े हैं और तुम हमसे क्यों कह रहे हो भाई?
5: हाँ हाँ, मैं औरों से भी कह रहा हूँ, आप तो आ जाइए।
6: भैया हम यही ठीक है, आप अपना काम।
5: हाँ आप अपना काम करिए। किनारे थोड़ा किनारे आ जाइए आप। भाई साहब फुटपाथ पे आ जाइए आप। बच्चे अब भी आ जाइए फुटपाथ पे। बहन जी फुटपाथ पे आ जाइए आप।
3: बाबू जी देखिए,
5: बहन जी
3: आदित्य भैया एक एक करके सबको कितनी अच्छी बात कह रहे हैं।
4: हाँ और कुछ लोग उसकी बात मानकर फुटपाथ

0: पर आ भी रहे हैं।
1: पर वो दो आदमी तो अभी सड़क पर ही खड़े हैं।
0: उस युवक ने उन्हें समझाया था, पर वो नहीं माने तो क्या किया जा सकता है।
1: लो, आदित्य भैया तो चले गए।
2: तभी एक बस इतनी तेज गति से आई कि पीछे हटने की कोशिश में बीच सड़क पर खड़े दोनों आदमी गिर पड़े और उन्हें चोट लग गई।
1: अरे ये दिव्या, ये क्या क्या हो रहा है? अरे चोट लग गई,
3: कोई उठाओ
1: तो सही है। अरे खड़े रहे,
3: आपने उस युवक की बात मान ली होती तो ऐसे चोट तो ना लगती।
1: अरे वो भला आदमी तो कितनी बार समझा रहा था मगर यही नहीं माने, अब लग गई ना।

0: संजय स्कूल पहुंचा। वहां अध्यापिका जी कक्षा में पूछ रही थीं,
1: बच्चों कल मैंने आपसे कहा था कि आप ग्रुप बनाकर कक्षा के कमजोर बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या आपने ऐसा किया?
2: हाँ, मैंने तो किया है।
1: रानी तुम बताओ।
3: बहन जी, मेरे साथी रमेश ने पढ़ाने में कोई रुचि ही नहीं ली, इसलिए मैंने भी किसी को नहीं पढ़ाया।
1: रानी, ये तो गलत बात है। देखो, हमें अपनी जिम्मेदारी निभाते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। हमें केवल अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
3: जी बहन जी।
2: बिल्कुल ठीक, जैसे आदित्य भैया आज बस स्टैंड पर कर रहे थे।
1: आदित्य भैया कौन?
0: तब संजय ने अध्यापिका जी को बताया कि बस स्टैंड पर कैसे आदित्य भैया लोगों को फुटपाथ पर खड़े होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। महानगर की एक सड़क पर अखबार का एक पत्रकार लोगों से बातचीत कर रहा है।
4: भाई साहब, भाई साहब।
5: जी, मुझसे कुछ कहा?
4: जी हाँ, आप ये बताइए कि आज के वातावरण को, अपने समाज को अगर अच्छा बनाना हो तो क्या करना चाहिए?
5: मैं तो ये कहूँगा कि इसके लिए समाज में शांति होनी चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए
4: जी,
5: लोगों में ईमानदारी होनी चाहिए। पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के समाज में ये सब बहुत ही कम रह गया है। मैं तो कहूँगा सब खत्म हो गया है।
4: नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये सब खत्म हो गया है। क्यों बहन जी, आप क्या कहती हैं?
1: अरे कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप भी, आजकल कुछ ठीक भी है क्या? आप छोड़िए भी, हमें क्या करना है इन बेकार की बातों में पढ़कर, हम तो चलते हैं।
6: रुकिए, ये बेकार की बात नहीं है। जब सब कुछ गलत हो रहा है तो यूं मुंह फेर कर मत जाइए, आगे बढ़िए। शायद आपकी एक छोटी सी कोशिश भी इस गलती को सुधारने में काम आ जाए। ये समाज सबका है, इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी सबकी ही है।
0: बहाना।
5: उषा जी।
1: जी सर।
5: ये पत्र आज ही भिजवा दीजिए, बहुत जरूरी है ये।
1: सर आज?
5: जी आज।
1: सर आज तो नहीं जा सकता।
5: पर क्यों? अभी बजे हैं सुबह के 10 और डाक जाती है दोपहर को 3:30 बजे, तब तक ये टाइप होकर पोस्ट हो सकता है ना?
1: सर अभी तो ये टाइप भी नहीं हो सकता।
5: पर क्यों?
1: सर अभी तो लाइट ही नहीं है।
5: लाइट नहीं है तो क्या हुआ, इस कमरे में तो काफी रोशनी है, आप बिना लाइट के भी इसे टाइप कर सकती हैं।
1: सर मेरा मतलब है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इसलिए कंप्यूटर नहीं चलेगा,

0: पर इलेक्ट्रिसिटी आ भी तो जाएगी।
1: सर इलेक्ट्रिसिटी तो एक घंटे बाद आएगी।
0: और क्या,
1: तब तक चाय का
0: तो चाय पीकर लौटने का इरादा नहीं है क्या?
1: सर है तो,
0: पर क्या,
1: तब तक इस कंप्यूटर पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि मेरी बारी आज आएगी ही नहीं।
0: आप इसे शुक्ला जी के कंप्यूटर पर कर लीजिएगा, वो खाली पड़ा रहता है।
1: शुक्ला जी का कंप्यूटर तो पहले ही खराब पड़ा है।
0: चलिए जाने दीजिए उषा जी, आप लाइट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर चाय या अपनी बारी किसी का इंतजार मत कीजिए। आप इस पत्र को साधारण टाइपराइटर पर टाइप करके दे दीजिए। क्या ये हो सकता है?
1: हाँ सर ये तो हो सकता है।
2: काम न करने के इतने बहाने और काम करने का कोई बहाना नहीं।

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज़ पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
2: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं। और जैसा कि आपने बताया, इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
2: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
3: एक बार जब विसंगति आ जाती है, जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र है।
2: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
3: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूर होता है उससे।
2: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
3: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
2: जी बिल्कुल। और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर सिंह के मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
3: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
4: जी मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
2: जी बताइए डॉक्टर।
3: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
2: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है?
3: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभाव से रोका जा सकता है, और जिसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
2: तो दोनों को ही खाना।
3: हाँ, और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहाँ पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
2: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
3: जी
2: और डॉक्टर साहब एक
5: क्या फाइलेरिया की दवाई एक बार खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
2: बताइए।
3: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
2: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
3: ये जब अभियान चलता है हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें। जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
2: जी और डॉक्टर साहब एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
3: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में दस बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
2: अच्छा। जी जी रात के 10 बजे से 2 बजे तक ज्यादा
3: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
2: जी
6: और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
2: जी बताइए।
3: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
2: जी
1: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज पर।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
7: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपनी बातें।
8: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अर्जे मनीष कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और तैयारी कर रहे होंगे आगामी फसल किस तरीके से करें। और खेतों की तैयारी के साथ साथ हमारे किसान साथी अब तो समझ ही गए होंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से यानी खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक वो छोटी छोटी बात को हम लेकर आते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहती है। खासतौर पर देखा जा रहा है कि पथरीला इलाका है और झाबुआ जिले को देखा जाए तो किसान साथियों के पास सीमित संसाधन, सीमित जगह होने के कारण किसान साथी अच्छी तरीके से खेती नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, यदि आप वैज्ञानिक विधि से या फिर आपको लगता है कि हमें छोटे ही रकबे में अच्छी फसलों को करना है तो आप संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी या फिर वैज्ञानिक की सलाह लेकर अपने खेतों को अच्छा हरा भरा बना सकते हैं और साथ में अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम उन छोटी छोटी बातों को लेकर आते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होती है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम बातें खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम नीम की खेती, चूंकि नीम की खेती भारतीय संस्कृति में नीम को एक विशेष महत्व मिलता है और नीम को यहाँ बहुत सी मान्यताओं के साथ जोड़ा भी गया है। नीम की गुणवाणी औषधि का दर्जा भी दिया गया है और नीम की खेती भी इतनी लाभकारी भी साबित होती है जिसमें मौजूद औषधीय गुण इतने गुणकारी और मूल्यवान हैं जिनकी इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। भारत में कई स्थानों पर इसे पूजा भी जाता है और नीम का उपयोग दवाइयों के तौर पर किया जाता है। नीम से निर्मित तेल और निवोलियों से एकत्रित करके इसे बाजार में अच्छे भाव में बेचा जाता है। यह मैली ऐसी कुल का पौधा है, इसको मुख्य तह नाम दिया जाना जाता है। इसमें नीम पेड़, मोरगासा पेड़, भारतीय बकाहन, सफेद देवदार, स्वर्ण पेड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथियों, नीम के होने वाले फायदे के बारे में भी थोड़ा आपको बता देना चाहते हैं कि घाव पर असरदार भी होता है नीम का पौधा, क्योंकि नीम में उपस्थित एंटीबायोटिक गुण जो रहते हैं अत्यंत लाभकारी साबित होते हैं। इसके पत्तों को पीसकर घाव पर लगाकर घाव को भराया जाता है। नीम की दातुन भी, क्योंकि आस पास नीम की दातुन नहीं मिलती है, शहरों में खासतौर पर ये नहीं मिलती है और शहर के लोग खासतौर पर इसको तलाशते हैं कि नीम की दातुन कहाँ मिले। और कोविड काल में अगर देखा जाए तो इसका तो जवाब ही नहीं है। वास्तव में नीम की निमोली और नीम की दातुन, नीम की कोंप को लोग देख रहे थे, कहाँ पर नीम का पौधा है वहाँ पर जाकर ताजी ताजी हवा ले रहे थे, नीम की कोंप खा रहे थे जिससे हमारे खून भी साफ होता है। और दातुन की अगर बात है, रोजाना नीम का दातुन करने से दांतों में मजबूती बनी रहती है और दांतों में किसी प्रकार का रोग भी नहीं लगता है। साथ में बालों के लिए भी नीम का इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पत्तों को पीसकर यदि बालों में लगाया जाता है तो बहुत लाभकारी साबित होता है। नीम का काढ़ा, आपको पता ही होगा कि नीम के पत्तों को उबालकर यदि काढ़ा बनाकर हम रोजाना एक गिलास पिया जाए तो उसके शरीर में अत्यंत लाभकारी होता है। नीम के पानी से स्नान करना, नीम के पत्तों को मिलाकर यदि पानी में डालकर स्नान किया जाए तो इसके शरीर साफ होता है और बहुत से फायदे भी हमें मिलते हैं। खासतौर में मलेरिया में असरदार होता है। नीम मलेरिया में फैलाने वाले मच्छरों को दूर रखने में अत्यंत सहायक है। जिस वातावरण में नीम के पेड़ रहते हैं वहां पर मलेरिया नहीं फैलता है। नीम के पत्तों को जलाकर रात को धुआं करके मच्छर नष्ट हो जाते हैं और विषम ज्वर जिसे मलेरिया कहा जाता है उससे भी बचा जा सकता है। बिच्छू को काटने में असरदार होता है, क्योंकि बिच्छू को काटने पर नीम के पत्तों को मसल कर काटे गए स्थान पर लगाकर यदि लगाते हैं तो जलन नहीं होती है और जहर का भी असर कम होता है। उपयुक्त जलवायु के लिए, क्योंकि नीम की खेती करने के लिए आपको तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वर्षा 400 से 1200 मिलीमीटर होनी चाहिए। इसको उगाने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसको आप सभी प्रकार की मिट्टी में कैसे भी और सभी प्रकार की भूमि, जैसे सुर्ख पथरीली इलाका हो, रेतीला इलाका हो, खासतौर पर अगर देखा जाए झाबुआ जिले को देखा जाए तो पथरीला इलाका है, तो यहाँ पर आसान तरीके से इसको उगाया जा सकता है। गहरी चिकनी मिट्टी हो वहाँ पर भी उगाया जा सकता है, भूमि में आसानी से इसे उगाया जा सकता है। आरंभिक अवस्था में नीम के पौधों को पाले का खतरा बना रहता है, अतः वृक्षारोपण के बाद एक वर्ष तक पाले से बचाना आवश्यक होता है। तत्पश्चात पाला सहन कर सकने में यह सक्षम होकर तैयार होता है। कैसे तैयार करें? वैसे तो नीम सभी तरह की मिट्टी में उगाया जाता है, फिर भी खेत को अनेकों बार जोतकर इसमें कंकड़ पत्थर अलग करके इसको खेती लायक बनाया जाता है। और बीज का उपयोग कैसे करें? बीजों को खरीद करके समय आपको इतनी गुणवत्ता का विशेष ध्यान देना होगा जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना आए। आप इसको किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त बीज भंडार केंद्र से खरीद सकते हैं। बीज के अंडे जैसे सफेद और दीर्घवृत्तीय होते हैं। बुआई का सही समय जो रहता है, नीम की बुआई का समय जो रहता है, पनीरी लगाना अवश्य याद रखने के लैम रखना जरूरी रहता है। और नीम का कलम दार को आसानी से लगाया जाता है। 12 से 13 महीने पुरानी नर्सरी के पौधों के कलम को तैयार किया जाता है। सीधी बुआई आसान होती है, इसे छिद्र रोपण छिटका विधि कतारों की बुआई द्वारा लगाया जाता है। और यह खेतों पर निर्भर करता है कि आपके खेत कैसे हैं। तो ये सारी बातें हैं और अधिक बात के लिए आज हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, तो उसमें हम जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने नीम की खेती कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से फीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटा भील 90.8 FM।

0: ये नहीं
1: मैम, आप लोग रेडियो अपनी बात है।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM। आप रेडियो अपनी बातें।
1: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस वीली गीत को सुना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस खास रिपोर्ट को हम सुनते हैं और जानते हैं नीम के कैसे हम खेती कर सकते हैं, नीम की खेती किस तरीके से कर सकते हैं और इसके आइए हम जानते हैं इस खास रिपोर्ट में।
3: कृषि प्रधान देश के लिए खाद आत्मा की तरह होती है और इस आत्मा की सलामती के लिए किसान हमेशा तत्परता के साथ कोशिश करता रहता है। किसान की आजीविका का साधन खेती है और खेती खुशहाल रहे इसके लिए इसमें इस्तेमाल होने वाला खाद सीधे तौर पर उसका साथी होता है। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि सरकार ने अब यूरिया जैसे महत्वपूर्ण खाद में 100% नीम के इस्तेमाल की बाध्यता कर दी है। सरकार की इस बेहतरीन पहल के बाद से नीम की मांग बढ़ गई है। देश की कई अग्रणी संस्थाएं जो पहले ही नीम पर शोध कर रही थी, उन्होंने अब बढ़ चढ़ कर इसके शोध और प्रयोग के दायरे को बढ़ा दिया है। हर रोज नीम से जुड़ी नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी पिछले कई सालों से नीम को लेकर अलग अलग शोध कर रहा है। शोध के दौरान ही संस्था ने एक ऐसी नीम की वैरायटी की खोज की जो न सिर्फ कम समय में फल देने के लिए तैयार हो जाता है बल्कि करीब करीब हर परिस्थिति में इसको उगाया भी जा सकता है।
4: पहली बार फूल आते हैं लगभग जो सामान्य प्रजातियां हैं सामान्य ग्रोइंग नीम है औसत 5 साल के बाद आते हैं, 5 से शुरुआत होकर के 6-7-8 तक भी आते हैं। लेकिन हमारी जो विकसित नई विकसित प्रजातियां हैं ये प्रजातियां दूसरे साल प्लांटेशन के दूसरे साल से ही फूल आना शुरू करते हैं और तीसरी चौथी या फोर्थ ईयर का आता है तो सफिशियंट मात्रा में बीज हार्वेस्ट किया जा सकता है।
3: नीम पर नए नए शोध कर रहे वन वैज्ञानिकों का कहना है कि नीम की खेती से न सिर्फ किसानों की आय में इजाफा हो सकता है बल्कि मिट्टी का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वन वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में नीम की खेती किसानों की आय को कई गुना बढ़ा सकती है।
5: जहाँ नीम एक तरह से एक फंडरू एक ट्री था जिसका कोई वैल्यू नहीं था सवाए इसके कि हम कोई छाया ले लें कुछ निम्बोलिया FIM बना लें, आज ये एक कमर्शियल क्रॉप में तब्दील एक तरह से कन्वर्ट हो रही है और ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है जहाँ वृक्ष और कृषि दोनों जो क्रॉप्स हैं फसलें हैं ये आपस में मिलके किसान को एक अतिरिक्त आय और यूं कहूं कि जो एडिड इनकम है उसकी तरफ खींच रहे हैं।
3: नीम की मांग लगातार बढ़ रही है, खाद बनाने वाली कंपनियां भी नीम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव मदद कर रही हैं। इसी कड़ी में देश की अग्रणी खाद बनाने वाली कंपनी इफ्को ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता कर नीम की नई वैरायटी के रिसर्च और खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुजरात के अहमदाबाद में कलोल में मौजूद इफ्को की खाद कंपनी ने कई एकड़ जमीन नीम की खेती के लिए FRI को दी है ताकि यहाँ इसकी खेती के साथ साथ रिसर्च भी किया जा सके।
6: पहले हम लोगों ने बहुत सारी जगह इसका प्रयास किया, विदेशों में भी कई जगह प्रयास किया गया लेकिन अंतिम निर्णय ये हुआ कि हम अपने देश के शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसका शोध करेंगे। वहां पे हम लोग गए, वहां के निदेशक से बात की और निदेशक से बात करने के बाद में ये निर्णय लिया गया कि पॉलीप्लाइडी विधि से जिसमें नीम में क्रोमोसोम्स के नंबर को बढ़ा करके इसके उत्पादन को तेज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इसकी ग्रोथ को तेज किया जा सकता है और उसमें नीम का तेल और एजरडिक्टिन की मात्रा दोनों बढ़ाई जा सकती है। तो ये शोध परियोजना यहां से शुरू होती है, फिर उस शोध परियोजना को हम लोगों ने वित्तीय मदद की और उसका अनुश्रवण, उनके लिए जो भी जरूरतें थी, उनके लिए जमीन की जरूरत थी, उनके लिए फंड्स की जरूरत थी, उनके लिए आदमी की जरूरत थी, जो भी उनकी आवश्यकताएं हुई उन आवश्यकताओं को पूरा करके ये 6 साल का अनवरत प्रयास हमारी इफ्को की टीम ने और एफआरआई के साइंटिस्ट ने, बहुत ही योग्य वैज्ञानिक है एफआरआई के, उन लोगों के प्रयास से 6 प्रजातियां रिलीज हुई हैं।
3: नीम को बढ़ावा देने के लिए आखिर इफ्को ने ये पहल क्यों की, इसकी वजह खुद कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर योगेंद्र कुमार बता रहे हैं।
6: 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हम अब देश में 100% नीम लेपित यूरिया का ही प्रयोग करेंगे, यानी जितना भी यूरिया बाजार में बिकता है, जो किसान भाई हमारे प्रयोग करते हैं, उसमें नीम के तेल की, नीम की एक लेपन किया जाएगा, नीम की एक कोट होगी। तो वो एक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी का था, उससे प्रेरित होके हमारे प्रबंध निदेशक डॉक्टर वी एस अवस्थी साहब ने अपनी संस्था के में निर्णय लिया कि इतना नीम का तेल आएगा कहाँ से और इतना निबोली कहाँ से पैदा होगी, इसके उत्पादन को बढ़ाना है और इसके नीम में कोई ऐसी शोध करके प्रजाति हमको लानी है जिससे नीम का तेल ज्यादा मिले, वो जल्दी बढ़े, जो भी निबोली किसान भाई एकत्रित करते हैं उनको क्रय करने की एक सुनिश्चित व्यवस्था अगर हम कर लें और उस सुनिश्चित व्यवस्था को क्रय करने के बाद में, क्रय करके उसका जो आगे का काम है, उसके प्रोसेसिंग का काम है, विधायन का काम है, उसे उत्पाद बनाने का काम है, इसको भी अगर हम बढ़ावा दें तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने में, उत्पादन को बढ़ाने में और साथ ही साथ जितने भी रसायन मुक्त खेती के लक्ष्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने बनाए हैं, उन सबको पूरा करने में एक बहुत बहुत ही लाभकारी कदम होगा इसके लिए।
0: इसमें पॉलीप्लाइडिंग टेक्निक से एकदम टिश्यू कल्चर के माध्यम से नीम के पेड़ को ऐसा करें कि वे 3 या 5 साल के अंदर निमोली देने लगे, तो उसके कारण 2 चीजें होंगी। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और उसके कारण वातावरण में जो प्रदूषण है वो कम होगा, और दूसरा कि निमोली जल्दी आ जाएगी तो उसको 15 रुपए किलो में हम खरीदते भी हैं और इस पे हम रिसर्च भी करा रहे हैं कि किस तरीके से नीम के और जो अच्छी चीजें हो सकती हैं, जैसे बायोपेस्टिसाइड बन सकते हैं नीम से, उसमें बायोपेस्टिसाइड के माध्यम से हम किसान को ज्यादा पैसे दे सकते हैं, उसकी आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर हमने फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट किया और उनको उनके साथ संपर्क स्थापित करके हमने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसको कि हमने टोटली फंड किया कि हमें नीम की वैरायटीज वो आप डेवलप करके दीजिए जो पॉलीप्लाइडिंग तरीके से टिश्यू कल्चर के माध्यम से जिनका विकास हो और इसमें फूल और फल जल्दी आने लगे। तो इस दिशा में हमारे देश में तकरीबन 60 से ज्यादा वैरायटीज है नीम की।
1: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अपन ने वैरायटी को जाना कि नीम की कौन कौन सी वैरायटी है और खास तौर पर नीम की खेती किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में जाना। कार्यक्रम में और बहुत सारी जानकारी है नीम से जुड़ी यानी खेती से जुड़ी, लेकिन इसको सुनने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। अपना रेडियो अपनी बात है।

0: आया था।
1: वन वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत और इनकी टीम पिछले कई सालों से वरिष्ठ वन वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में नीम पर लगातार शोध कर रही है। किसानों के लिए नीम की नई किस्म FRI ने जो विकसित की है, आखिर उसमें ऐसा क्या खास है, ये वो खुद बता रहे हैं।
2: इन प्रजातियों को तेल की मात्रा, अत्यधिक तेल की मात्रा सामान्य प्रजातियों से लगभग औसत 5-8% तेल ज्यादा, और अजाडिरेक्टिन इसका एक केमिकल मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, लिमोनाइड ग्रुप का होता है, वो सामान्य प्रजातियों में 3000 के आसपास, 2500 से 3000 ppm के आसपास ही पाया जाता है औसत, और हमारी इन 6 प्रजातियों में जिनमें मिनिमम 7000 का और मैक्सिमम 10000 ppm तक का है, इसका औसत 9000 आसपास है।
1: नीम की इस नई प्रजाति की खोज जब की गई तो सबसे पहले ये ध्यान में रखा गया कि अगर इसे खेत में लगाया जाता है तो फिर उस खेत में दूसरी फसल की पैदावार संभव नहीं है, जो किसानों के हित में नहीं था। ऐसे में ये सवाल उठता है

0: किसी भी किसान को अपनी बाउंड्री पे नीम के पेड़ लगा दे और उससे वो आय कमा सके।
1: किसान नीम की खेती कहाँ करें, या यूं कहें कि नीम के पेड़ को किसान उपजाऊ जमीन में ना लगाकर कहाँ लगाएं? इसकी सही सही जानकारी तो मिल गई, लेकिन सवाल एक और बनता है कि आखिर किसान नीम की खेती क्यों करें?
2: लीफ से लेकर के तना, फल, तेल सभी की उपयोगिता विभिन्न प्रकार की दवाओं के रूप में भी किया जाता है। दैनिक जीवन में दातुन से लेकर के कॉस्मेटिक बनाना, टॉयलेटरीज बनाना, मेडिसिन्स बनाना, ये सारी उपयोगिता इसकी जो बहुत पहले से एस्टेब्लिश है, इसमें हमारा कोई नया नहीं है। लेकिन जो ये इसके लगाने का जो पर्पज है, अदर पर्पज को आप इनके बाद देखें कि सामान्य नीम अगर आप लगाते हो तो उससे ज्यादा इसमें उत्पादन मिलेगा। आप नीम के अच्छी प्रजातियों को लगा करके ज्यादा तेल की मात्रा के आधार पर उसको मार्केटिंग कर सकते हैं। अधिक उपज के बाद बस शीघ्र ही इसमें फल आएंगे आपके साथ में। क्रॉप के साथ कल्टीवेशन का किया जा सकता है। जो लेसर उपयोगी जमीन है उस जमीन पर इसका प्लांटेशन करके लाभ कमाया जा सकता है।
3: नीम एक दिन इकोनॉमिक एंड वाइबल मॉडल होगा एग्रीकल्चर के लिए, और जो कि आज भी है, केवल हमको उसके गुणों को पहचानने की आवश्यकता है, उसकी कीमत को महसूस करने की आवश्यकता है और उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।
4: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी अपन ने गुणों को किस तरीके से पहचान कर सकते हैं हमारे किसान साथी, उस पर हमारे विशेषज्ञ की इस खास बातचीत को सुना कार्यक्रम में। और भी बहुत सारी बात चीत है ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने के लिए, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटा भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: एफआरआई की टीम नीम की इस प्रजाति पर पिछले कई सालों से काम कर रही थी। लगातार रिसर्च का काम चल रहा था, लेकिन एफआरआई की रिसर्च को मजबूती मिली साल 2015 के बाद। और वो कैसे, ये खुद बता रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत।
1: भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद देहरादून के विभिन्न संस्थानों जैसे जोधपुर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून और अन्य संस्थाओं ने मिलकर इसमें कार्य तो 91, 92, 93 में ही प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वो कार्य अनुसंधान कार्य लगातार नहीं चला, छुटपुट हुआ, आइसोलेटेड पार्ट्स में हुआ। इसके बाद में हमने 2015 में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने इफको के साथ मिलकर के एक अनुसंधान कार्यक्रम नीम सुधार अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की।

ना लो के

0: रोगण।
1: FRI ने जिस नीम की नई प्रजाति की खोज की है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और ये बाकी नीम की प्रजाति से कैसे अलग है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं संस्था के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार। डॉक्टर अशोक भी पिछले कई सालों से इस नई प्रजाति पर शोध कर रही टीम का ही हिस्सा हैं।
2: जो हमारी नई प्रजाति हमने जो डेवलप की है वो 2 से 3 साल में फ्लावरिंग करना चालू करती है। दूसरा इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, नीम में करीब जो आम नीम है उसमें 25 से 30% के आसपास ऑयल मिलता है, लेकिन जो हमारी प्रजातियां हैं इनमें करीब करीब 38 से लेके 41% तक जो है नीम ऑयल पाया जाता है। और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो आस्पेक्ट है, इसमें एक अजैक्टिव कंटेंट होता है। ये कंटेंट नीम में आम नीम में करीब 2500 से 3000 ppm के आसपास होता है, जबकि जो ये हमारी उन्नत जो किस्में हैं इनमें 8000 से लेकर के और 10000 के आसपास तक ये वेरी करता है। सो ये तीन जो पैरामीटर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और इन्हीं के बेस पे हम लोगों ने ये वैरायटी जो है डेवलप की है।

0: डॉक्टर अशोक ने नई प्रजाति के बारे में तो बताया, लेकिन किसानों को ये जानना भी जरूरी है कि अगर किसान इसकी खेती करें तो उसे क्या क्या करने की जरूरत पड़ेगी, नीम की खेती में किसानों को कितना खर्च आएगा। अगले साल की शुरुआत से किसानों के लिए ये बाजार में उपलब्ध होगा।
1: मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी किसी इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। उनको अच्छी किस्म के पौधे अभी तो ये हमने निजात किए हैं, धीरे धीरे नर्सरीज में जाएंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इन पौधों को खरीद के सिर्फ लगाना है और इस तरह से लगाना है ताकि जो उनकी जो एक एक एक तरह से जमीन के किनारे पे है या फिर बैकयार्ड में उसमें लगाना है ताकि कुछ नीम के पेड़ अगर वहां रहेंगे तो वो 2 से 3 साल बाद में फिर वो प्रोडक्शन करना चालू करेंगे, उनमें बीज का उत्पादन होगा जिसको सेल करके एक अच्छी आमदनी उसमें मिल सकती है। और मैं नहीं समझता हूं कि इसमें किसान को किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी।
0: नीम की इस प्रजाति को खोजने में कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कई सालों से लगातार इस पर काम कर रहे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि देश के कई हिस्सों में इसको लेकर शोध किए गए, तब जाकर उनकी टीम इस प्रजाति को खोज पाई।
1: ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, पूरे देश से अच्छा जर्मप्लाज्म इकट्ठा करना, उस जर्मप्लाज्म को मेंटेन करना, और सबसे बड़ा जो इसमें चैलेंज है, मैं इसको बिल्कुल स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा कि नीम के बीज को आप केवल 15 से 20 दिन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाद में उसका जो जर्मिनेशन का पावर है वो खत्म हो जाता है, वायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इन 15 दिन में पूरे बीज को लाना, उसको रिसर्च स्टेशन में इकट्ठा करना, उसके बाद उसकी बुआई करना, उसको मेंटेन करना और आगे बढ़ाना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा काम था। इसके बाद जो इस प्रोसेस में है कि हमको अलग अलग रीजन्स में इन सभी जो हमने जर्मप्लाज्म इकट्ठा किया है उसको इवेल्युएट करना होता है, उसमें ये देखना होता है कि जो आनुवंशिक जो इसके गुण है और जिस पर्यावरण में जिस वातावरण में ये उग रहा है उसमें आपस में इनका किस तरह का इंटरेक्शन है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
0: नीम की इस नई प्रजाति की खोज में टिश्यू कल्चर का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। FRI के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अजय ठाकुर बता रहे हैं कैसे टिश्यू कल्चर ने इसमें मदद की।
2: जब हमने आनुवंशिक सुधार के बारे में के बाद जब पौधे बनाए उसका परफॉर्मेंस देखा तो हमने क्या किया कि क्लोनल मेथड बोलते हैं, क्लोनल मेथड में हम किसी चीज की हूबहू कॉपी तैयार करते हैं। तो टिश्यू कल्चर में एक बहुत बड़ी सुविधा है कि बड़े पैमाने पे कम समय में हूबहू कॉपी तैयार करेंगे और जब वो पौधा बाहर निकलता है तो वो बीमारी फ्री होता है। जो भी तेल निकलने वाले पौधे होते हैं और वो इमारती मतलब लकड़ी वाले पौधे होते हैं उनमें कुछ टिश्यू कल्चर का बहुत चैलेंज होता है। पहला चैलेंज ये होता है कि वुडी हम लोग बोलते हैं ना कि जो काष्ट प्रवृत्ति के होते हैं तो उनमें बहुत ही मैच्योर पौधे होते हैं, मतलब बूढ़ा गए हो सकते हैं, पुराने हो गए होते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि उसको थोड़ा पुनर्जीवित करना। तो हम अपने मेथड के द्वारा उसमें बहुत तरह की जो है हम PGR बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हार्मोन होता है जैसे हमारे ह्यूमन में भी होता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है इंसुलिन है तो वो पूरा हमारा शर्करा जो शुगर का है उसका डिसाइड करता है, उसी तरह प्लांट के कुछ जो है हार्मोन होते हैं जैसे कि ऑक्सिन है और साइटोकाइनिन है, उसके विधि द्वारा हम उसको पुनर्जीवित करते हैं। और पुनर्जीवित करके पहले तो हम एक बीमारी फ्री पौधे का एक प्रारूप तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं कि पहला तो हम प्रारूप तैयार करेंगे कार्बन कॉपी से पहले। जब हमको वैसा मिल जाता है जिसमें कोई भी बीमारी नहीं होता है तो एक शूट, एक जो उसका तना है या एक ब्रांच जो निकलता है या एक छोटा पौधा निकलता है उससे हम कई पौधे बनाते हैं।
0: हालांकि टिश्यू कल्चर की तकनीक पर काम करने के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, साथ ही साथ इस प्रोसेस के दौरान कई बार निराशा भी हाथ लगी।
2: कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो पहले तो हम बताया कि एक जो हम कहते हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो पिछला रिपोर्ट को देखते हैं, तो हमने उन रिपोर्ट के बेसिस पे काम जब किया तो हमने पाया कि जो जिन पौधों पे हम काम कर रहे हैं उस तरह का हमको उसमें रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि किसी ने एक हार्मोन को कहा था कि अगर एक यूनिट देंगे, तो किसी ने कहा था कि उसको 40 यूनिट देंगे, तो हमने दोनों को लगा के देखा तो हमने देखा कि हमारे उसमें नहीं काम कर रहा है। तो हमने पहले तो अपने शोध को हमारे जो पौधे थे उसके हिसाब से विकसित किया, हमने पाया कि जो जितने लोगों ने बोला था उसका हमने 8 गुना कम किया, तब जाके हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो इससे दो फायदे हुए कि हमको एक तो केमिकल की आवश्यकता या हार्मोन की कम पड़ी, दूसरा उसमें उसके क्लोनिंग में कोई छेड़खानी नहीं होती, यानी वो अपने क्लोनल स्वरूप को मेंटेन करता है। दूसरा उसका चुनौती था कि जब हम ये पौधा लाना, जब भी हम लाते हैं तो 24 घंटे तक में इसको लाना जरूरी होता है, तो हम इसको बहुत ही स्पेसिफिक तरीके की सिस्टम हमने डेवलप की थी। एक हम कूल बॉक्स ले जाते थे, कूल बॉक्स में हमेशा आइस पैक के साथ हम उसको लेके वहां से लाते हैं, और ऐसी व्यवस्था करते हैं या तो उसको हम हवाई जहाज से, या तो हम एसी वाले कंपार्टमेंट वाले ट्रेन से, या फिर हम अगर वाहन का इस्तेमाल करते हैं, कई जगह हमको जीप ही मिलता है, तो एसी वाले वाहन से हम उसको पौधे को काटते थे, सवेरे में काट देते थे, क्योंकि सवेरे के टाइम में सबसे ज्यादा सबसे शांत केमिकल माहौल होता है, और उसके बाद हम उसको पैक कर देते थे, और पैक करके उस कूल बॉक्स में डाल के आइस पैक के बीच में करके हम उसको अगले वहां ले आते थे। तो ये एक बहुत बड़ी इस तरह की चुनौती थी, बहुत निराशा हाथ लगी। देखिए टिश्यू कल्चर में हम दो चीज कहते हैं, एक तो क्लोन होता है और दूसरा क्लोन नहीं होता है, उसको कैलस बोलते हैं। तो शुरुआती दौर में हमको कैलस मिलता था, जब भी कैलस होता है तो उसमें क्लोनिंग नहीं होके वेरिएशन हो जाता है, उसमें मतलब चेंजेज आ जाती है, तो हमारा पर्पस ही डिफीट हो जा रहा था। तो ऐसा हमने बहुत जब किया, तब हम उसको हमने क्या किया, उसके हार्मोन को घटाना या बढ़ाना उस तरीके के कम से कम उसके 17 या 18 एक्सपेरिमेंट किए। जब 17 या 18 प्रयोग के बाद हमने पाया कि इसमें हार्मोन लेवल, हमने हर प्रजाति के लिए अलग अलग हार्मोन लेवल डेवलप किया, किसी के लिए 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से था, किसी के लिए 0.4 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से था। शुरुआती दौर में हमने 10 मिलीग्राम प्रति लीटर भी इस्तेमाल किया था, तो हमने इस पूरे प्रकरण में हमें साल लग जाता है सेट करने में।
0: FRI नीम को लेकर कई और शोध और खोज करना चाहती है, लेकिन उसके पास सबसे बड़ी चुनौती है कि उसे अपने शोध के लिए दूसरे संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है।
3: जो हमारा सेटअप है, हम लोगों के पास अपनी ट्रायल के लिए कोई जमीन नहीं है, जिसके लिए हमें या तो किसानों पे या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इश्यू आता है वो है लैंड का। इस केस में इफको, क्योंकि हम लोगों के जो है कि फंडिंग एजेंसी था, तो इफको की वजह से हम लोगों को कुछ इसमें सपोर्ट मिला है, लेकिन इन जनरल एक चुनौती यह है। और दूसरा यह है कि सीमित जो हम लोगों के पास जो वित्तीय संसाधन है वो निश्चित रूप से इसमें बाधा करते हैं। अगर वित्तीय संसाधन हमें मिलते हैं तो हम लोग और भी जो है स्पेसीज पे, उनकी वैरायटीज पे और क्लोन डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं।
0: नीम की खेती किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्व न सिर्फ मिट्टी को ताकत देते हैं, बल्कि कई तरह की बीमारियों से भी बचाते हैं।
4: इसमें जो लेमनवाइड श्रेणी के जो रासायनिक घटक होते हैं, उनका जो है कीटनाशक गुण बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए इस तेल का उपयोग जो है कीटनाशक के रूप में किया जाता है। जो घटक इसके एंटी फंगल घटक खासकर जो है, उनका उपयोग जो है चर्म रोग में भी किया जाता है। तो इस ऑयल, इस जो ये जो तेल है, नीम का तेल जो है, ये औषधीय और कीटनाशक दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो यौगिक है उसका नाम है एजाडिरेक्टिन। एजाडिरेक्टिन के भी कई श्रेणियां हैं, जिसमें मूल रूप से एजाडिरेक्टिन ए जो है ज्यादा सक्रिय माना गया है। ए से लेके एस तक के इसके वेरिएंट जो है ज्ञात हैं। ए जो है एजाडिरेक्टिन ए, ये जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: नीम का इस्तेमाल आयुर्वेदिक औषधियों में सदियों से होता आया है। नीम का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है।
5: नीम के औषधीय गुणों की बात करें तो स्किन के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, यानी त्वचा की जितनी बीमारियां हैं, उन सभी में लगभग नीम बहुत अच्छा काम करता है। हम एलर्जी की कंडीशंस लेते हैं, यदि हम इस तरह की बॉयल्स हो जाते हैं, फुंसियां हो जाती हैं, जो गर्मियों में भी हो जाती हैं और इन्फेक्टेड फुंसियां भी होती हैं, बॉयल्स बोलते हैं जिनको, या नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं जो कि हील नहीं हो पा रहे, खासतौर से डायबिटिक पेशेंट्स को, यहां तक कि नीम जैसे कि डायबिटीज में भी बहुत उपयोगी है, शुगर को कम करने में भी कारगर है, और शुगर के पेशेंट्स को अक्सर देखा गया कि स्किन डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं और उनको अगर कोई चोट लग जाती है, अल्सर हो जाते हैं, तो वो नॉन हीलिंग वूंड्स या नॉन हीलिंग अल्सर्स कहलाते हैं, वहां पर भी नीम बहुत अच्छा काम करता है। इवन हम ऐसा भी एडवाइस करते हैं कि जो चोट आपकी ना भर रही हो उसमें नीम के पत्तों का काढ़ा बनाकर उसको वॉश करें और फिर बैंडेज या जो भी आपको चिकित्सा बताएगी है उसे करें।
6: नीम एक ऐसा वृक्ष है जिसको हम कल्प वृक्ष की संज्ञा दे सकते हैं। इस धरती के ऊपर जितनी भी तरीके की वनस्पतियों में रोग या कीड़े लगते हैं, जितने हमारे जानवरों में रोग या कीड़े लगते हैं, जितने मनुष्यों में, मानव जाति में जितने रोग और कीड़े हैं, उन सबको मारने का, उन सबको नष्ट करने का, उन सबका समन करने का एक कोई उपाय है, वो नीम है।
0: नीम की ये नई प्रजाति किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार और देश की अग्रणी संस्थाएं जिस तरह से नीम की खेती और उसके अलग अलग उत्पाद को प्रोत्साहित कर रही हैं, उससे आने वाले दिनों में नीम किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकेगा।
7: रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना हमने, जाना किस तरीके से नीम के खास गुण होते हैं और किस तरह से औषधि पौधे के रूप में इसको देखा जाता है और किस तरीके से इसको बाजार में बेचा जाता है और इसमें कितने सारे खास गुण रहते हैं, इसके बारे में जानकारी को जाना। हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अब समझ गए होंगे कि हम अपनी एक नई खेती को कर सकते हैं, नई चीज है, नए खेती है, इसको किस तरीके से कर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया था कि इस तरीके की खेती हमारे किसान साथियों को औषधि खेती करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में हमारे किसान साथियों की आय में बढ़ोतरी हो। इसी के साथ साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तो आपके रेडियो साथी मनीष से लेते हैं जाने की अनुमति और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से बीली गीत को। नमस्कार।
8: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे हैं SN रेडियो, जहां बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि आवाज, शब्द और सोच के जरिए महसूस की जाती हैं। मैं हूं तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये है आपका अपना शो जिंदगी के रंग गीतों के संग। आज का एपिसोड उन लोगों के नाम है जो सिर्फ एक रोल में फिट नहीं होते बल्कि हर जगह अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। अकेडमिक्स हो या रेडियो, क्लासरूम हो या स्टेज, पोएट्री हो या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हर जगह कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और कनेक्शन बना लेते हैं। आकाशवाणी जयपुर, दूरदर्शन राजस्थान, मल्टीपल लिटरेरी प्लेटफॉर्म्स, एजुकेशन समिट्स और नेशनल इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, एक स्ट्रॉन्ग, ग्रेसफुल और कंसिस्टेंट प्रेजेंस। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर, पोएट, राइटर, रेडियो प्रोफेशनल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। नेहा जी, आपका SN रेडियो पर खूबसूरत आवाज से स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच तनुषा जी, और सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार मैम, हम बहुत ही एक्साइटेड हैं आज के इस इंटरव्यू के लिए, सो लेट्स जस्ट बिगिन।
1: या
0: आपकी जर्नी डॉक्टर नेहा बहुत सारी जगहों से गुजरी है, बहुत मल्टीपल चीजें आपने अचीव करी हैं लाइफ में। फ्रॉम अकेडमिक्स, योर जर्नी स्टार्टेड अकेडमिक्स से, फिर रेडियो, फिर लिटरेचर, ऐसे करते करते काफी मल्टीपल, मल्टी फेज, मल्टी फेसेटेड जर्नी रही है। तीन अलग अलग वर्ल्ड्स हैं, अकेडमिक्स है, रेडियो है, लिटरेचर है। तो अगर आप अपनी जिंदगी के फ्लो को एक फ्लो में देखें कि कैसे वो जर्नी शुरू हुई, कहाँ वो शुरू हुई और कहाँ वो आपको लेकर गई और किस तरह से ये सफर मैप होता गया, तो हमारे लिसनर्स को सबसे पहले बताएं।
1: जी देखिए, जब हम बात करते हैं, जैसा आपने कहा कि लिटरेचर हुआ, अकेडमिक्स हुआ और रेडियो, तो लिटरेचर और अकेडमिक्स दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड। तो अब मेरा शुरू से ही लिटरेचर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। और मैं जब मुझे ध्यान है कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो मैं मतलब इतना इंटरेस्ट मेरा था पोएम्स पढ़ने में, लिटरेचर में, कि मैं खुद से उस वक्त से ही लिखने का शौक रखती थी। तो वही इंटरेस्ट जो जब 11th में व्हेन यू आर सपोज टू ऑप्ट फॉर एनी सब्जेक्ट, जब आप स्ट्रीम्स लेते हैं, तो ऐसा नहीं था कि मैं साइंस में बुरी थी या कॉमर्स में ठीक नहीं थी, आई वॉज गुड। बट मेरा इंटरेस्ट क्योंकि लिटरेचर में था, इस चक्कर में मैंने आर्ट्स लिया। और वही चीज चलते चलते फिर जब महारानी कॉलेज में इंटर हुए, तो वहां पर भी वही चीज रही कि कुछ भी हो रहा होता तो लगता कि हाँ भाई, अपन लिटरेचर के साथ आगे बढ़े, अपन डिबेट्स हो रही हैं तो किसी भी लैंग्वेज में हो, ऐसे रहता था कि इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, मैंने उर्दू डिबेट्स तक में पार्टिसिपेट किया। मुझे ऐसे रहता, हाँ मुझे आती नहीं थी उर्दू लैंग्वेज एज सच, पर मैं जैसे मेरी फ्रेंड्स हुई तो मैंने उनसे एक बार, मैंने मुझे याद है कि मैंने संस्कृत डिबेट में भी पार्टिसिपेट किया, मेरी एक फ्रेंड थी, और हाँ मैंने उनसे बोला कि तुम मुझे लिख दो और मैं इसको जो है मतलब इसको जाकर और वहां पर अपने हिसाब से देख लूंगी। फिर कुछ एक आप सीख भी जाते हैं जब आप किसी चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो अपने आप, हाँ वो आपको अपने आप आने लगता है। उर्दू बैटबाजी होती थी तो मैं उसमें भी जाती थी, एक हमारे यहाँ पे मतलब महारानीज में उस दौर में कई चीजें हुआ करती थी, तो वो सब करते करते फिर वहां से लिटरेचर में इंटरेस्ट शुरू हुआ। वहीं से ये जो आप रेडियो के लिए कह रहे हैं कि एक दिन का तो प्रोसेस नहीं होता है, आप खुद इतनी अच्छी रेडियो जॉकी हैं, रेडियो पर्सन हैं, तो आप जानती हैं बहुत अच्छे से, इट्स नॉट अ डे। हाँ बहुत आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है, तो ये जी, तो ये कोई एक दिन का तो प्रोसेस नहीं है, ये इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो आप जो है वो एक एक दिन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो रेडियो की तरफ जो रुझान होता है वो इन छोटी छोटी चीजों से आपका बढ़ता है। तो रेडियो साथ में ऐसे चलता रहा कि वो जैसे आप बोल रहे हैं स्टेज पे, तो आपका स्टेज फियर दूर होगा, फिर आप कुछ और कर रहे हैं तो आपका एक्सेंट सुधरेगा, आपका प्रोनंसिएशन इम्प्रूव होगा, ये सब चलता रहा। और जब ये दो चीजें आ जाती है तो मुझे लगता है पढ़ाने वाला जो आपका जो जीन होता है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप ही मेरे ख्याल से पनपने लगता है आपके अंदर। और वहीं से वो, और अकेडमिक्स का तो कुछ ये भी था कि मैं जब छोटी थी तब से मुझे लगता था कि अपन जो जैसे किचन खेलते हैं बच्चे, कुछ और खेलते हैं, तो मेरा एक गेम ये हुआ करता था कि आई यूज टू टीच
0: टीचर,
1: टीचर वो डेमो क्लासेस जैसा जो होता है ना, वो भी करती थी। तो ये इस तरीके से शुरू हुआ। दूसरा जो आपने इसमें पूछा था कि कैसे ये आगे बढ़ा, तो देखिए प्रोसेस क्या रहा वो तो ये सब हो जाता है, लेकिन कैसे में आपके जीवन में जो जो लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं ना, वो ब्लेसिंग के रूप में, लेसन के रूप में आते और जाते हैं, तो कैसे में ये सारी चीजें आ जाती है? कुछ लोग आपको आगे बढ़ाते हैं, कुछ लोग आपको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, तो आप सीखते हैं कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो ये सारी चीजें जो है मिलके, और वो मुझे लगता है कि इस रूप में मैं इसको देखती हूँ, एंड इट्स जस्ट अ बिगनिंग।
0: ऐसा है जैसे मोती मोती मिलते गए और माला पिरोते गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: बहुत ही और ब्यूटीफुली आपने अपनी जी,
1: और यही मोती अगर आप मोती मोती मिलके माला बन गई, और अगर गुलाब गुलाब मिला के अपन ने गुलाब की माला बना दी, तो जो महक उठेगी वो जैसे आप सबके किरदार को महका रहे हैं, ऐसे ही हम भी प्रयास करते हैं महकाने का।
0: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर मैम, बहुत ब्यूटीफुली आपने अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया, और बहुत क्लैरिटी है आपके थॉट प्रोसेस में अपनी पूरी जर्नी को लेकर। आप इंग्लिश की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अभी सुबोध कॉलेज में
1: जी,
0: तो आवाज और कम्युनिकेशन का जो रोल है वो आपके कार्य में काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, फाउंडेशनल रहा है एक तरह से, तो टीचिंग ब्रॉडकास्टिंग इन दोनों ने आपको क्या सिखाया? लाइक कोई पर्सनल लेसन या कुछ ऐसा लेसन जो आपको सिर्फ इसी फील्ड में आके मिलता, आप अगर ऐसा सोचे इसको इस एंगल इस पर्सपेक्टिव से देखें तो?
1: बिल्कुल, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए टीचिंग और ब्रॉडकास्टिंग अगर आप देखें तो वैसे अगेन मैं कहूंगी कि दे आर इंटरकनेक्टेड, वो एक दूसरे के पूरक हैं। आप टीचिंग से जो लेसन सीखते हैं कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टिंग भी वही चीज सिखाती है। मुझे याद है हम लोग ग्रेजुएशन के जस्ट बाद में, क्योंकि ग्रेजुएशन जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है ऑल इंडिया रेडियो में एंटर होने के लिए
0: जी,
1: तो जब हम लोग वहां पर गए थे तो हम लोगों को वाणी कोर्स करवाया जाता है
0: जी।
1: आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरा जो ऑडिशन और इंटरव्यू था दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ, एंड मैं जो है वाणी कोर्स हम लोगों ने किया उस वक्त जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो वाणी कोर्स में आपको ये चीजें सिखाई जाती है कि आपका जो प्रोनंसिएशन है वो कितना मैटर करता है, आपका उच्चारण जो है वो अशुद्ध नहीं होना चाहिए। आप देखिए आज भी दो तीन शब्द ही मैं बताऊंगी केवल आपके चैनल के माध्यम से कि आप देखिए हम फल और फूल है ना, हम आज भी हाँ आप आज भी देखेंगे कि फल और फूल बहुत जगह सुनाई देगा आपको।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है ना, और वही फूल इंग्लिश में बिल्कुल अलग अर्थ रखता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल है ना, अर्थ का अनर्थ हो जाता है,
1: अर्थ का अनर्थ। मैं क्लासरूम में भी यही चीज बताती हूँ तो वो टीचिंग का भी पार्ट हो गया, क्योंकि माय सब्जेक्ट इज इंग्लिश तो आई हैव टू टीच दैट वे इज दैट ओके बेटा दिस इज फूल विच इज डिफरेंट, और वो जो अपन बोलते हैं वो फूल है। एक अपन बोलते हैं मातृभाषा
0: जी
1: है ना, तो आप जनरली देखिए बहुत लोग बोलते हैं मातृभाषा
0: जी जी,
1: तो मातृ में त्र आ गया त्रिशूल वाला,
0: करेक्ट
1: है ना,
0: विच जी
1: हाँ विच मीन्स ओनली, तो आपने ही अपना लिमिटेशन बना दिया कि आपने कहा ये मातृभाषा है, जबकि आप कहना चाह रहे थे कि हमारी मातृभाषा है।
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल।
1: तो ये बारीकियां जो है ये आप ब्रॉडकास्ट से सीखते हैं, जब आप किसी चैनल के थ्रू ऑन एयर होते हैं तो आप ये चीजें वहां सीखते हैं, और यही चीजें आप टीचिंग में भी बच्चों को बारीकियां ही तो सिखाते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, दैट्स व्हाट यू टीच। तो कहीं ना कहीं और मेरा सब्जेक्ट चूंकि इंग्लिश है तो प्रोनंसिएशन एक्सेंट लैंग्वेज आपकी पकड़ कितनी है आपकी भाषा पर, कि आप शब्दों को कितना पकड़ते हैं, आप अपनी लैंग्वेज को कितना पकड़ते हैं, देन आपका एक्सप्रेशन कितना इम्पोर्टेंट है, कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट राइट
0: जी।
1: फिर आता है आपका इमोशंस, क्योंकि लैंग्वेज हो या लिटरेचर हो अगेन इमोशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
0: बिल्कुल
1: है ना, फिर क्लैरिटी आ जाती है कि आप जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं वो क्लैरिटी से आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा
0: जी।
1: तो ये सब चीजें आपको ब्रॉडकास्ट भी सिखाता है, और यही सब चीजें आप जो है क्लासरूम में भी अगर आप देखेंगे तो आप बच्चों को ये सारी चीजें आज सिखाते हैं। हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इन सब चीजों के बारे में बात करता है, विच इज टू गुड टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये सारी चीजें हैं जो हम सीखते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं, और टीचिंग भी अगेन एक थ्रू आउट लर्निंग प्रोसेस ही है
0: जी। बिल्कुल, और बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है दोनों फील्ड्स, जैसे आपने बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे टीचिंग में भी आप यही फिनेस सिखाते हैं बच्चों को, और ब्रॉडकास्टिंग में भी इसी फिनेस की बात होती है, स्पेशली अगर हम आकाशवाणी की बात करें, प्रसार भारती की बात करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल,
1: वहां तो सिखाया ही बिल्कुल, मतलब शुरुआती दौर से ही यही चीजें। मुझे याद है हम, क्योंकि अब तो छोटे ही थे, ग्रेजुएशन के जस्ट बाद आप एंटर हो जाते हैं, तो मुझे अभी भी याद है कि हम लोगों को ऐसे बताया जाता था कि आप पुराने जमाने के गाने उठा लीजिए कोई भी
0: जी,
1: और गानों में जो जैसे किसी एक गाने की अपन बात नहीं करें, पर आप जितने भी पुराने गाने उठाएंगे तो उनमें फल और फूल शब्द जब आते हैं तो उदाहरण देके बताते थे हमें कि देखिए उसमें आप इसे फूलों में नहीं सुनेंगे, इसे फूलों में सुनेंगे, है ना। तो उससे फिर आज भी वो चीज दिमाग में इतनी गहरी बैठी हुई है
0: जी।
1: वही तो वही टीचिंग एक तरीके से एग्जाम्पल देके आप वहां जो बारीकियां सीखते हैं जीवन में, हर चीज एक टीचिंग ही तो है।
0: बिल्कुल मैम,
1: जैसे शो में आने से पहले आपने कहा कि हम जो है एकदम साउंड प्रूफ उसमें हम करते हैं प्रोग्राम, और सब जगह ऐसा ही होता है, तो वो भी एक टीचिंग ही है कि आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है, ऐसे ऐसे करना है। आप जब वोटिंग के लिए जाते हैं तो आपको वहां पर जो वोट में बिठा रहे हैं वो आपको सिखाते हैं कि भाई आपको ये चीजें, तो हम हर पल हर लम्हा हर घड़ी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और हर व्यक्ति से सीख रहे हैं। आज चाहे हमसे कोई छोटा है चाहे हमसे कोई बड़ा है, हर कोई हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है, बस हमें वो नजर और वो लगन चाहिए दैट यस वी वांट टू लर्न, देन इट्स ऑल द सेम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम स्पॉन्ज की तरह रहें, क्योंकि सच में हर चीज हर लम्हा हमें सिखा रहा है। बहुत ही डीप और बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन है ये, जो हम सब एक्सपीरियंस तो रोज करते हैं बट बहुत सारे लोग ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि हाँ हर लम्हा हर क्षण एक लर्निंग है। और जैसे कहते हैं कि रीड, कहीं पे भी खड़े हैं तो भले वो इन आपको उस समय में लग रहा है कि शायद इनकॉन्सिक्वेंशियल है, ये मैं क्यों पढ़ूं, मेरे किस काम का है, बट उसको पढ़ के भी आप शायद कुछ सीख जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर मैम
1: जी, ये आपने बहुत सही कहा तनुषा जी। इस पर भी मुझे एक बात बहुत अच्छी ध्यान आई, क्योंकि हमारे लिसनर्स आपकी रीच चैनल की सब तरफ है, तो यंग लिसनर्स भी सुन रहे होंगे
0: जी,
1: कि जैसे आप किसी कैंपस में हैं, किसी स्कूल में हैं, किसी कॉलेज में, किसी ऑफिस में है, किसी के ऑफिस में है, किसी के चैम्बर में है, कैबिन में है, तो कोटेशंस आपको दिखती है हर तरफ, है ना। तो अगर हम कोटेशंस पे भी ध्यान दें तो कितना कुछ हमें वो सिखा देती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना, इससे बहुत अच्छी, हाँ, सेंस ऑफ लाइफ, अगर सीखने वाली नजर हो तो हम उनसे ही बहुत कुछ सीख जाते हैं।
0: बिल्कुल मैम,
1: ये है
0: जी। बिल्कुल, नॉलेज जब कम्युनिकेशन के साथ आए तो इम्पैक्ट नेचुरली स्ट्रांग हो जाता है,
1: हो जाता,
0: बहुत ही खूबसूरत बात है ये। मैम आगे चलते हैं, आकाशवाणी जयपुर और दूरदर्शन राजस्थान जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करना, क्या ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर पहले से था, लाइक एज अ चाइल्ड भी आप हमेशा कॉन्फिडेंट थी, या ये जर्नी के साथ साथ आप डेवलप करते गए क्योंकि आपका इंटरेस्ट बढ़ता गया एकेडमिक्स में, टीचिंग में, इंग्लिश में, लैंग्वेज में, और लैंग्वेज से फिर ब्रॉडकास्टिंग में, तो क्या ये सफर धीरे धीरे मैप हुआ या शुरुआत से ही आप बहुत कॉन्फिडेंट एज अ चाइल्ड थे, लाइक आपका बचपन कैसा था?
1: देखिए मैं इस चीज के लिए मेरा ये मानना है कि कुछ चीजें, हर चीज के दो पहलू होते हैं, राइट
0: जी।
1: तो एक तो होता है कि कुछ चीजें आप में इनहेरिटेड होती हैं, जो आप अपने पेरेंट्स से या कहीं से भी आपके जीन्स में वो चीज होती है, है ना। और दूसरा होता है कि कुछ चीजें आप वक्त के साथ सीखते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन में आई फील दैट ऐसा भी नहीं कह सकते है कि मैं बहुत बचपन से ही कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि आप कभी भी परफेक्ट नहीं होते हैं, है ना, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड
0: जी।
1: आप डे बाय डे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाता है
0: जी,
1: राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि माय फादर वाज अ वेरी गुड ओरेटर एंड उनसे भी मैंने ये चीज सीखी है, और वो उस समय पे आकाशवाणी जाते थे इन हिज यंग एज, और वो जैसा हमें बताया करते थे कि ही वॉज सो ब्रिलियंट कि वो तीन तीन चार चार अपने फ्रेंड्स की भी स्क्रिप्ट लिख देते थे किसी भी टॉपिक के ऊपर।
0: अरे वाह,
1: हाँ, मतलब अपन एक तरीके से ही सोच सकते हैं ना। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एक समय पर हम एक ही तरह से सोच सकते हैं किसी टॉपिक पर, है ना।
0: बिल्कुल,
1: तीन तरह से सोचना और तीन अपने फ्रेंड्स को पकड़ाना स्क्रिप्ट, तो कितनी बड़ी बात होगी।
0: बिल्कुल, और माइंड कितना एक्टिव चाहिए।
1: हाँ, माइंड कितना एक्टिव चाहिए। मैं तो नहीं कर सकती ऐसा कि मैं एक साथ सोच लूं तीन तरफ, तो वो उसी वक्त करके दे देते थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड आई एम थैंकफुल टू हिम ये चीज आई
0: जीन्स,
1: प्लस
0: जी,
1: हाँ, जीन्स में आई जी। और प्लस देखिए जीवन इतना कुछ सिखाता है कि आप एक गलती करते हैं और उसके साथ आप दो लेसन सीखते हैं, एक गलती और दो लेसन, तो वो एक गलती और दो लेसन जो है वो आपको एक हर दिन एक नया इंसान बनाते हैं। आपकी जो कमियां होती हैं, आपके जो फ्लॉज होते हैं, वो अपने आप एक साइड में होते जाते हैं और आप एक नया, जो एक आपका नया इवॉल्व होते हो, आप एक नए पर्सन के रूप में जो है, तो वो कहीं ना कहीं निकल कर आता है। और मुझे ध्यान है मेरी सिस्टर ने जब मैं हम लोग छोटे थे, आई थिंक आई वॉज इन फोर्थ स्टैंडर्ड और मे बी इन फिफ्थ, तो एक
2: कर्णम मल्लेश्वरी जी का भी कुछ उस वक्त उनको वो मिला था
1: जी, उन्होंने कुछ गोल्ड या ब्रॉन्ज ऐसा कुछ जीता था गेम्स में
0: जी जी।
1: तो ऑल इंडिया रेडियो पे कुछ ऑडिशंस तो नहीं, कोई कॉन्टेस्ट चलाया था उन्होंने कि भाई पार्टिसिपेट करवाने के लिए बच्चों को कि हम यहाँ बुलाएंगे स्टूडियो में और फिर बच्चों का हम उनसे इंटरव्यू लेंगे, तो क्वेश्चंस भेजिए आप अपने अपने
0: जी।
1: तो तब भी मैंने फिर वो मेरी सिस्टर ने वहां से क्वेश्चन भेज दिया और सिलेक्शन हो गया और फिर वहाँ रेडियो जाना पड़ा था छोटे छोटे से हम लोग को।
0: अरे वाह।
1: हाँ, तो वहां पे भी मैंने बहुत मतलब अच्छे से किया था। तो ये शायद कुछ ना कुछ या तो अपन ईश्वर की कृपा कह सकते हैं या पेरेंट्स से हमें जो कुछ मिलता है जो कुछ हम सीखते हैं
0: जी,
1: और बाकी तो आज तक सीख ही रहे हैं। इनफैक्ट आज आपके इस शो में भी मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ सीख कर जाऊंगी।
0: बहुत ही सुंदर जवाब मैम, और
1: थैंक यू।
0: सच में हमारे पेरेंट्स की सच की जो लेगेसी अगर हम बात करें, सच का जो इनहेरिटेंस है वो यही जीन्स हैं जो हम एक अच्छे वक्ता की, अच्छे श्रोता की, अच्छे लेखक की, अच्छे सोचकर्ता की लेके आते हैं, और वो हमारे पेरेंट्स से हमें डाउनलोड होता है। बाकी सब चीजें तो मटेरियल है, बट जेन्युइन जो इनहेरिटेंस है और लेगेसी है हमारे पेरेंट्स की वो वही है। तो बहुत बहुत ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन था आपका, और ये जवाब काफी लोगों को बहुत अलग अलग लेवल्स पे रिलेट जरूर किया होगा, मैं श्योर हूँ इस चीज की। तो दोस्तों, बातों का ये सिलसिला आवाज, अनुभव और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। इसी मोड़ को थोड़ा और स्मूथ करते हैं और एक सुकून भरा गीत सुनते हैं।

0: वेलकम बैक नेहा जी।
1: जी थैंक यू। जी
0: आप एक पोएट हैं, एक राइटर भी हैं और आपकी रचनाएं नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में भी पब्लिश होती रही हैं। लिखना आपके लिए क्या सिर्फ लिखना एक पर्सनल एक्सप्रेशन है या शुरुआत पर्सनल एक्सप्रेशन से हुई और धीरे धीरे वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती गई? किस तरह से आपकी राइटिंग इवॉल्व हुई मैम?
1: जी देखिए, मेरा ये मानना है कि राइटिंग जो है वो आप सिर्फ इतना सा नहीं कह सकते कि इट्स जस्ट अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना ही हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक पर्सनल एक्सप्रेशन है। मैं मानती हूँ कि ये दोनों का एक ब्लेंड है, बड़ा खूबसूरत सा ब्लेंड है। क्योंकि आप जब मैं लिखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी दिन आप बहुत दुखी होते हैं,
0: हाँ जी
1: ठीक है, तो आप दुख भरी कोई रचना लिखेंगे। समडे यू आर वेरी हैप्पी, तो आपका इमोशन उस हिसाब से निकल कर आएगा। कभी आप आसपास कुछ ऐसा होता हुआ देखते हैं कि आपको लगता है कि अरे हमें इसके बारे में लिखना चाहिए, है ना, इससे पांच लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि दिस इज समथिंग विच इज टू बी इग्नोर्ड, दिस इज समथिंग विच इज टू बी अवॉइडेड और दिस इज समथिंग विच शुड बी इम्प्रूव, राइट। ये तो ये चीजें, इसका मतलब पर्सनल एक्सप्रेशन भी हो गया और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अभी आप देखिए कि आप एक लेखक वही होता है, बहुत से लोग ये विचार रखते हैं और मैं बिल्कुल आई एम कम्प्लीटली एट वन विद देयर ओपिनियन कि लेखक वही होता है जिसके अंदर संवेदना है, जो संवेदनशील है। कवि का मन हमेशा संवेदनाओं से भरा हुआ होगा, कंपैशनेट होगा और सोचेगा अपने आसपास के बारे में, दूसरा व्यक्ति ऐसा सोचेगा ही नहीं। किसी ने, मान लीजिए आपके आसपास किसी ने कोई एक सेंटेंस कहा, अब उसका कहना, उसको सुनने वाले 10 थे, पर किसी एक ने उस तरीके से पकड़ के उसके बारे में सोचा। अपने आसपास आप अगर एडिटोरियल पढ़ते हैं पेपर्स में तो कितने अलग अलग तरीके के आते हैं,
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो वो चीजें क्या है, सबके सोचने का तरीका, थॉट प्रोसेस, और फिर उसको कलम के माध्यम से कागज पर उतारना। अब कई लोग इस उतारने के लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए पेंटिंग करते हैं, कई लोग कुछ और करते हैं, कोई गीत लिखता है, तो दे हैव गॉट डिफरेंट फॉर्म्स, है ना। तो वो आर्ट फॉर्म्स के थ्रू अपना पर्सनल जो भी है उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आएगी, विच इज इक्वली इम्पोर्टेंट। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी जैसे अरावली के ऊपर इतना कुछ चला, राइट, तो वो एक सबका एक, हालांकि एवरीथिंग वॉज लाइक सब अपना अपना एक एक्सप्रेस कर रहे थे कि ऐसे वैसे, मैंने भी उन दिनों में एक कविता लिखी। तो हम कई बार इतनी अच्छी अवेकनिंग करते हैं और कई बार हम इतना अच्छा सोशल एफर्ट करते हैं, जैसे बेटियों के लिए हम काम करते हैं अगर मान लीजिए लिखते हैं, या हम विमेन के बारे में लिखे हैं जिनसे इतने सारे पहलू, इतने सारे जो अभी आप देखिए इतने सारा कुछ जुड़ा हुआ है कि महिलाओं की स्थिति कैसी है, कामकाजी अगर हैं तो कैसी है, घरेलू हैं तो कैसी है, और दोनों पलड़े अगर वो संभाल रही हैं तो कैसी हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, आपको, आप देखिए कुछ भी अगर होता है आसपास तो अगर उसके ऊपर लिखा जाता है तो वो कहीं ना कहीं जो है वो गहरा असर छोड़ता है। और पहले के समय में जब जैसे हम अगर पढ़े तो बहुत अच्छे अच्छे हमारे यहाँ पे कवि हुए हैं, एंड दे हैव टॉक्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अगर आप देखें तो उन्होंने कहीं ना कहीं अवेकनिंग की बात करी है। जब हम अगर हम इंडिया की बात करें, हम जब इंडिपेंडेंट नहीं थे तब भी बहुत अच्छा लिटरेचर हुआ है और उसको पढ़कर इतनी अवेकनिंग आई। तो ये उस वक्त की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कोरोना के टाइम आप देखिए कितना कुछ लिखा गया, कितना लोगों को जो है अवेकनिंग लाने के लिए, उनको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किस तरीके से स्लोगन्स क्यों लिखे जाते हैं। आप देखिए जो आपका जो जितना भी ये जो ट्रैफिक लाइट्स का एरिया है या जो कुछ भी है, वहां पर आपको स्लोगन्स मिलेंगे। ये भी एक वे ऑफ एक्सप्रेशन ही तो है कि आप लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि भाई तेज नहीं चलाना है, लोगों को आप अलर्ट कर रहे हैं कि भाई हेलमेट पहनिए। तो ये हमें ऐसा लगता है कि ये, लेकिन ये भी पार्ट ऑफ लिटरेचर ही है कहीं ना कहीं, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। ये भी पार्ट ऑफ लिटरेचर है और राइटिंग भी आपको ऐसा ही करती है। आपने एक घायल कबूतर देखा, आपने देख लिया, 100 लोगों ने उसे देखा, लेकिन जो कवि मन होगा वो उस घायल कबूतर से जुड़ा हुआ वो मांझी तक पर लिख देगा, है ना, वो मांझी तक पर लिख देगा, वो कबूतर की उड़ान से मांझी ने उसकी उड़ान को काटा, मतलब पूरा एक

0: सामने हाँ एक इमेज ला कर कर देगा की
1: जी
0: हाँ छाया चित्र पूरा उकेर देगा कि एक इमेजरी इतनी अच्छी यूज करेगा कि आपको सोचने में मजबूर करेगा कि भाई हमने ये पतंग क्यों उड़ाई।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: ये एक बात है,
1: बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही गहरी बात है ये। और सच में लेखन में ये ताकत है, कलम की ये ताकत है कि पर्सनली तो आप लिखें ठीक है अपने मन को हल्का करने के लिए, थेरेपी के लिए आप अलग आर्ट फॉर्म्स अपनाएं, दैट इज वेरी गुड। बट अगर धीरे धीरे फ्रॉम पर्सनल टू इम्पर्सनल और सोशली अगर हम लिखें और अपनी लेखन की ताकत को समझ के सच में कोई बदलाव लाना चाहें, भले ही वो बहुत छोटा हो, शायद 10 लोग पढ़ें, चाहे चाहे 2 लोग पढ़े, बट कुछ उनके दिमाग में एक चीज खटके कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, इस एक्शन का ये रिएक्शन या इस एक्शन का ये कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, तो वही लेखन की सच्ची ताकत है। तो और वो अपना रास्ता खुद ही बना लेती है। बहुत ही खूबसूरत मैम,
0: थैंक यू।
1: आप अपने स्टूडेंट्स के पोएम्स के कलेक्शन को भी आपने एडिट किया है जैसे आपने हमें बताया था।
0: हाँ हाँ।
1: तो स्टूडेंट्स के क्रिएटिव काम को शेप देना टीचर होने से आगे का एक ये रोल है कि आप बियॉन्ड अ टीचर यू वेंट एंड यू एडिटेड देयर बुक और इट वाज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। तो ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा और इस एक्सपीरियंस में आपने कैसे इंस्पिरेशन ली? जैसे जनरली टीचर्स इंस्पायर करते हैं, बट क्या इस एक्सपीरियंस में यू वर ऑल्सो इंस्पायर्ड समवेयर फ्रॉम योर स्टूडेंट्स?
0: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली आई जस्ट थॉट ऑफ यू नो डूइंग दिस, मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों का जो है वो एक क्यों ना एक इसका कलेक्शन लेकर आऊं पोएम्स का, राइट। तो उस वक्त जब इसके बारे में नोटिस निकाला हम लोग ने, जब इसके बारे में सोचा, तो इवन आई वॉज नॉट श्योर दैट देर वुड बी एंट्रीज इनफ एंट्रीज सो एज टू गो फॉर अ बुक, क्योंकि आपको कम से कम 90-100 के आसपास तो पोएम्स चाहिए।
1: जी जी।
0: तो मुझे लगा पता नहीं इतनी आ पाएंगे या नहीं, बच्चे इतना लिखते होंगे या नहीं। हालांकि हमारे कॉलेज के बच्चे बहुत ही मतलब हर फन मौला है, हर चीज में दे आर वेरी गुड, बट मुझे मन में थोड़ा सा संशय था। देर वॉज लाइक आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दिस कि विल कम अप विथ सो गुड पोएम्स।
1: हाँ जी।
0: तो हमने निकाला, आप यकीन नहीं मानेंगे इतने मतलब बच्चे इस कदर डेस्परेट थे कि एक बच्चा 5-5, 6-6 पोएम्स लेकर
1: बताए,
0: है ना। और मतलब आप अगर उनकी पोएम्स पढ़ें तो आपको लगेगा इतना अच्छा उन्होंने लिखा है, और मैं उसमें से एक पोएम ले पाई, दो पोएम ले पाई हार्डली, क्योंकि इतनी सारी एंट्रीज थी।
1: बिल्कुल।
0: बट उन्होंने इतनी अच्छी पोएम्स लिखी, और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि उनमें से कुछ बच्चे जो अब कॉलेज से तो पास आउट हो चुके हैं, बट अब जैसे उनको कहीं पर बुलाया जाता है, somebody invites them in some program or the other, वो गेस्ट होते हैं, कई बार वो जज होते हैं, अपने जो मॉक पार्लियामेंट्स होती हैं उनमें भी वो जाते हैं
1: जी।
0: तो अब वो जाते हैं वो ठीक है, बट वो मुझे मैसेज भेजते हैं अपना, वो इनवाइट भेजते हैं, उसके नीचे वो बड़ा सा एक पैराग्राफ लिखेंगे कि मैम इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू टुडे आई वाज दिस एंड दैट, इस तरीके से करके वो एक पूरा पैराग्राफ बना के भेजते हैं, और वो उस चीज को एक्नॉलेज करते हैं।
1: हाउ ब्यूटीफुल,
0: है ना
1: जी।
0: कि जैसे मान लीजिए 2 साल पहले ये बात हुई या 1 साल पहले ये बात हुई, है ना, लेकिन वो उसको आज तक एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मैम आपके कारण मेरा स्टेज फियर गया, मैम आपके कारण मैंने वहां लिखा तो मैं मोटिवेट हुई या मोटिवेट हुआ और लिख पाए। तो वो जो एक फीलिंग है वो आपका एक ट्रू असेट होता है, आपको लगता है कि हाँ आपको वहीं से आगे और अच्छा करने की इंस्पिरेशन मिलती है कि नहीं मुझे बच्चों के लिए और अच्छा करना है। क्योंकि जब वो, और आप मानेंगे नहीं, उस कलेक्शन में जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे आज भी मेरे कॉन्टेक्ट में है, और वो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ लिखकर भेजते रहते हैं, मैम आज ये हुआ, मैम मैंने ये पोएम लिखी है, नहीं आप पढ़कर बताइए कैसी है, इसमें मैं कहाँ इम्प्रूव करूँ। तो फिर आपको लगता है कि वाकई में आप टीचर तो है ही हैं, लेकिन अगर आप एक राइटर हैं, एक पोएट हैं, और आपके कारण बच्चे इतना अच्छा कर पा रहे हैं, वो कई अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर जा रहे हैं, 2-3 बच्चे तो ऐसे हैं जो खुद अपने लेवल पर जो है वो पोएम का एक पूरा कॉम्पिटिशन करवाते हैं हर 2-3 महीने में एक बार। तो मुझे लगता है कि जब ऐसा बच्चे कर रहे हैं तो फिर लगता है कि हाँ आपकी जो साधना है वो सफल हो गई,
1: सफल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे एक टीचर, मैं हर आई थिंक ये मेरा 10th या 11th एपिसोड है, और रेगुलरली विदाउट एनी पॉज मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जहां पे मैं कहीं ना कहीं मेंटर टीचरशिप से जुड़ी हूं अपने गेस्ट के साथ, और मैंने यही बात रिपीट की है रिपीटेडली कि कैसे टीचर्स किस लेवल पे इंस्पायर कर सकते हैं और चेंज को एक्सेलरेट कर सकते हैं, एजेंट्स ऑफ चेंज होते हैं। मैम सच में बहुत ही ब्यूटीफुली आपने अपने सफर को बताया, और सच में बच्चों के पास बहुत है लिखने को, बोलने को, उनके पास बहुत आवाज है, बट जब कोई टीचर, कोई मेंटोर इस तरह से उनको एक प्लेटफॉर्म देता है तो वो बात बहुत आगे तक जाती है, और कहीं ना कहीं उनका पूरा एक कुछ बच्चों का मे बी आउट ऑफ दिस होल लॉट मे बी टू ऑफ देम उनका पूरा करियर मैप यू नो हैज बीन मैप्ड विद दैट वन पोएम.
0: हाँ एग्जैक्टली. और कई बार बच्चे जैसे लाइक व्हेन यू आर अ पोएट यू राइट पोएम्स दैट्स फाइन, बट जब आप पर कोई बच्चा पोएम लिखकर आपको भेजता है कि मैम ये मैंने आप पर लिखी है तो देन यू फील लाइक कि ओके हाँ मतलब मनी भी आपके लिए वो हैप्पीनेस बाय नहीं कर सकती है वो वाली बात है.
1: बहुत बहुत ही खूबसूरत मैम, बहुत ही अच्छी बातचीत हो रही है आपसे. ऐसा लग रहा है गर्म कप का चाय है हाथ में इस सर्दी में और
0: सारे लग रहा है बाकी में.
1: थैंक यू मैम, थैंक यू. चलिए आगे चलते हैं मैम. आप बहुत सारे लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए हैं जयपुर में, तो जयपुर का लिटरेरी सीन किस तरह से एक्टिव है और आज के टाइम में लिटरेरी प्लेटफॉर्म्स जैसे अभी हमने बात की कि आपने ये एंथोलॉजी जब प्रपोज की तो कैसे इतने सारे बच्चे जुड़ते गए, तो ऐसे लिटरेरी प्लेटफॉर्म्स यंग राइटर्स के लिए कितने जरूरी हैं और क्या ये सच में चेंज ला रहे हैं ये लिटरेरी प्लेटफॉर्म्स लाइक इनकी जो एग्जिस्टेंस है या ये सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है कि सब अब लिख रहे हैं क्या, मतलब ये इसको आप किस पर्सपेक्टिव किस टेक से देखते हैं?
0: बिल्कुल आपने ये भी एक रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है. देखिए लिटरेरी प्लेटफॉर्म्स जो जयपुर में है अगर अपन बात करें
1: जी
0: तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं और कुछ एक तो ऐसे मतलब ज्यादातर ऐसे हैं जो दे डोंट चार्ज एनीथिंग, दे डोंट आस्क फॉर एनी मनी, कोई फी नहीं है, कुछ नहीं है. सिंपली वो एक व्हाट्सएप ग्रुप्स उनके बने हुए हैं और उनमें वो सिखा रहे हैं. क्योंकि देखिए पोयम लिखने वाले बहुत हो गए हैं ये एक बात है, लेकिन अच्छी पोयम लिखने वाले आज भी कम है. और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये दीज आर नॉट माई पर्सनल व्यूज और दिस इज नॉट माई पर्सनल ओपिनियन, बट ऐसा जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं ये मैंने उनके ही मुंह से सुना है कुछ प्रोग्राम्स में, क्योंकि मैं तो खुद अपने आप को भी एक इमर्जिंग पोएट ही मानती हूँ.
1: हाँ जी.
0: और मैंने उन बड़े जो बड़े नाम हैं बड़े चेहरे हैं उन लोगों के मुंह से मैंने ये बात सुनी है कि पोएम बहुत लिखी जा रही है पोएम्स, लेकिन अच्छी पोएम्स लिखने वालों की संख्या आज भी कम है. तो ऐसे में माना कि आपके अंदर गुण होता है दैट इज समथिंग विच इज देयर, बट उसको होता है ना कि जैसे आपके पास कोई कला है लेकिन उस कला को अगर कोई थोड़ा सा और अच्छा कर दे तो वो आपकी कला जो है वो मुखर हो जाती है ना. सो इन द सेम मैनर वो लिखने वाले लिख रहे हैं लेकिन उनको स्पेशली अगर अपन यूथ की बात करें उनको अगर कोई बताए कि भाई छंद में कैसे लिखा जाता है, रिदम जो है वो क्या रोल प्ले करती है,
1: मीटर
0: अगर हाँ वो क्या है, और जो है सवैया क्या हो गया, छंद क्या हो गया, मात्रा का क्या रोल है, कितने शब्द जो हैं वो एक लाइन में आ रहे हैं तो दूसरी में कैसे आएंगे, तो वो बहुत जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. उसके अलावा फिर गजलें आती हैं तो उसको लिखने के लिए भी आप कुछ भी अगर लिख देंगे तो आप फेमस हो जाएंगे वैसा नहीं है. और कई बार आप किसी चीज के साथ फेमस अगर हो भी रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो चीज आपकी उतनी गहराई लिए हुए है, वो लेखन आपका उतना गहराई में उतरा हुआ है, ऐसा भी तो होता है ना. तो उसको वो लोग बकायदा वर्कशॉप्स चलाते हैं और कुछ चार्ज नहीं करते सिखाने के लिए, और फिर वो कई बार जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें वो सिखाते हैं बताते हैं कि भाई ऐसा है. तो इससे जब यूथ जुड़ेगा, आप देखिए ऑनलाइन आज आप यूट्यूब पे कुछ देखते हैं सीखते हैं और बना देते हैं और अच्छा भी बन जाता है ना. तो वो आपने लेकिन सीखा ना कहीं से, बिना सीखे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते. तो सीखना बहुत जरूरी है. तो जितने भी लिटरेरी फोरम्स हैं लिटरेरी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से अगर वो सीखते हैं तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग. और फिर ये फेस्टिवल्स होते हैं, एग्जीबिशंस लगती हैं, ये भी कहीं ना कहीं सिखाते हैं, आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाते हैं. आप देखिए हम जब बुक्स लिखते हैं तो हर बुक को लिखने के बाद में उसका एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसमें आप जो है उस पुस्तक की समीक्षा की जाती है ना, उसका पूरा का पूरा एक एनालिसिस होता है
1: जी.
0: हाँ, और वो कोई एक इंसान करता है, और वो कौन इंसान करता है जो उस बुक को पढ़कर कई दिनों तक पढ़ने के बाद में हाँ उसका पूरा ऑब्जर्वेशन लिखकर तैयार करके लाते हैं. बकायदा दैट पर्सन मतलब जो भी होता है उसको इनवाइट किया जाता है कि नाउ सो एंड सो विल बी गोइंग विद दिस थिंग, तो वो एनालिसिस लेकर आता है सामने और वो पढ़ के बताता है कि भाई इस पुस्तक में ये सब कुछ है, ये इसकी अच्छाई है, ये इसका ये है वो है. वो एक समरी टाइप ही होती है बट वो बताता है कि भाई क्या कुछ इसमें है. तो वो चीज जरूरी है आज भी. और आज हम लोग अच्छा ही तो सब सुनना चाहते हैं। अभी जब तक आप कह रहे हैं कि नेहा जी ये अच्छा है, अच्छा है, ये अच्छा है, तो नेहा भी उसको सुनेंगी कि हाँ थैंक यू अच्छा है। लेकिन जिस लम्हे जिस मोमेंट पे आपने ये कह दिया कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, वहां पर डिफरेंसेस शुरू हो जाएंगे।
1: जी जी
0: एग्जैक्टली
1: जी,
0: हम जो है हमारे कानों के साथ में इस वक्त बहुत ज्यादा
1: सेंसिटिव है।
0: हाँ बहुत सेंसिटिव है, वी डोंट वॉन्ट टू लिसन टू समथिंग विच शुड बी वो चीज जो है वो हम तभी सीख पाएंगे। आप देखिए पहले के समय में कितना पेशेंस था,
1: यस, और कितनी बातचीत वार्तालाप, कितने डिबेट्स एंड डेलिब्रेशंस होते थे। आप कुछ सोचते हैं, मैं कुछ सोचती हूँ, बट मैं फिर भी आपसे वो डिस्कशन करने के बाद फिर भी आप मेरे दोस्त हैं और मैं आपकी दोस्त हूँ और मैं आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करती हूँ जैसे आप करते हैं।
0: यस एग्जैक्टली वही, तभी तो हम कहते हैं कि भाई मतभेद जो है, हाँ मतभेद तो हो पर मन में भेद ना हो। तो वही वाली बात है कि हम डिफरेंसेस आज तो ऐसा हो गया कि हम सुनना नहीं चाहते हैं, पेशेंस की कमी है। तो जब हम सुनेंगे, हम अपनी कमियों को ध्यान देंगे, देन ओनली वी विल इम्प्रूव। अदरवाइज इट्स लाइक कि ओके व्हाट एवर द अदर पर्सन इज सेइंग लेट इट बी, आई डोंट वांट टू लिसन टू इट, आई डोंट वांट टू इम्प्रूव एंड व्हाट एवर आई एम द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए।
1: करेक्ट, बहुत ही सुंदर ऑब्जर्वेशन है ये और बिल्कुल मैं इस बात से यू नो आई रिकॉग्नाइज दिस होल फीलिंग कि हाँ सच में ये जो एक वैल्यू है सुनने की और सामने वाले के ऑब्जर्वेशन को या सामने वाले के ओपिनियन को, भले ही वो आपको बिटर लग रहा है बट उसको सुने तो सही, उसको एक तवज्जो तो दे कि शायद वो बात में दम है, शायद मैं जो सोच रही हूँ उसका पर्सपेक्टिव ये नहीं, ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी तो रखे वहां पर डिस्कशन की।
0: Exactly.
1: बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे से आपने इस क्वेश्चन का जवाब दिया मैम, थैंक यू सो मच। अब हम गाने की तरफ चलते हैं। आप सभी सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग और एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे हम, जिसके बाद हम वापस कनेक्ट करेंगे डॉक्टर नेहा से।

0: वेलकम बैक डॉक्टर नेहा।
1: थैंक यू तनुषा जी।
0: हम आगे चलते हैं, हमारे सफर को थोड़ा और आगे ले जाते हैं अंतिम पड़ाव की तरफ। मैम, आपने पिंक फेस्ट, नेशनल लिटरेचर ड्रामा फेस्टिवल, जयपुर एजुकेशन समिट जैसे बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स, बहुत ही वेल नोन प्लेटफॉर्म्स पे आपने स्टेज भी हैंडल किया है और सेशंस भी मॉडरेट करते हैं, तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहता है? लीडरशिप कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, किस तरह से ये जर्नी शुरू हुई, थोड़ा सा अगर इसके बारे में बताएं।
1: बिल्कुल। देखिए, जब आप इस तरीके के में प्रोग्राम्स में और शोज में जाते हैं, इवेंट्स में, तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, राइट? और जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो आपको ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा एक जैसे लोगों से मिलेंगे। आप हमेशा अलग अलग तरीके के लोगों से मिलेंगे, है ना, फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। यू मीट पीपल, है ना, हु हेल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। और जब आप उनसे मिलते हैं तो कुछ लोग जो है वो आपसे बहुत ऊपर होते हैं
0: जी,
1: कुछ लोग आपके जैसे होते हैं, और कुछ लोगों से आपको लगता है कि नहीं नहीं हम इनसे बेटर हैं, ऐसा आपको लगता है। हो सकता है ऐसा ना भी हो, वो आपसे बेटर हो, पर मानव मन है तो हम कुछ भी मान सकते हैं ना
0: जी।
1: तो जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, जब आप एक अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं, तो आप सीखते हैं कि अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कम हूँ तो मुझे यहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, यहाँ मैं बेटर हूँ, तो वो आप में कॉन्फिडेंस आएगा वापस से कि नहीं, यहाँ मैं बेटर हूँ, है ना। और कहीं पर ना, और कहीं पर आपकी एक जैसे लोग होंगे तो वहाँ आपको लगेगा कि नहीं, ये तो मेरे ही जैसे लोग हैं, और आपको लगेगा कि मैं, मतलब मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ, दैट्स द राइट वे, तो मैं इस पर चलता रहूँ, तो वो कहीं ना कहीं आपको। और कई बार जैसा होता है ना कि देखिए, सबकी जिंदगी में दुख भरे लम्हे भी होते हैं और खुशियों के पल भी होते हैं, तो दुख भरे लम्हों में आप डिप्रेस फील कर सकते हैं, मैं एक इन जनरल सभी के लिए बोल रही हूँ, है ना। और खुशियों भरे पल में आप फूले नहीं समाते, है ना। तो शायद इस तरीके की प्रोग्राम में जाने के बाद जब आप फूले नहीं समाते तो ये प्रोग्राम आपको धरातल पर ले आते हैं
0: जी।
1: जब आप डिप्रेस होने वाले होते हैं तब शायद ये आपको और ऊंचा महसूस कराते हैं। तो मतलब भगवान ही लोगों को आपके जीवन में भेजते हैं, प्रोग्राम्स को आपके जीवन में भेजते हैं
0: जी।
1: आपको जिस समय, जिस व्यक्ति से, जिस कार्यक्रम में, जैसे रूप में आना चाहिए, मैं थोड़ा सा ऐसा मानती हूँ, हो सकता है कि मेरे विचार बिल्कुल गलत हो, तो उस हिसाब से आपके जीवन का जो पहिया है वो घूमने लगता है। अब देखिए, पिंक फेस्ट में अभी जैसे आप पिंक फेस्ट की बात करें, या अपन इसकी लिटरेचर और ड्रामा फेस्टिवल की, या एजुकेशन समिट की, तो इनमें बहुत अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं
0: जी।
1: अभी ही ड्रामा और लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, तो वहां पर एक बहुत अच्छी पोएट आई थी, एंड शी इज अ गुड ट्रांसलेटर एज वेल, राइट? सो शी वॉज प्रिसाइडिंग द होल इवेंट, राइट? तो अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने जैसे एंड में बोला और सब कुछ बताया, तो अपने आप में कैसा लगा कि भाई, इतने सारे पोएट्स के बीच में अपन सबसे यंग हैं और अपन सीख रहे हैं, और अपन ने अच्छा भी किया, अपनी पोएम भी अच्छी थी, और एंड में जब इतने बड़े लेवल की जो ट्रांसलेटर एंड पोएट और अ पर्सन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट एंड फेम वो बोल रही हैं, तो आपको लगता है कि आपका आना सार्थक हुआ, है ना, क्योंकि आप फ्रेम शेयर कर रहे हो।
0: बिल्कुल।
1: कई बार ऐसा होता है कि जैसे एजुकेशन समिट के प्रोग्राम्स भी बहुत अच्छे होते हैं, तो उनमें जब आप मॉडरेट करते हो तो आपके साथ, मान लीजिए कभी कोई बहुत फेमस, जैसे एक बार एक बहुत अच्छी डायटिशियन थी, तो शी टॉक्स अबाउट थिंग्स रिलेटेड टू यू नो गट एंड अदर थिंग्स, तो कई बार किसी किसी टॉपिक पर आपकी नॉलेज बिल्कुल जीरो होती है,
0: होती है
1: ना?
0: Yes, yes.
1: और आप होमवर्क करते हैं ताकि आप उस शो को मॉडरेट
0: कर सके,
1: है ना, क्योंकि आप होमवर्क करके ही, अपन जैसे लोग जीवन में तभी शायद से आगे बढ़ते हैं जब अपन होमवर्क करते हैं, है ना
0: जी।
1: तो
0: जी,
1: उसी से आप सीखते हैं, तो ऐसे शोज के बहाने आपको नए नए टॉपिक्स, नए नए जो थॉट प्रोसेस है आपका, वो नए नए रूप में निकल कर आता है, है ना। और एक बार जैसे मैंने एजुकेशन सबमिट का एक इवेंट किया था, तो उसमें मीडिया पर्सन थे, है ना, और काफी बड़े अच्छे मतलब लोग थे, तो उसमें बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा था, और उसका फीडबैक भी इतना अच्छा निकल कर आया था कि भाई बहुत ही अच्छा था, और ऐसे था वैसे था, तो वो आपको ऐसा लगता है कि आपने जो प्रयास, क्योंकि ये देखिए, ये सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये सब इनमें आप सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना, आप किसी मनी के लिए काम नहीं कर रहे होते, कई बार लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है कि क्या पता इससे आपको पैसा मिल रहा है ना, आप होस्ट कर रहे हैं, आप मॉडरेट कर रहे हैं, आप पैनलिस्ट बनकर जा रहे हैं, तो लोगों को ये लगता है कि अरे पैसा भी मिल रहा होगा, तो ऐसा नहीं होता है, ये सब आप एक गुडविल में, एक होता है ना, आप एक दूसरे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, कि जैसे पिंक फेस्ट, ये सब फेस्टिवल्स और एडुकेशन वाले, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी को सुधारने के लिए
0: जी।
1: तो आप एक अपनी तरफ से गुड हैंड देते हैं कि भाई हम भी अपनी तरफ से कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स सोसाइटी,
0: राइट।
1: तो आपको वहाँ पैसा नहीं मिल रहा, पर आपको जो नाम, जो दुआ, जो स्नेह मिल रहा है, दैट इज योर रियल एसेट।
0: और जो वो आप मिलती है जी,
1: हाँ वही वही अर्निंग आपकी है, तो वो आपको सीखने को मिलता है, आपका सोशल सर्कल बढ़ता है, दायरा है ना,
0: बिल्कुल, आपकी सोच बढ़ती है, दायरा बढ़ता है,
1: बस, और वही जीवन में काम आता है फिर आगे जाकर ना।
0: बिल्कुल, ये वेरी वेरी वेल थॉट ऑफ, बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टिव आंसर था मैम ये। अब हम शो को लास्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं क्योंकि समय आगे जा रहा है। मैम, जो स्टूडेंट्स, राइटर्स और रेडियो एस्पिरेंट्स आपकी अपनी खुद की आवाज ढूंढ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं, उनको नहीं मिल रहा रास्ता, वो सोच रहे हैं क्या ये मेरे लिए है नहीं है, तो उनके लिए सिंपल, रियल, ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल कोई मैसेज हो वो अगर आप देना चाहें इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद हमारे श्रोताओं से शेयर करना चाहें, तो वो क्या होगा?
1: बिल्कुल, देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगी हमारे श्रोताओं से, लिसनर से, कि आप जो भी करें, मैं कोई बहुत जादुई मंत्र नहीं दे रही हूँ, आप इतनी समय से इसको सुनते आ रहे हैं, बहुत लोग आपसे कहते होंगे, आप जो भी करें उसे दिल से करें
0: जी,
1: और अपना 100% नहीं, अपना 200% देकर करें, आप अपना 200% इन्वेस्ट करें उस काम में, ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट, जो भी, और इसमें एक चीज और कहूंगी कि लिसन टू योर पेरेंट्स ऑल्सो, इट्स नॉट लाइक कि आप केवल अपने ही मन की कर रहे हैं, अपने ही दिल की कर रहे हैं, देखिए पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट, है ना, नो मैटर मे बी टूडे यू फील दैट नो वट एवर दे आर स्पीकिंग इट्स नॉट ट्रू और इट्स नॉट वर्थ लिसनिंग टू और समथिंग लाइक दैट, बट दैट इज टूडे यू कैन फील लाइक दिस, बट इन द लॉन्ग रन ऑफ लाइफ, इन द लॉन्ग वे ऑफ लाइफ, there will be a point in your life when you will realize that okay, whatever they spoke or whatever they told, that was 200%
0: out of experience,
1: of experience, so always listen to them and then listen to your heart, aur fir jo hai jo bhi kaam kare use pura dil se kijiye, kyunki swami vivekanand ji to pehle hi keh gaye hain ki jo bhi aap kaam karte hain use pehle virodh aur upahas, yani ki ye log aapke kaam ko protest bhi karte hain us par, they mock at it, but then gradually they start फॉलोइंग वॉट यू डू, है ना,
0: बिल्कुल।
1: सो अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, दिल से चल रहे हैं, माता पिता और ईश्वर के आशीर्वाद के साथ चल रहे हैं, देन ऑलवेज यू आर गोइंग टू डू वॉट इज 200% करेक्ट एंड देन दैट थिंग विल गिव यू गुड रिजल्ट। तो मैं जो है अपनी ही पोएम की जो है वो दो लाइन्स सुनाना चाहूंगी इस बात पर
0: जी,
1: है ना, न तू समझ खुद को कम, न तू समझ खुद को कम, तो खुद ही खुद में खास है, जो आंकते हैं तुझको कम, जो आंकते हैं तुझको कम, उनकी नजर ही खराब है, तू बढ़ आगे तू हो बेमिसाल, तू बढ़ आगे तू हो बेमिसाल, तेरे प्रयास हो इतने विशाल, तेरे प्रयास हो इतने विशाल कि हर कोई स्वागत को खड़े, कि हर कोई स्वागत को खड़ा हो, ले हाथों में विजयी थाल, ले हाथों में विजयी थाल। थैंक यू,
0: वेरी नाइस मैम, बहुत ही ग्राउंडेड पॉजिटिव बात आपने हमारे साथ शेयर की, और बहुत सुंदर पंक्तियां जिनका असर, जिनका इफेक्ट, जिनका रेजोनेशन बहुत आगे तक जाएगा, हमारे लिसनर्स अगर इसे सुने, और सिर्फ सुने नहीं इसे गुने भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा आज हमारे साथ इस शो में आने के लिए, और हमारे साथ इतनी अच्छी बातें, इतने अच्छे थॉट्स, इतने डीप और रिफ्लेक्टिव थॉट्स शेयर करने के लिए।
1: Thank you so much Tanusha ji, it was pleasure talking to you and thank you so much ki aapne mujhe itna acha platform diya that I could connect to wonderful listeners jo aage jaakar bahut sare wonders karne wale hain life mein, bahut sari positivity spread karne wale hain aapke listeners, I'm sure about
0: thank
1: it
0: you,
1: thank you so much,
0: thank you ma'am। Dosto aaj ke is episode mein humne sirf ek professor ya poet ya radio professional ki baat nahi kari, हमने एक ऐसी आवाज को सुना जो नॉलेज, कॉन्फिडेंस और सेंसिटिविटी तीनों को साथ लेकर चलती हैं। डॉक्टर नेहा पारेख जैसे लोग ये याद दिलाते हैं कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी सिर्फ बोलने से नहीं, समझने, सीखने और अपनी असली आवाज को एक्सेप्ट करने के लिए बनती है। नेहा जी, आपका दिल से शुक्रिया अपनी जर्नी, अपनी सोच और अपनी पॉजिटिव एनर्जी को हम सबके साथ शेयर करने के लिए। और दोस्तों, मैं हूं तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, आपसे इजाजत चाहती हूं, सुनते रहिए SN रेडियो, सुनते रहिए जिंदगी के रंग गीतों के संग, जहां हर आवाज अपनी कहानी कहती है और हर गीत अपनी कहानी का एक हिस्सा बन जाता है। मिलते हैं फिर से एक नए मेहमान, एक नई सोच और कुछ और प्यारे रंगों के साथ। नमस्कार।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग शब्दों की सतरंगी दुनिया का है। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो शब्दों से संवाद करती है, जो हर कविता में एक ऋतु का रंग और एक रात की मधुरता घोल देती है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आज हमारे दौर की अजीब शख्सियत गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। वे शब्दों के बारे में कहते हैं, शब्दों के रिश्ते भी अजीब होते हैं, कुछ सुन लेते हैं, कुछ कह नहीं पाते। शब्द जो कभी चुपचाप मन की गहराइयों से निकलते हैं और कविता बनकर आत्मा को छू जाते हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी ही संवेदनशील सर्जक जो शब्दों से संवाद करती हैं, उन्हें जीती हैं और हर रचना में एक ऋतु की रागनी बहा देती हैं। ऋतु रागनी जी, जिनके लिए लेखनी एक सखी है और कविता आत्मा की साधना, उनकी रचनाएं नारी मन की सूक्ष्म संवेदनाओं, प्रकृति की मधुर लय और जीवन के गहरे भावबोध से सराबोर हैं। वे अनेक सम्मान जैसे मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न, जयपुर रत्न, लक्ष्मीबाई शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं। साथ ही उन्हें भारत सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज में भी काव्य पाठ का अवसर मिला है। और उल्लेखनीय ये भी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भेंट उनकी सृजनात्मक यात्रा के अविस्मरणीय पड़ावों में से एक रही है। तो आइए मित्रों, स्वागत करें संवेदनाओं की साक्षात अभिव्यक्ति, शब्दों की सखी, कवित्री ऋतु रागिनी जी का। ऋतु जी नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इतने सुंदर कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग में मुझे आमंत्रित किया। और मैं आशा करती हूँ कि आज का जो हमारा संवाद है, शायद श्रोताओं को वो पसंद आएगा। और मैं प्रयास करूंगी कि ऋतु के हर रागिनी में मैं उन शब्दों को बयां कर पाऊं जो कि आपकी तरफ से प्रश्नों के रूप में मुझे कही जाएंगे। धन्यवाद।
0: तो ऋतु जी, शुरुआत करते हैं, आपके नाम से ही शुरुआत करते हैं। आपका नाम ही जैसे कविता का पर्याय बन गया है, शब्दों की सखी ऋतु रागिनी। ये नाम कैसे जन्मा, इसके पीछे क्या प्रेरणा रही?
1: देखिए सर, मेरा जो दरअसल जो मेरा वास्तविक नाम है वो तो ऋतु है, और जो रागिनी है वो मेरी आत्मा का स्वभाव है। मुझे लगा कि हर ऋतु की अपनी एक धुन होती है, जैसे हर मन का अपना एक राग होता है, और जब उस राग में शब्द बहने लगते हैं तो मैं भी अपने आप को एक ऋतु की रागिनी मैं मान लेती हूँ। और वहीं से तभी एक नाम जो ये है मेरे लेखन का प्रतीक बना, और ऋतु रागिनी जैसे मौसम की भावनाएं और सुरों की संवेदनाएं।
0: बहुत सुंदर।

0: आप कहती हैं कविता मेरी साधना है, सखी से संवाद है। क्या आप इस सखी का कुछ अर्थ हमारे श्रोताओं को समझाना चाहेंगी?
1: देखिए, सखी तो एक ऐसा रिश्ता है, मित्रता की जो एक बात कही जाए कि जिसमें ना कोई खून का रिश्ता है, पर जो आत्मीयता है वो सबसे ज्यादा होती है। तो मेरे लिए सखी कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वह आवाज है जो भीतर से उठती है, और यह मेरे मन की एक आत्मीय साथी है जो दुख में सांत्वना देती है और सुख में मौन रहकर मुस्कुराती है। जब मैं कविता लिखती हूँ तो वास्तव में उसी सखी से बात करती हूँ, और वो आपके समक्ष एक कविता के रूप में बहती है।
0: बहुत सुंदर, मुझे आपकी ये बात बहुत पसंद आई। सखी से या सखा से हमारा जो रिश्ता लहू का नहीं होता, खून का नहीं होता, लेकिन आत्मीयता का होता है, और वही रिश्ता जो होता है वही संवेदनाओं से भरा होता है। बहुत सुंदर, चलिए आगे चलते हैं। आपकी कविताएं गहरे भावबोध और संवेदना से भरी होती हैं। जब आप कविता लिखती हैं, क्या वह सहज भाव में आती है या कोई विशेष अनुशासन प्रक्रिया होती है उसके लिए, कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट या डिसिप्लिन आपको फॉलो करते?
1: आलोक जी, कविता कभी भी किसी योजना से नहीं आती, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं कविता के रूप में भावनाएं लिखती हूँ, इमोशंस लिखती हूँ। बस एक ये उस एक क्षण की अनुभूति होती है जिसको कि आपने या तो महसूस किया है, या कोई एक ऐसा दृश्य आपके सामने आया और उसमें से कोई एक ऐसा क्षण जिसने मतलब आपको उस समय पे हिट किया, तो वो एक जो अनुभूति है उसी को मैं शब्दों में ढालती हूँ। हाँ, ये जरूर है कि शब्दों में अनुशासन और लय का ध्यान जरूर रखती हूँ। तो कह सकती हूँ कि भाव सहज होते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति साधना मांगती है।
0: एक कवित्री के रूप में आप भावों का अवलोकन कैसे करती हैं? क्या आप प्रकृति, समाज या भीतर की अनुभूति से प्रेरणा लेती हैं?
1: देखिए, एक ही बहुत ही ऐसा प्रश्न है, लेकिन मैं इसको इस तरह से कहना चाहूंगी कि प्रकृति, समाज और मन की भावना, ये तीनों ही मेरी कविता का एक मतलब यहीं से शुरू होती है, क्योंकि प्रकृति मुझे एक दृश्य देती है और समाज मुझे विचार देते हैं, और भीतर की अनुभूति आत्मा की गहराई देती है। और जब इन तीनों का संगम जो होता है, तो जो एक भाव निकल करके आते हैं वही कविता का रूप ले जाते हैं।
0: बहुत सुंदर।

0: क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी साधारण घटना या दृश्य ने एक गहन कविता का रूप ले लिया हो? कोई अगर उदाहरण देके साझा करें तो बहुत अच्छा लगेगा हमें।
1: जी, ऐसे बहुत क्षण मैंने जीवन में मेरे जीवन में इस तरह के आए कि जहां पे मतलब कई बार जो उन क्षणों के अंदर सोचने को मजबूर कर दिया कि ऐसा क्यों, लेकिन कुल मिला के जो बात है कि जिंदगी के अपने अलग अलग मायने हर व्यक्ति के, किसी के लिए एक वो किस्सा है तो किसी के लिए कसक है। तो बस मैंने उसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक छोटी सी मेरी एक जो कविता है मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी
0: सुनिए,
1: कि
0: स्वागत।
1: जी कि कुछ कसक कुछ किस्से, क्योंकि जिंदगी का हर जिंदगी जो अपने हर मायने रखती है हर व्यक्ति विशेष के अलग अलग रूप में, जैसा मैंने कहा किसी के लिए किस्से हैं तो किसी के लिए कसक हैं और
0: जी
1: किसी की
0: जी
1: ख्वाहिश है तो मैं इजाजत चाहूंगी।
0: जी स्वागत है।
1: कुछ ख्वाहिशें अनकही, कुछ ख्वाहिशें अनकही, कुछ ख्वाब मुकम्मल से, कुछ जवाबों की तलब, कुछ सवाल अधूरे से, कुछ जमा कुछ खर्च का हिसाब है जिंदगी, कुछ जमा कुछ खर्च का हिसाब है जिंदगी, कुछ कसक कुछ किस्सों की किताब है जिंदगी, कुछ अनसुलझी पहेलियां, कुछ अनसुलझी पहेलियां, कुछ जज्बात कह गए, कुछ पल दो पल की खुशियां, कुछ हालात सह गए, कुछ रूठने कुछ मनाने का अंदाज है जिंदगी, कुछ खोना कुछ पाने का राज है जिंदगी, कुछ खोना कुछ पाने का राज है जिंदगी।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिंदगी को आपने कितने विभिन्न कोणों से सामने रख दिया, कितनी भाव इसमें आ गए। बहुत सुंदर, बहुत ही मजा आया। मैं आपसे बाद में कहने वाला था एक कविता सुनाइए, लेकिन आपने तो बिल्कुल मेरे मन की बात छीन ली। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपकी रचनाओं में अगर हम देखें तो नारी मन, संघर्ष, आत्मबल, प्रेम और प्रकृति, सबका सुंदर संगम दिखता है। इन विषयों का आप किस तरह से चयन करती हैं, क्या करती हैं, क्या इसके बारे में सोचती हैं, और सोचती हैं तो फिर किस तरह से विषय आता है आपके दिमाग
1: आलोक जी, विषय मैं नहीं चुनती, जीवन चुनता है। कुछ ऐसे क्षण हैं जो अपने आप अंदर समाहित हो जाते हैं, तो कभी कभी कोई आंसू कविता बन जाता है, कभी कोई खामोशी, और नारी मेरे भीतर का स्वर है, प्रेम मेरी ऊर्जा है और प्रकृति मेरी प्रेरणा है, और बस यही संगम मेरे शब्दों का संचार रचता है और एक कविता का रूप ले लेता है।
0: बहुत सुंदर।

0: अब ये जो परिदृश्य बदल रहा है विशेषकर महिला लेखन का, तो वर्तमान समय में महिला लेखन परिदृश्य को आप कैसे देखती हैं? क्या आज की कवियत्रियों के लिए अभिव्यक्ति के नए आयाम खुले हैं?
1: जी बिल्कुल, मतलब बहुत सशक्त और जीवंत देखती हूँ मैं लेखन परिदृश्य को, कि आज की जो कवित्रियां हैं अपनी सच्चाई बिना झिझक के कह रही हैं। अब नारी मतलब लेखन की जो सीमाएं थी उनसे बाहर निकलकर आत्मा की स्वीकृति और आत्मसंवाद की ओर बढ़ रही हैं। और जो ये समय है वो एक नारी के पुनर्जागरण का समय है, क्योंकि आज उनके पास बहुत मतलब पहले क्या होता था कि कहना बहुत कुछ चाहते थे लेकिन वो व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए मंच नहीं मिलता था या वो जगह नहीं मिलती थी। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आपके अंदर एक वो लगन होनी चाहिए और आपकी बात जो कलम है उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए। तो बहुत सारे मतलब जो मंच है वो बहुत मतलब सशक्त और जीवंत आपके लिए खड़े मिलते हैं।
0: ये सवाल मैंने नहीं सोचा था आपसे पूछूंगा। कोई आज की जो कवित्री हैं इनमें से कोई आपकी फेवरेट हो या आप जिनको बहुत अच्छा मानती हो, कोई नाम लेना चाहेंगी आप?
1: देखिए मतलब मैं सभी को सुनती हूँ, लेकिन जो पुरानी जो कवित्रियां रही हैं जो कि आज एक माइलस्टोन की तरह है, जो कि जिनका लिखा मतलब एक आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, तो मेरी प्रेरणा तो वहीं से रही है। बाकी मैं किसी व्यक्ति विशेष का या किसी महिला विशेष का नाम नहीं लेना चाहूंगी, सभी अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा लिख रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। तो मैं उसके लिए कि वो बहुत अच्छे हैं या कम है या ज्यादा है ये मैं अपने उसको नहीं कहना चाहूंगी।
0: जी बहुत बढ़िया, क्योंकि हमारा जो रास्ता तो है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, इनकी
1: सुभद्रा
0: कविताएं,
1: कुमारी चौहान की,
0: सुभद्रा कुमारा चौहान, इनकी
1: माइलस्टोन
0: कविताएं सुन के ही हम लोग बड़े हुए हैं।
1: है वो एक,
0: जी, बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल,
1: हम तो उनके कहीं अड़ते भी नहीं है, चाहे मैं हूं या मेरे समकक्ष है जो भी है। मुझे लगता है कि शायद वो ही अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, एक यूनिवर्सिटी है जहां से हम लोग निकल करके बस आगे बढ़ते जा रहे हैं।
0: बस।
1: जैसे आज संगीत के रूप में कहा जाए तो लता जी के सामने हम बात करें कि आज के हम किसी का
0: बिल्कुल
1: नाम ले ही नहीं पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत बहुत आपने दिल की बात कह दी। और
1: जी
0: ये देखिए कि ये जो महान कवित्री हैं, इनका नाम और इनका काम इतने वर्षों के बाद भी वहां का वहां बनाए, इनफैक्ट वो उसका आयाम या उसका कद और ऊंचा होता जा रहा है, और
1: जी
0: आज के नए
1: बिल्कुल
0: बच्चे भी उनको बहुत सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। ये बात
1: जी
0: बिल्कुल सही है।

0: अब थोड़ा सा हम रुख बदलते हैं और समाज और सोशल मीडिया से जुड़ाव के संबंध में बात करना चाहेंगे। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया लेखन का एक बहुत बड़ा मंच बन गया है, देख ही रहे हम लोग, क्या इससे साहित्य का कोई स्वरूप बदला है?
1: डेफिनेटली बदला है सर, बिल्कुल बदला है। जो सोशल मीडिया का सिर्फ साहित्य नहीं, मतलब हर परिपेक्ष में जो टेक्नोलॉजी आई है उसने बहुत चीजों को बिल्कुल बदल दिया है, और अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत पॉजिटिव वे में उन्होंने किया है। कि जो कविताएं आज तक मन की दीवारों में कैद थी या सिर्फ एक कागज के पन्नों में थी, तो वो आज उन कविताएं दीवारों से निकलकर स्क्रीन तक पहुंच गई हैं। ये परिवर्तन बहुत सुंदर है क्योंकि इसमें कविता आम जीवन का हिस्सा बनी है। पर साथ ही हमें ये भी याद रखना चाहिए कि तेज दृश्यता हमेशा गहरी संवेदना ही नहीं होती, हाँ एक पहुंच हो जाती है कि आज कविता इस सोशल मीडिया के माध्यम से का जो प्रचार और प्रसार है वो बहुत त्वरित गति से होता है।
0: ये बात आप सही कह रही हैं, लेकिन अभी क्या सोशल मीडिया की त्वरित प्रतिक्रियाएं जैसे लाइक्स है, प्रशंसा है या आलोचना है, इसने कभी आपके लेखन को भी प्रभावित किया है कि कुछ इससे फर्क पड़ता है कभी आपको भी?
1: जी जी जी, ऐसा देखिए जब नई नई शुरुआत जब सोशल मीडिया के साथ की थी तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मुझे कभी इन्होंने प्रभावित नहीं किया। हाँ कभी कभी बिल्कुल किया, लेकिन समय के साथ मैंने सीखा कि शब्दों की यात्रा लाइक से नहीं, आत्मसंतोष से मापी जाती है। इसलिए मैं प्रतिक्रिया से अधिक अपनी सच्चाई से जुड़ी रहती हूँ। लेकिन सोशल मीडिया की जो त्वरित प्रतिक्रियाएं जो होती हैं कभी कभी हमें जागरूक कर देती है, झकझोर देती है कि नहीं ये बहुत अच्छा है या इसमें कमी है या इसको और अच्छा किया जा सकता है, अगर वो वास्तविक प्रतिक्रियाएं हो, किसी को मतलब परेशान करने की ना हो, तो ऐसा मेरा मानना है।
0: ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। और फिर आजकल ये जो डिजिटल युग में संवेदना और सतहीपन के बीच में, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे हर तरह की चीज बहुत जल्दी पोस्ट करते हैं लोग, पास कविता लिखी, कहानी लिखी, कोई संस्मरण आया, एकदम उस पर लिख के डाल दिया, तो इसमें कुछ संवेदना और सतहीपन मतलब हल्कापन के बीच में संतुलन आप कैसे बनाए रखती हैं, या कैसे, क्या कोई इसका कोई तरीका हो सकता है?
1: आलोक जी, मेरा मानना है कि संतुलन बनाने के लिए सबसे बड़ा जो मंत्र है वो है मौन। मौन मुझे भीतर से जोड़ता है, और जब दुनिया बहुत शोर करती है मैं कलम से बात करती हूँ और वही मेरा संतुलन है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब जिसको कहते हैं त्वरित प्रतिक्रिया आप किसी भी चीज पे नहीं देती, और आप उसको
1: खामोशी से
0: उसका जवाब देती है और अपनी लेखनी से देती है। सबसे सुंदर बात है, अपनी लेखनी से उसका जवाब देती है, अपनी रचनाओं से उसका जवाब देती है। बहुत
1: कुछ इसी पे, मतलब कुछ खामोशी पे मैं अपनी कुछ पंक्तियां आपसे अगर साझा करना चाहूंगी। हाँ,
0: बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल स्वागत।
1: कि जब ये सब तरफ इतना सब, जब ये कहते हैं से भूचाल जब आ जाता है, जब आप कहते हैं त्वरित प्रक्रिया की बात करते हैं, तो मैं खामोशी के लिए बात इस तरह से कहूंगी, खामोश रंगों की दास्ता से रंगा जीवन मेरा, खामोश रंगों की दास्ता से रंगा जीवन मेरा, जिसमें जिसमें उतर आता है अक्सर अक्स तेरा, की सैकड़ों कोशिश की हर रंग बोले, बजे सांस तो बन आवाज कहीं कुछ होले होले, सिर्फ तेरा नाम लेकर के बिखेरा हर रंग मैंने, कि जुबा रंगों को मिले और बन के गजल दिल को छूले, कैसे संभालू हर रंग कब तक हिफाजत में करूं, टूटेगी कब ये खामोशी बस यही इंतजार करूं, टूटेगी कब ये खामोशी हाँ बस यही इंतजार करूं,
0: टूटेगी कब ये खामोशी बस यही इंतजार में करूं। वाह बहुत सुंदर, वाह बहुत सुंदर। आपने जो मौन की बात को किस तरह से प्रस्तुत किया है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मजा आ गया।

0: आपने कई सम्मान भी आपको मिले हैं देश में, मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न, जयपुर रत्न, लक्ष्मीबाई शिरोमणि आदि। इतने सम्मान और प्रसिद्धि के बीच आपने सादगी और आत्मिक जुड़ाव को आप कैसे बनाए रखती?
1: देखिए, पुरस्कार अवार्ड सम्मान ये जो मिलते हैं उनसे मेरी कविताओं के नेचर में कहीं कोई बदलाव नहीं आता, ये एक प्रोत्साहन है। हाँ, ऐसा नहीं पुरस्कार अवार्ड सबको पसंद आते, सबको अच्छे लगते हैं, पर मेरे लिए लेखन मेरी सेवा है। लेखन मतलब एक मेरे लिए एक सेवा की तरह ही है, एक आत्मा की सेवा। और जब सेवा में विनम्रता आ जाती है तो ये पुरस्कार और ये खुशी तो देते हैं पर लेकिन कहीं एक रुकावट नहीं बनते, कहीं अपने आप में एक कहते ना कि एक सुर को नहीं बदलते कि एक अभिमान हो जाए या एक तरीके सब ऐसा हो गया वो हो गया। तो सादगी अपने आप विनम्र, जो सेवा अगर भाव रखा जाएगा आत्मा से शब्दों के साथ में तो विनम्रता स्वाभाविक है, उसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा ऐसा मानना है।
0: बहुत सुंदर। और ये जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से आपकी व्यक्तिगत भेंट हुई है, उस अनुभव को हमारे साथ साझा करना चाहेंगी? किस तरह से आपको बुलाया गया, आप कैसे वहां गई, क्या क्या बातचीत हुई, क्या महसूस हुआ आपको, कुछ उस अनुभव को हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी?
1: जी बिल्कुल करना चाहूंगी। मतलब मेरे लिए बिल्कुल अविस्मरणीय और अविश्वसनीय क्षण थे जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मेरा आमने सामने मुलाकात हुई और जब महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से जब मुलाकात हुई राष्ट्रपति भवन में और प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई प्रधानमंत्री आवास में ही। तो जब उनसे मिली, जब देखा इतने बड़े नाम, आज इतना बड़ा पद, लेकिन जो उनके अंदर जो सहजता, वो वाकई जैसे कि हम अभी तक उनको हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, सब कुछ सारा, लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से जब उनसे मिलते हैं तो लगता है जैसे घर का कोई बड़ा अपने बच्चों से कैसे बात करता है, किस तरह की बातें करते हैं। मतलब एक वो सहजता उनकी बातों में थी, मैं मेरे लिए बहुत ही मतलब अविश्वसनीय क्षण थे कि मुझे अपने आप लगा कि हाँ वाकई मैं यहाँ हूँ, नहीं हूँ ऐसा लग रहा था। पर उससे भी जो वो क्षण अविश्वसनीय तो थे ही थे, पर उससे भी बड़ा भाव था कृतज्ञता का। मैंने बस मन ही मन कहा, हे ईश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे शब्द किसी को छू पाए। और उस दिन लगा कि कविता सिर्फ शब्द नहीं, संसार को जोड़ने का एक सेतु है और मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। और उनके द्वारा मतलब जो एक सहजता को मैंने महसूस किया कि जो आदमी जितना बड़ा उतना सरल और सहज कैसे हो सकता है, ये मुझे उनसे मिलकर के सीखने को और देखने।
0: बहुत सुंदर। ये भी तो कितनी बड़ी बात है कि आप अपनी कविता की वजह से या अपनी पोइट्री की वजह से आप वहां तक पहुंची, मतलब वो ही आपकी उपलब्धि रही। और लोगों को तो जाने के बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन आप अपनी कविता की वजह से जो पहचान बनी है उसकी वजह से आप ऊपर पहुंची।
1: जी बहुत मतलब इतना अच्छी एक अनुभूति लगती है जब आपके शब्द गाते हैं, बोलते हैं और किसी के मन को प्रभावित करते हैं, ये अपने आप

0: सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा सम्मान होता है। और जब उस उन भावनाओं को, उन शब्दों को, उन पंक्तियों को इतने विरले, या कहते ना कि बहुत इस तरह के लोग जब सुनते हैं, समझते हैं, आपको सराहते हैं, तो फिर अपने आप में शायद इससे बड़ा अवार्ड या रिवॉर्ड मेरे हिसाब से और कुछ नहीं हो सकता।
1: बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।

0: थोड़ा जीवन दर्शन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो कवि हैं उनका जीवन दर्शन के प्रति क्या विचार है ये हम जानना चाहेंगे। आपके लिए कविता सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं, आत्मा की साधना है, यह साधना आपके जीवन में किस रूप में उतरती है?
1: देखिए आलोक जी, बहुत गहरा प्रश्न है, पर लेकिन कविता मेरे लिए मौन से संवाद है और मेरे आत्मा की अभिव्यक्ति है। हर दिन मैं कुछ ना कुछ लिखती हूँ, भले ही वो एक पंक्ति हो। मेरे लिए जो लेखन है वो एक ध्यान है, मेडिटेशन है, और जब मैं

0: तो मेरा मन उससे शांत होता है और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं कोई प्रार्थना कर रही हूं। तो और मेरा मौन से संवाद मेरी कलम से कागज पे उतर जाता है।
1: तो जब आप लेखन नहीं कर रही होती तो जीवन को कैसे जीती है? क्या उस समय भी शब्द आपके मन में चल रहे होते हैं, विचार चल रहे होते हैं, फिर जब आप बैठती हैं तब उनको उतारती हैं कागज पर?
0: देखिए, ये तो विज्ञान भी कहता है कि एक दिन में कितने हजारों विचार हमारे दिमाग में आते और चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर वक्त मेरे हाथ में कलम हो या हर बार ही मैं उसको लिखूं, पर जब भी, क्योंकि मैंने क्या कहा कि मैं इमोशंस लिखती हूँ, भावनाएं लिखती हूँ, और कोई एक क्षण होता है जो मुझे हिट कर जाता है और मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरी आत्मा से इसके बारे में आवाज में कुछ कह सकती हूँ, तो मैं उसको महसूस करती हूँ। और मेरा ये मानना है कि हर क्षण में कविता है, और जैसे किसी बच्चे की हंसी है, और जैसे मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, उनकी द्वारा, मतलब उनकी उनकी भी हंसी, उनके द्वारा कही गई कोई बात, और जैसे आज चिड़ियों का चहकना और फूलों का महकना, ये भी अपने आप में कविता है। तो मैं बस शब्दों के बिना भी, मतलब एक जो मेरी भावनाओं को उन क्षणों के साथ जोड़ लेती हूँ, तो मेरे अंदर जैसे वो एक तरीके से समाहित हो जाते हैं, और जब मैं लिखने के लिए जब कलम उठाती हूँ तो बिना किसी प्रयास के मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं, और अपने आप, मतलब मुझे एक वो लय दे देते हैं कि मैं शब्दों के साथ संवाद करूं, मौन के साथ संवाद करूं, और उनको शब्दों में ढाल के एक कविता के रूप में प्रस्तुत करूं।
1: बहुत बहुत सुंदर। अब मैं थोड़ा सा एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ लूं, मैंने सोचा नहीं था आपसे पूछूंगा
0: जी।
1: ये जो लेखक या कवि होते हैं, अब ये अपने व्यक्तिगत जीवन में किस तरह से अपना समय को मैनेज करते हैं, क्योंकि घर के अंदर शोर भी होता है, वो भी होता है, तो किस तरह से आप अपना एकांत तलाशते हैं और किस तरह से अपने आप को बाहरी दुनिया से काटते हैं और फिर अपने लेखन से जुड़ते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये मन में सवाल चलते रहते हैं, क्या लेखक बिल्कुल अलग से कमरे में बैठ जाते हैं, शांति से बैठ जाते हैं, घर वालों को मना कर देते हैं कि भाई शोर मत करो, मोबाइल नहीं उठाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो अब ये मैं एक थोड़ा सा हल्का फुल्का सा सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, ये प्रक्रिया होती कैसे है?
0: देखिए, जैसे कि मैंने कहा ना कि वो जो क्षण है वही अंदर कैद हो जाते हैं दिमाग में, तो आपने बड़ा सुंदर एक सवाल किया, क्योंकि जैसे मैं एक महिला हूं तो मेरे घर, मेरे ऊपर अपने घर की, बच्चों की, परिवार की जिम्मेदारी भी होती है, अलावा सामाजिक जिम्मेदारियां भी है। तो जैसा कि मैंने कहा ना, कविता के लिए आपको किताब या कॉपी या पेन लेकर के नहीं बैठना होता है, वो क्षण आपके जो मन, जो मन में क्या होता है, अपने आप एक जगह बना लेते हैं, एक ऐसा कोना होता है जहाँ पे भावनाएं इकट्ठी होती जाती हैं। और जब कभी भी, जैसे कि क्योंकि घर में हमेशा हर चीज सही हो, सरल हो, ऐसा मुमकिन नहीं है, कुछ भी होता है, लेकिन वो चीजें मुझे वो मोटिवेशन देती है, मुझे प्रेरणा देती है कि हाँ, ये इस तरीके से भी इस बात को कहा जा सकता है। और कविता क्या है, एक तरीके से कविता एक तरीके से मेरे लिए एक जीवन है, कि आज मैं अगर किचन में काम कर रोटी बना रही हूँ तो भी अगर मेरे मन में कोई भाव आता है तो वो सहेज लेती हूँ, और जब समय मिलता है उसको लिख लेती हूँ। क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको कि मेरे लिए कविता एक ध्यान है, एक मोटिवेशन है, और ध्यान करने के लिए आपको किसी बंद कमरे की या किसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है। आप कर रहे, चाहे कितना भी शोर हो, चाहे कुछ भी चलता रहे, अगर व्यक्ति को ध्यान में रहना है तो वो अपने आप, वो अपनी धुन में खो जाता है, उसको किसी और की आवश्यकता, जैसे मीरा बाई थी तो वो कहते ना, मैं मीरा के से अपनी तुलना नहीं कर सकती, लेकिन एक भाव को बताना चाहती हूँ, पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट में खड़ी थी, लेकिन जो कृष्ण की भक्ति की और प्रेम जो उनके पास था, तो उनको किसी लिए कोई रोड़ा ही नहीं बनी उनके लिए। क्योंकि कई लोग बोलते हैं मेडिटेशन कैसे किया जाता है, तो मैं ये आपके माध्यम से बात कहना चाहूंगी, जितना मैंने समझा है कि मेडिटेशन करने की चीज नहीं है, मेडिटेशन इज अ बीइंग स्टेट, आप मेडिटेशन में होते हैं, फिर चाहे आप काम कुछ भी करते रहे, ऐसा मेरा मानना है सर।
1: भाई आपने ये जो अंत में कहा ये बहुत जोरदार बात है, मेडिटेशन इज ए बीइंग स्टेट, मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको पहाड़ पे बैठ के जाके बैठने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया,
0: मेडिटेशन में तो आप होते हैं, फिर चाहे आसपास जो भी गतिविधियां चले, आपको अपने ऊपर एक वो कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप सहज रूप से उसके अंदर पहुंच जाते हो।

0: अच्छा ये बताइए, आप कोई अपने साथ डायरी रखती हैं या मोबाइल पे नोट करती हैं जब कोई थॉट आपके दिमाग में आया, कोई विचार आया कि इसको मैं बाद में एक्सपेंड करूंगी, ऐसा कुछ प्रैक्टिकल क्या करती?
1: आपको मतलब हंसी आएगी ये बात सुन के कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो बिल्कुल मैं उस नटखट बच्चे की तरह होती हूँ, जब मेरे मन में कोई विचार आता है तो मैं कोई डायरी या पेन अपने पास नहीं रखती हूँ, ना मोबाइल भी। मतलब मोबाइल तो आज हुआ है, लेकिन जब भी लिखना शुरू किया तो मेरे को मोबाइल थोड़ा कम मतलब वो रहता है कि, तो उस टाइम जैसे अगर मुझे मान लीजिए किसी अखबार का टुकड़ा मिल गया या रास्ते में कोई कागज या मान लीजिए कोई कैलेंडर ही है, और अगर मैं खाना बना रही हूँ तो अगर सूखा आटा बिखेर कर भी वो दो शब्द लिख लेती हूँ अगर मुझे उनको याद रखना होता है तो इस
0: वाह
1: तरीके से तो ये सहज बात है और ये सच्ची बात है कि हमेशा आप कॉपी और पेन को साथ नहीं रख सकते हैं। तो अगर मैं सफर कर रही हूँ तो अगर डैशबोर्ड में कोई कागज रखा होगा तो पेन ढूंढ ढांड के कहीं किसी कोने में, किसी बिल के कोने में, किसी कार्ड के कोने में कुछ एक वो पंक्ति या वो शब्द लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद में उसको इलैबोरेट कर देती हूँ।
0: ये अगर हमारा इंटरव्यू जवाहर कला केंद्र में हो रहा होता और
1: जी
0: आपने ये बात कही होती कि मैं आटे पे अपने विचार लिख लेती हूं, तो कल
1: जी
0: के अखबार
1: बिल्कुल
0: की हेडलाइन बन जाती है।

0: मैं आपसे अभी निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी कविता सुनाएं, लेकिन एक और कविता हम आपसे सुनना चाहेंगे, लेकिन
1: जी
0: उससे पहले मुझे एक प्रश्न का और उत्तर दे दीजिए कि
1: जी
0: अगर मैं आपसे कहूं कविता जीवन है, तो आपका
1: जी
0: एक पंक्ति में क्या उत्तर होगा?
1: कविता जीवन है, ये अपने आप में उत्तर हो गया सर। लेकिन कविता वही है जहाँ जीवन सांस लेता है, कविता वही है जहाँ जीवन सांस लेता है, और जीवन वही है जब कविता जागती है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आप कोई अपनी प्रिय कविता सुनाना चाहें तो उसका स्वागत है। हम चाहेंगे कि आज का समापन किस आपकी कुछ प्रिय पंक्तियों से ही करें हम।
1: जी, तो कुछ दो पंक्तियां मैं अपनी कविता से पहले आपको मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। कि शब्द बिखरे हैं हवा में, शब्द बिखरे हैं हवा में जैसे कोई दुआ तैर रही हो, शब्द बिखरे हैं हवा में जैसे कोई दुआ तैर रही हो। मैं लिखती नहीं, बस सुनती हूँ जो मन की सखी कह रही हो। आज मैं अपनी जो कविता है कि
0: आप
1: मैं
0: पहली पहली लाइन दोबारा बोलिए, उस जो दुआ बह रही हो हवा में, बहुत सुंदर लगी मुझे,
1: जी
0: तो
1: जी
0: दोबारा सुनाइए, बहुत अच्छी है।
1: जी बिल्कुल। शब्द बिखरे हैं हवा में, शब्द बिखरे हैं हवा में जैसे कोई दुआ तैर रही हो। मैं लिखती नहीं, बस सुनती हूँ, मैं लिखती नहीं बस सुनती हूँ जो मन की सखी कह रही हो।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
1: और
0: बहुत सुंदर
1: अपनी ये कविता आपके सामने छोटी सी प्रस्तुत करना चाहूंगी,
0: जी।
1: क्योंकि मतलब मैं वही स्त्री के ऊपर मेरी कविता है, नारी मन कि आज, क्योंकि हम तो उस कह रहे ना कि जिस जहां से हम लोग अपने जीवन की शुरुआत की, उस जमाने से बात कर रही हूँ जहां पे महिलाओं को इतनी आजादी नहीं थी। लेकिन आज भी महिलाओं को आजादी है, लेकिन आज भी वो पूरी तरीके से उन्मुक्त नहीं है। तो मैं चाहे वो किसी भी एरा की महिला हो, चाहे आज की हो या पहले की हो, तो मैं एक ये महिला को एक पंछी के रूप में वो करके अपनी एक बात इस तरह कहना चाहूंगी
0: जी,
1: कि उन्मुक्त गगन की मैं पंछी, उन्मुक्त गगन की मैं पंछी, फितरत ना मेरी बंध पाऊं, उन्मुक्त गगन की मैं पंछी, फितरत ना मेरी बंध पाऊं, न सीमित कर सीमाओं में, सरहदों में कैसे सिमट जाऊं। तुझको ऐ तकदीर मेरी, तुझको ऐ तकदीर मेरी, तारीखों में लिखूं कैसे, वक्त वजह की बंदिश में खुशियां कैद करूं कैसे। चुनो चुनौती चाहत की, चुनो चुनौती चाहत की, ना बरबस में थोपी जाऊं, बन शिखर पताका फहराए, दीवारों में ना चुनवाई जाऊं। हदे हटा दे ऐ मानस, हदे हटा दे ऐ मानस, जबरन जंग ना होने दे, ख्वाहिशों के खेतों में सपनों की फसलें बोने दे, ख्वाहिशों के खेतों में सपनों की फसलें बोने दे।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। आपने जिस तरह से कल्पना की है पंछी हुई और महिला की, बहुत बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इनफैक्ट हमारा तो मन कर रहा है अभी आपसे और सुने, लेकिन समय की अपनी सीमाएं होती हैं।

0: दो।
1: तो वहां ऋतु जी, आपकी बातों में जितनी गहराई है उतनी ही मधुरता भी, मानो हर शब्द एक अनुभूति बनकर हमारे जीवन में उतर गया हो। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, आपने आज हमारे श्रोताओं के साथ अपनी भावनाएं, अपने अनुभव और अपनी सृजन यात्रा साझा की। हम कामना करते हैं कि आपकी लेखनी यूं ही भावों के नए क्षितिज छूती रहे और हर ऋतु में आपकी रागनी गूंजती रहे। मेरे को दो पंक्तियां याद आ रही हैं, आपने राष्ट्रीय स्तर पर तो अपनी पहचान बना ली है, मैं चाहता हूं आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाए। दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा, दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा, दीवारों में दरवाजे बन जाएंगे। इसलिए हमारी यह कामना है कि आपके लिए सारे दरवाजे एक के बाद एक खुलते रहें और आपकी दस्तक यूं ही चलती रहे और आप एक के बाद एक दरवाजे खोलती जाएं अपने लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपने इतनी सुंदर इस कार्यक्रम की संरचना की, इतने सुंदर सवाल मुझसे पूछे और दो पंक्ति के साथ में

0: प्यार भरा नमस्कार और शब्दों की सखी ऋतुरागनी को सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।
1: तो श्रोताओं बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत, एक नई कहानी और नए प्रेरणा स्रोत के साथ। नमस्कार।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज के कलाकार हैं विनोद खन्ना, जो बॉलीवुड के एक बहुत बड़े स्टार रहे हैं। आइए पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर, आप मेरे साथ है ना? तो दोस्तों, सुनते हैं विनोद खन्ना साहब के फैन से कुछ उनके बारे में।
1: दोस्तों, हमारे साथ बने हुए हैं गौरव दीक्षित जी अयोध्या से। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, विनोद खन्ना जी के बारे में आप क्या कहेंगे?
2: क्या पर्सनैलिटी है भाई। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय विनोद खन्ना जी अपने चरम में हुआ करते थे, लगता था पर्सनैलिटी तो ऐसी हो।
1: बहुत बढ़िया। विनोद खन्ना जी की किसी फिल्म का कोई गीत आप सुनाना चाहेंगे श्रोताओं को?
2: एक बड़ी फेमस फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर
1: जी,
2: अमिताभ जी और विनोद खन्ना जी की, उसमें वो प्यार जिंदगी है, बड़ा अच्छा गाना है।
1: कौन सा गीत?
2: प्यार जिंदगी है।
1: ओके ओके, वो उन्हीं के ऊपर सुनाया गया था।
2: जी जी जी जी जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं, गौरव दीक्षित जी का पसंद का। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई।
2: बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद समीर भाई,
1: थैंक यू।
0: लीजिए, पेश खिदमत है उनके ही फैन की पसंद का ये गीत।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: जज ने पूछा, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए भैया? आदमी ने कहा, सर मेरी बीवी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज छिलवाती है, बर्तन मंजवाती है। जज ने कहा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? लहसुन को थोड़ा सा गर्म कर लिया करो, आसानी से छिल जाएंगे। प्याज को फ्रिज में रख दिया करो तो आंसू नहीं आएंगे, और बर्तनों में ना 10 मिनट पहले पानी डाल दिया करो, आराम से धुल जाएगा, समझे? तो आदमी ने कहा, समझ गया सर। जज ने कहा, क्या समझे? आदमी ने कहा, सर आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। What?

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना
1: दोस्तों? विनोद खन्ना साहब का जन्म एक पंजाबी हिंदू फैमिली में पेशावर में 6 अक्टूबर 1946 को हुआ था। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, विनोद खन्ना साहब को 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। वो अपने जमाने में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार्स में से एक थे। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।
1: दोस्तों, विनोद खन्ना साहब फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर कुछ समय के लिए, 4 साल के लिए चले गए थे, थोड़ा आध्यात्म की तरफ घूम गए थे। 1982 से 1986 तक वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

1987 में उनकी वापसी हुई फिल्म इंडस्ट्री में और कई कामयाब फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। चलिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: नहीं दोस्तों, सुनते हैं विनोद खन्ना साहब की ही फिल्म का ये गीत।

लीजिए दोस्तों सुनिए विनोद खन्ना साहब पर फिल्माया हुआ ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो जी का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। आइए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। आगे जाने से पहले सुनते चलते हैं दोस्तों ये गीत।

दोस्तों, सायरा बानो जब 16 साल की थी तभी से उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो कथक और भरतनाट्यम की बहुत प्रवीण नर्तकी थी। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। सायरा बानर्जी की बहुत सी फिल्मों में विश्वजीत और जॉय मुखर्जी के साथ उन्होंने अभिनय किया और इनकी जोड़ी हमेशा बहुत हिट रही। लीजिए, पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। जंगल में एक भैंस भागी हुई जा रही थी। चूहे ने रोका, क्या हो गया बहन, इतनी तेजी से भागी जा रही हो? भैंस ने कहा, पुलिस आई है हाथी को पकड़ने। चूहे ने कहा, तो वो हाथी को पकड़ने आई है, तुम तो हाथी नहीं हो। उसने कहा, भैया ये हिंदुस्तान की पुलिस है, अगर पकड़ लिया ना तो 20 साल तो साबित करने में निकल जाएंगे कि मैं भैंस हूं, हाथी नहीं हूं।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात।

और रेडियो तांतिया भी 90.8 FM पर मेरा और आपका मनपसंद प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, शायरी सिर्फ कागजों पर उतरे हुए लफ्ज नहीं होते, बल्कि वो जज्बात हैं जो हम अक्सर कह नहीं पाते। कभी जिंदगी सवाल बनकर सामने खड़ी हो जाती है, तो कभी खामोशी हमारी हमसफर बन जाती है। आज की शाम इन सवालों और खामोश एहसासों के नाम करते हैं। तो चलिए, दिल की धड़कनों को थोड़ा सा थमकर चलने को कहते हैं और शुरू करते हैं आज का ये हसीन सिलसिला। आज के प्रोग्राम की खसूसी बात ये है कि आज के प्रोग्राम में हम एक बिल्कुल ही नई किस्म की गुलुकारों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें सूफिया कलाम भी है, तो आप कह सकते हैं फ्यूजन गजल्स हैं। आई होप आपको पसंद आएंगी। तो शुरू करते हैं, शेर हाजिर है। कभी उदास आंखों में रहता है वो चेहरा रात दिन, उस चेहरे पे नूर हो ये जरूरी तो नहीं। सफर में साथ चलते हैं यहाँ कितने ही लोग, हर एक हम सफर ही हो ये जरूरी तो नहीं। या फिर फिजा में रंग बिखरे हैं तुम्हारी याद के, फिजा में रंग बिखरे हैं तुम्हारी याद के, हर एक रंग में तू ही हो जरूरी तो नहीं। कभी खामोशियां भी तो बहुत कुछ कहती हैं, हर एक बात लफ्जों में हो जरूरी तो नहीं। तो आइए दोस्तों, ये खूबसूरत सी गजल सुनते हैं जिसका मिसरा है, हर एक ख्वाब मुकम्मल हो जरूरी तो नहीं, मोहब्बत में सभी खुश हो जरूरी तो नहीं। मुलाहिज़ा फरमाएं।

बात लब पर आई मगर रुक गई थी, कोई हया से निगाहें झुक सी गई थी। वो अदा से दुपट्टे को मुंह में दबाना आफते जान है उनका मुस्कुराना। सर्द रातों में चमकते हुए ख्वाब आते हैं, सर्द रातों में चमकते हुए ख्वाब आते हैं। उनकी यादों के मौसम बेहिसाब आते हैं और उनका सितम ढा के फिर खुद ही रूठ जाना। आफते जान है वो उनका मुस्कुराना। लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत सी गजल सुनिए और बह जाइए प्यार के डूबे हुए एहसास में।

0: दोस्तों, ये रूठना मनाना तो बस इश्क की अदा है, दोनों की ही इसमें जीत है, ऐसी ये सजा है। आपने कभी उस प्यार करने वाले आशिक की लड़ाई सुनी, जहां उसका उलाहना और शिकायतें सिर्फ इसलिए हैं कि उसको और भी प्यार किया जाए। प्यार और ज्यादा प्यार पाने की जद्दोजहद में वो अपने महबूब से हक से शिकायत करता है, जिद करता है और कहता है, पास अपने बिठा लीजिए, हाथ मेरा थाम लीजिए, ऐसे नहीं मानूंगा, अब रूह में समा लीजिए, ऐसे नहीं मानूंगा। लफ्ज़े शिकायत आज मेरे होंठों पे धरे हैं, लफ्ज़े शिकायत आज मेरे होंठों पे धरे हैं, पर आपकी नजरों में तो पैमाने भरे हैं, तो फिर नजरों से पिला दीजिए, ऐसे नहीं मानूंगा। करके वफा की बातें, फक्त कहने की बातें, करके वफा की बातें, फक्त कहने की बातें, बिना आपके कटती नहीं ये तन्हा रातें। गजल सुनिए, आंखों से मना लीजिए, ऐसे नहीं मानूंगा, होठों से चुरा लीजिए, ऐसे नहीं मानूंगा। शक पर मैं
1: लफ्जों का आईना।

तो ये सांसें चलेंगी कैसे, दिल के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ूंगा कैसे। जिंदगी भर तेरी चाहत में तड़पूंगा कैसे। तू बता दे कि मैं अब जी पाऊंगा कैसे। अगर तूने मुझे अब यूं ही रुलाया तो मिट जाऊंगा तेरे बिन, मेरी जान मैं बिखर जाऊंगा। उम्र भर इन तन्हा रातों को बिताऊंगा कैसे। प्यार इतना तो बता दे मैं जी पाऊंगा कैसे। तू चला गया तो ये सांसें चलेगी कैसे। दिल के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ूंगा कैसे। दोस्तों ये सूफियाना कलाम सुनिए। दिन रात तड़पता हूँ, दिन रात जलता हूँ, तू दूर हुई जब से दिल टूट गया तब से। तू दूर हुई जब से रुख बदल गया तब से। सुनिए ये सूफियाना कलाम।

इश्क ने इंसान को क्या से क्या बना डाला, किसी को कवि तो किसी को कातिल बना डाला। दो फूलों का बोझ ना सह सकती थी मुमताज, और शाहजहां ने उस पर ताजमहल बना डाला। आईने में खुद की ही सूरत को देख के वो अपने से ही शर्माने लगे। सुना है कि वो मुस्कुराने लगे हैं, इशारों इशारों में बताने लगे हैं। दोस्तों, ये बहुत सुंदर कलाम है, आप भी इसका लुत्फ उठाएं। सुना है कि वो मुस्कुराने लगे हैं, इशारों इशारों में बताने लगे हैं।

दोस्तों दर्द दिल की दास्तान है कि महबूब की बाहों में एक बार जाकर जो सुख का एहसास सीने में और नस नस में बस जाता है वो फिर उम्र भर वहीं कहीं ठहर जाता। वसल की खूबसूरती ही ये है कि वो चाहे पल भर का ही क्यों ना हो सारी उम्र बिताने के लिए काफी होता है। वो पल भर का साथ सुलग सुलग के भी कहीं बहुत सुकून देता है। महबूब कहता है कि सिमट आई है दुनिया इस आगोश में, सिमट आई है दुनिया इस आगोश में, रहे ना अब हम अपने ही होश में। दोस्तों ये खूबसूरत सी गजल सुनिए जिसका अनुमान है ठहर गया वक्त तुम्हारी बाहों में, ठहर गया वक्त तुम्हारी बाहों में, खो गए हम दोनों एक दूजे की निगाहों में।

दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अर्जे मनीष कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और तैयारी कर रहे होंगे आगामी फसल किस तरीके से करें। और खेतों की तैयारी के साथ साथ हमारे किसान साथी अब तो समझ ही गए होंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से यानी खेती

आने की सलाह लेकर अपने खेतों को अच्छा हरा भरा बना सकते हैं और साथ में अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम उन छोटी छोटी बातों को लेकर आते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होती है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम बातें खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम नीम की खेती, चूंकि नीम की खेती भारतीय संस्कृति में नीम को एक विशेष महत्व मिलता है और नीम को यहाँ बहुत सी मान्यताओं के साथ जोड़ा भी गया है। नीम की गुणवाणी औषधि का दर्जा भी दिया गया है और नीम की खेती भी इतनी लाभकारी भी साबित होती है जिसमें मौजूद औषधीय गुण इतने गुणकारी और मूल्यवान हैं जिनकी इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। भारत में कई स्थानों पर इसे पूजा भी जाता है और नीम का उपयोग दवाइयों के तौर पर किया जाता है। नीम से निर्मित तेल और निवोलियों से एकत्रित करके इसे बाजार में अच्छे भाव में बेचा जाता है। यह मैली ऐसी कुल का पौधा है, इसको मुख्य तह नाम दिया जाना जाता है। इसमें नीम पेड़, मुर्गासा पेड़, भारतीय बकाहन, सफेद देवदार, स्वर्ण पेड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथियों, नीम के होने वाले फायदे के बारे में भी थोड़ा आपको बता देना चाहते हैं कि घाव पर असरदार भी होता है नीम का पौधा, क्योंकि नीम में उपस्थित एंटीबायोटिक गुण जो रहते हैं अत्यंत लाभकारी साबित होते हैं। इसके पत्तों को पीसकर घाव पर लगाकर घाव को भराया जाता है। नीम की दातुन भी, क्योंकि आस पास नीम की दातुन नहीं मिलती है, शहरों में खासतौर पर ये नहीं मिलती है और शहर के लोग खास तौर पर इसको तलाशते हैं कि नीम की दातुन कहाँ मिले, और कोविड काल में अगर देखा जाए तो इसका तो जवाब ही नहीं है। वास्तव में नीम की निमोली और नीम की दातुन, नीम की कोंप को लोग देख रहे थे, कहाँ पर नीम का पौधा है वहाँ पर जाकर ताजी ताजी हवा ले रहे थे, नीम की कोंप खा रहे थे जिससे हमारे खून भी साफ होता है। और दातुन की अगर बात है, रोजाना नीम का दातुन करने से दांतों में मजबूती बनी रहती है और दांतों में किसी प्रकार का रोग भी नहीं लगता है। साथ में बालों के लिए भी नीम का इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पत्तों को पीसकर यदि बालों में लगाया जाता है तो बहुत लाभकारी साबित होता है। नीम का काढ़ा, आपको पता ही होगा कि नीम के पत्तों को उबालकर यदि काढ़ा बनाकर हम रोजाना एक गिलास पिया जाए तो उसके शरीर में अत्यंत लाभकारी होता है। नीम के पानी से स्नान करना, नीम के पत्तों को मिलाकर यदि पानी में डालकर स्नान किया जाए तो इसके शरीर साफ होता है और बहुत से फायदे भी हमें मिलते हैं। खासतौर में मलेरिया में असरदार होता है। नीम मलेरिया में फैलाने वाले मच्छरों को दूर रखने में अत्यंत सहायक है। जिस वातावरण में नीम के पेड़ रहते हैं वहां पर मलेरिया नहीं फैलता है। नीम के पत्तों को जलाकर रात को धुआं करके मच्छर नष्ट हो जाते हैं और विषम ज्वर जिसे मलेरिया कहा जाता है उससे भी बचा जा सकता है। बिच्छू को काटने में असरदार होता है, क्योंकि बिच्छू को काटने पर नीम के पत्तों को मसल कर काटे गए स्थान पर लगाकर यदि लगाते हैं तो जलन नहीं होती है और जहर का भी असर कम होता है। उपयुक्त जलवायु के लिए, क्योंकि नीम की खेती करने के लिए आपको तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वर्षा 400 से 1200 मिलीमीटर होनी चाहिए। इसको उगाने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसको आप सभी प्रकार की मिट्टी में कैसे भी और सभी प्रकार की भूमि, जैसे सुर्ख पथरीली इलाका हो, रीतीला इलाका हो, खासतौर पर अगर देखा जाए झाबुआ जिले को देखा जाए तो पथरीला इलाका है, तो यहाँ पर आसान तरीके से इसको उगाया जा सकता है। गहरी चिकनी मिट्टी हो वहाँ पर भी उगाया जा सकता है, भूमि में आसानी से इसे उगाया जा सकता है। आरंभिक अवस्था में नीम के पौधों को पाले का खतरा बना रहता है, अतः वृक्षारोपण के बाद एक वर्ष तक पाले से बचाना आवश्यक होता है। तत्पश्चात पाला सहन कर सकने में यह सक्षम होकर तैयार होता है। कैसे तैयार करें? वैसे तो नीम सभी तरह की मिट्टी में उगाया जाता है, फिर भी खेत को अनेकों बार जोतकर इसमें कंकड़ पत्थर अलग करके इसको खेती लायक बनाया जाता है। और बीज का उपयोग कैसे करें? बीजों को खरीद करके समय आपको इतनी गुणवत्ता का विशेष ध्यान देना होगा जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना आए। आप इसको किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त बीज भंडार केंद्र से खरीद सकते हैं। बीज के अंडे जैसे सफ़ेद और दीर्घवर्तीय होते हैं।
बुआई का सही समय जो रहता है, नीम की बुआई का समय समय जो रहता है, पनीरी लगाना अवश्य याद रखने के लैम्प रखना जरूरी रहता है, और नीम का कलम दार को आसानी से लगाया जाता है। 12 से 13 महीने पुरानी नर्सरी

के पौधों की कलम को तैयार किया जाता है। सीधी बुवाई आसान होती है, इसे छिद्र रोपण छिटका विधि कतारों की बुवाई द्वारा लगाया जाता है और ये खेतों पर निर्भर करता है कि आपके खेत कैसे हैं। तो ये सारी बातें हैं और अधिक बात के लिए आज हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, तो उसमें हम जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने नीम की खेती कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटा भील 90.8 FM।

0: नहीं
1: आप लोग रेडियो आप ही बात है।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अभी आपने इस वीली गीत को सुना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस खास रिपोर्ट को हम सुनते हैं और जानते हैं नीम के कैसे हम खेती कर सकते हैं, नीम की खेती किस तरीके से कर सकते हैं और इसके आइए हम जानते हैं इस खास रिपोर्ट में।
4: कृषि प्रधान देश के लिए खाद आत्मा की तरह होती है और इस आत्मा की सलामती के लिए किसान हमेशा तत्परता के साथ कोशिश करता रहता है। किसान की आजीविका का साधन खेती है और खेती खुशहाल रहे इसके लिए इसमें इस्तेमाल होने वाला खाद सीधे तौर पर उसका साथी होता है। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि सरकार ने अब यूरिया जैसे महत्वपूर्ण खाद में 100% नीम के इस्तेमाल की बाध्यता कर दी है। सरकार की इस बेहतरीन पहल के बाद से नीम की मांग बढ़ गई है। देश की कई अग्रणी संस्थाएं जो पहले ही नीम पर शोध कर रही थी उन्होंने अब बढ़ चढ़ कर इसके शोध और प्रयोग के दायरे को बढ़ा दिया है। हर रोज नीम से जुड़ी नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी पिछले कई सालों से नीम को लेकर अलग अलग शोध कर रहा है। शोध के दौरान ही संस्था ने एक ऐसी नीम की वैरायटी की खोज की जो न सिर्फ कम समय में फल देने के लिए तैयार हो जाता है बल्कि करीब करीब हर परिस्थिति में इसको उगाया भी जा सकता है।
5: पहली बार फूल आते हैं लगभग जो सामान्य प्रजातियां हैं सामान्य ग्रोइंग नीम है औसत 5 साल के बाद आते हैं। 5 से शुरुआत होकर के 6, 7, 8 तक भी आते हैं। लेकिन हमारी जो विकसित प्रजातियां हैं ये प्रजातियां दूसरे साल प्लांटेशन के दूसरे साल से ही फल फूल आना शुरू करते हैं और तीसरी चौथी या फोर्थ ईयर का आता है तो सफिशियंट मात्रा में बीज हार्वेस्ट किया जा सकता है।
4: नीम पर नए नए शोध कर रहे वन वैज्ञानिकों का कहना है कि नीम की खेती से न सिर्फ किसानों की आय में इजाफा हो सकता है बल्कि मिट्टी का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वन वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में नीम की खेती किसानों की आय को कई गुना बढ़ा सकती है।
6: जहाँ नीम एक तरह से एक फंडरू ट्री था जिसका कोई वैल्यू नहीं था सवाए इसके कि हम कोई छाया ले लें कुछ निम्बोलिया FIM बना लें, आज ये एक कमर्शियल क्रॉप में तब्दील एक तरह से कन्वर्ट हो रही है और ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला है जहाँ वृक्ष और कृषि दोनों जो जो जो क्रॉप्स हैं फसलें हैं ये आपस में मिलके किसान को एक अतिरिक्त आय और यूं कहूं कि जो एडिड इनकम है उसकी तरफ खींच रहे हैं।
4: नीम की मांग लगातार बढ़ रही है। खाद बनाने वाली कंपनियां भी नीम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव मदद कर रही हैं। इसी कड़ी में देश की अग्रणी खाद बनाने वाली कंपनी इफको ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता कर नीम की नई वैरायटी के रिसर्च और खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुजरात के अहमदाबाद में कलोल में मौजूद इफको की खाद कंपनी ने कई एकड़ जमीन नीम की खेती के लिए FRI को दी है ताकि यहां इसकी खेती के साथ साथ रिसर्च भी किया जा सके।
7: पहले हम लोगों ने बहुत सारी जगह इसका प्रयास किया, विदेशों में भी कई जगह प्रयास किया गया लेकिन अंतिम निर्णय यह हुआ कि हम अपने देश के शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसका शोध करेंगे। वहां पे हम लोग गए, वहां के निदेशक से बात की और निदेशक से बात करने के बाद में ये निर्णय लिया गया कि पॉलीप्लाइडी विधि से जिसमें नीम में क्रोमोसोम्स के नंबर को बढ़ा करके इसके उत्पादन को तेज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इसकी ग्रोथ को तेज किया जा सकता है और उसमें नीम का तेल और एजरडिक्टिन की मात्रा दोनों बढ़ाई जा सकती है। तो ये शोध परियोजना यहाँ से शुरू होती है, फिर उस शोध परियोजना को हम लोगों ने वित्तीय मदद की और उसका अनुश्रवण, उनके लिए जो भी जरूरतें थी, उनके लिए जमीन की जरूरत थी, उनके लिए फंड्स की जरूरत थी, उनके लिए आदमी की जरूरत थी, जो भी उनकी आवश्यकताएं हुई उन आवश्यकताओं को पूरा करके ये 6 साल का अनवरत प्रयास हमारी इफ्को की टीम ने और एफआरआई के साइंटिस्ट ने, बहुत ही योग्य वैज्ञानिक है एफआरआई के, उन लोगों के प्रयास से 6 प्रजातियां रिलीज हुई हैं।
4: नीम को बढ़ावा देने के लिए आखिर इफ्को ने ये पहल क्यों की, इसकी वजह खुद कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर योगेंद्र कुमार बता रहे हैं।
7: 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हम अब देश में 100% नीम लेपित यूरिया का ही प्रयोग करेंगे, यानी जितना भी यूरिया बाजार में बिकता है, जो किसान भाई हमारे प्रयोग करते हैं, उसमें नीम के तेल की, नीम की एक लेपन किया जाएगा, नीम की एक कोट होगी। तो वो एक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी का था, उससे प्रेरित होकर हमारे प्रबंध निदेशक डॉक्टर वीएस अवस्थी साहब ने अपनी संस्था के में निर्णय लिया कि इतना नीम का तेल आएगा कहाँ से और इतना निमोली कहाँ से पैदा होगी, इसके उत्पादन को बढ़ाना है और इसके नीम में कोई ऐसी शोध करके प्रजाति हमको लानी है जिससे नीम का तेल ज्यादा मिले, वो जल्दी बढ़े, जो भी निमोली किसान भाई एकत्रित करते हैं उनको क्रय करने की एक सुनिश्चित व्यवस्था अगर हम कर लें, और उस सुनिश्चित व्यवस्था को क्रय करने के बाद में, क्रय करके उसका जो आगे का काम है, उसके प्रोसेसिंग का काम है, विधायन का काम है, उसे उत्पाद बनाने का काम है, इसको भी अगर हम बढ़ावा दें, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने में, उत्पादन को बढ़ाने में और साथ ही साथ जितने भी रसायन मुक्त खेती के लक्ष्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने बनाए हैं, उन सबको पूरा करने में एक बहुत बहुत ही लाभकारी कदम होगा इसके लिए।
0: इसमें पॉलीप्लांटिंग टेक्निक से एकदम टिश्यू कल्चर के माध्यम से नीम के पेड़ को ऐसा करें कि वे 3 या 5 साल के अंदर निमोली देने लगे, तो उसके कारण दो चीजें होंगी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और उसके कारण वातावरण में जो प्रदूषण है वो कम होगा, और दूसरा ये निमोली ये जल्दी आ जाएगी तो उसको 15 रुपए किलो पे हम खरीदते भी हैं और इस पे हम रिसर्च भी करा रहे हैं कि किस तरीके से नीम के और जो अच्छी चीजें हो सकती हैं, जैसे बायोपेस्टिसाइड बन सकते हैं नीम से, उसमें भी बायोपेस्टिसाइड के माध्यम से हम किसान को ज्यादा पैसे दे सकते हैं, उसकी आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर हमने फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट किया और उनको उनके साथ संपर्क स्थापित करके हमने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसको कि हमने टोटली फंड किया कि हमें नीम की वैरायटीज वो आप डेवलप करके दीजिए जो पॉलीप्लांटिंग तरीके से टिश्यू कल्चर के माध्यम से जल्दी से जिनका विकास हो और इसमें फूल और फल जल्दी आने लगे। तो इस दिशा में हमारे देश में तकरीबन 60 से ज्यादा वैरायटीज है नीम की।
3: रेडियो टांटा व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अपन ने वैरायटी को जाना कि नीम की कौन कौन सी वैरायटी है और खास तौर पर नीम की खेती किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में जाना। कार्यक्रम में और बहुत सारी जानकारी है नीम से जुड़ी यानी खेती से जुड़ी, लेकिन इसको सुनने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटा व्हील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात।
1: आप

പാട്ടാലോകെ വളയോ ബാലന പാട്ടാലോകെ മാളയോ ആടിന കൈദ മാസ

0: वन वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत और इनकी टीम पिछले कई सालों से वरिष्ठ वन वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में नीम पर लगातार शोध कर रही है। किसानों के लिए नीम की नई किस्म FRI ने जो विकसित की है, आखिर उसमें ऐसा क्या खास है, ये वो खुद बता रहे हैं।
1: इन प्रजातियों को तेल की मात्रा, अत्यधिक तेल की मात्रा सामान्य प्रजातियों से लगभग औसत 5-8% तेल ज्यादा, और अजाडिरिक्टिन इसका एक केमिकल मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, लिमोनाइड ग्रुप का होता है, वो सामान्य प्रजातियों में 3000 के आसपास, 2500 से 3000 ppm के आसपास ही पाया जाता है औसत, और हमारी इन 6 प्रजातियों में जिनमें मिनिमम 7000 का और मैक्सिमम 10000 ppm तक का है, इसका औसत 9000 आसपास है।
0: नीम की इस नई प्रजाति की खोज जब की गई तो सबसे पहले ये ध्यान में रखा गया कि अगर इसे खेत में लगाया जाता है तो फिर उस खेत में दूसरी फसल की पैदावार संभव नहीं है, जो किसानों के हित में नहीं था। ऐसे में ये सवाल उठता है कि फिर किसान इसकी खेती कैसे करें।
2: जो गरीब किसान है, जिसके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं है, उसकी आय में बढ़ोतरी करने का है, और उसका जो खेत होता है वो छोटा खेत होता है, 1 एकड़ का, 2 एकड़ की जमीन है। अब अगर वो अपने खेत की बाउंड्री पे नीम के पेड़ अगर लगा दें और उसमें जो निमोडिया जो बनती है उसको मार्केट में बेच दें, तो उससे उसकी कमाई का एक एक्स्ट्रा साधन उसको मिल सकता है, जिससे कि उसकी आय जो खेती से जो आ रही है वो तो रहेगी, इसके अलावा ये एक एडिशनल इनकम उसके लिए बन सकती है। तो यही उद्देश्य है कि किसी भी किसान को अपनी बाउंड्री पर नीम के पेड़ लगा दे और उससे वो आय कमा सके।
0: किसान नीम की खेती कहाँ करें, या यूं कहें कि नीम के पेड़ को किसान उपजाऊ जमीन में ना लगाकर कहाँ लगाएं? इसकी सही सही जानकारी तो मिल गई, लेकिन सवाल एक और बनता है कि आखिर किसान नीम की खेती क्यों करें?
1: लीफ से लेकर के तना, फल, तेल सभी की उपयोगिता विभिन्न प्रकार की दवाओं के रूप में भी किया जाता है। दैनिक जीवन में दातुन से लेकर के कॉस्मेटिक बनाना, टॉयलेटरीज बनाना, मेडिसिन्स बनाना, ये सारी उपयोगिता इसकी जो बहुत पहले से एस्टेब्लिश है, इसमें हमारा कोई नया नहीं है, लेकिन जो ये इसके लगाने का जो पर्पज है, अदर पर्पज को आप इनके बाद देखें कि सामान्य नीम अगर आप लगाते हो तो उससे ज्यादा इसमें उत्पादन मिलेगा। आप नीम के अच्छी प्रजातियों को लगा करके ज्यादा तेल की मात्रा के आधार पर उसको मार्केटिंग कर सकते हैं। अधिक उपज के बाद बस शीघ्र ही इसमें फल आएंगे आपके साथ में। क्रॉप के साथ कल्टीवेशन का किया जा सकता है, जो लेसर उपयोगी जमीन है उस जमीन पर इसका प्लांटेशन करके लाभ कमाया जा सकता है।
3: नीम एक दिन इकोनॉमिक एंड वाइबल मॉडल होगा एग्रीकल्चर के लिए, और जो कि आज भी है, केवल हमको उसके गुणों को पहचानने की आवश्यकता है, उसकी कीमत को महसूस करने की आवश्यकता है और उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।
4: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी अपन ने गुणों को किस तरीके से पहचान कर सकते हैं हमारे किसान साथी, उस पर हमारे विशेषज्ञ की इस खास बातचीत को सुना कार्यक्रम में। और भी बहुत सारी बात जीत है ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने के लिए, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके RJ मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटा भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: एफआरआई की टीम नीम की इस प्रजाति पर पिछले कई सालों से काम कर रही थी। लगातार रिसर्च का काम चल रहा था, लेकिन एफआरआई की रिसर्च को मजबूती मिली साल 2015 के बाद। और वो कैसे, ये खुद बता रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत।
1: भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद देहरादून के विभिन्न संस्थानों जैसे जोधपुर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून और अन्य संस्थाओं ने मिलकर इसमें कार्य तो 1992-93 में ही प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वो कार्य अनुसंधान कार्य लगातार नहीं चला, छुटपुट हुआ, आइसोलेटेड पार्ट्स में हुआ। इसके बाद में हमने 2015 में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने इफको के साथ मिलकर के एक अनुसंधान कार्यक्रम नीम सुधार अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की।

0: आरोग्यण।
1: एफआरआई ने जिस नीम की नई प्रजाति की खोज की है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और ये बाकी नीम की प्रजाति से कैसे अलग है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं संस्था के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार। डॉक्टर अशोक भी पिछले कई सालों से इस नई प्रजाति पर शोध कर रही टीम का ही हिस्सा हैं।
2: जो हमारी नई प्रजाति हमने जो डेवलप की है वो 2 से 3 साल में फ्लावरिंग करना चालू करती है। दूसरा इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, नीम में करीब जो आम नीम है उसमें 25 से 30% के आसपास ऑयल मिलता है, लेकिन जो हमारी प्रजातियां हैं इनमें करीब करीब 38 से लेके और 41% तक जो है नीम ऑयल पाया जाता है। और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो आस्पेक्ट है, इसमें एक अजैगेटिव कंटेंट होता है। ये कंटेंट नीम में आम नीम में करीब 2500 से 3000 ppm के आसपास होता है, जबकि जो ये हमारी उन्नत जो किस्में हैं इनमें 8000 से लेकर के और 10000 के आसपास तक ये वेरी करता है। सो ये तीन जो पैरामीटर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और इन्हीं के बेस पे हम लोगों ने ये वैरायटी जो है डेवलप की है।

0: डॉक्टर अशोक ने नई प्रजाति के बारे में तो बताया, लेकिन किसानों को ये जानना भी जरूरी है कि अगर किसान इसकी खेती करें तो उसे क्या क्या करने की जरूरत पड़ेगी, नीम की खेती में किसानों को कितना खर्च आएगा। अगले साल की शुरुआत से किसानों के लिए ये बाजार में उपलब्ध होगा।
1: मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी किसी इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। उनको अच्छी किस्म के पौधे अभी तो ये हमने निजात किए हैं, धीरे धीरे नर्सरीज में जाएंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इन पौधों को खरीद के सिर्फ लगाना है और इस तरह से लगाना है ताकि जो उनकी जो एक एक एक तरह से जमीन के किनारे पे है या फिर बैकयार्ड में उसमें लगाना है ताकि कुछ नीम के पेड़ अगर वहां रहेंगे तो वो 2 से 3 साल बाद में फिर वो प्रोडक्शन करना चालू करेंगे, उनमें बीज का उत्पादन होगा जिसको सेल करके एक अच्छी आमदनी उसमें मिल सकती है। और मैं नहीं समझता हूं कि इसमें किसान को किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी।
0: नीम की इस प्रजाति को खोजने में कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कई सालों से लगातार इस पर काम कर रहे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि देश के कई हिस्सों में इसको लेकर शोध किए गए, तब जाकर उनकी टीम इस प्रजाति को खोज पाई।
1: ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, पूरे देश से अच्छा जर्मप्लाज्म इकट्ठा करना, उस जर्मप्लाज्म को मेंटेन करना, और सबसे बड़ा जो इसमें चैलेंज है, मैं इसको बिल्कुल स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा कि नीम के बीज को आप केवल 15 से 20 दिन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाद में उसका जो जर्मिनेशन का पावर है वो खत्म हो जाता है, वायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इन 15 दिन में पूरे बीज को लाना, उसको रिसर्च स्टेशन में इकट्ठा करना, उसके बाद उसकी बुआई करना, उसको मेंटेन करना और आगे बढ़ाना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा काम था। इसके बाद जो इस प्रोसेस में है कि हमको अलग अलग रीजन्स में इन सभी जो हमने जर्मप्लाज्म इकट्ठा किया है उसको इवेल्युएट करना होता है, उसमें ये देखना होता है कि जो आनुवंशिक जो इसके गुण है और जिस पर्यावरण में जिस वातावरण में ये उग रहा है उसमें आपस में इनका किस तरह का इंटरेक्शन है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
0: नीम की इस नई प्रजाति की खोज में टिश्यू कल्चर का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। FRI के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अजय ठाकुर बता रहे हैं कैसे टिश्यू कल्चर ने इस पे मदद की।
2: जब हमने आनुवंशिक सुधार के बाद जो पौधे बनाए उसका परफॉर्मेंस देखा तो हमने क्या किया कि क्लोनल मेथड बोलते हैं, क्लोनल मेथड में हम किसी चीज की हूबहू कॉपी तैयार करते हैं। तो टिश्यू कल्चर में एक बहुत बड़ी सुविधा है कि बड़े पैमाने पे कम समय में हूबहू कॉपी तैयार करेंगे और जब वो पौधा बाहर निकलता है तो वो बीमारी फ्री होता है। जो भी तेल निकलने वाले पौधे होते हैं और वो इमारती मतलब लकड़ी वाले पौधे होते हैं उनमें कुछ टिश्यू कल्चर का बहुत चैलेंज होता है। पहला चैलेंज ये होता है कि वुडी हम लोग बोलते हैं ना कि जो काष्ठ प्रवृत्ति के होते हैं तो उनमें बहुत ही मैच्योर पौधे होते हैं, मतलब बुढ़ा गए हो सकते हैं, पुराने हो गए होते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि उसको थोड़ा पुनर्जीवित करना। तो हम अपने मेथड के द्वारा उसमें बहुत तरह की जो है हम PGR बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हार्मोन होता है जैसे हमारे ह्यूमन में भी होता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है इंसुलिन है तो वो पूरा हमारा शर्करा जो शुगर का है उसका डिसाइड करता है, उसी तरह प्लांट के कुछ जो है हार्मोन होते हैं जैसे कि ऑक्सिन है और साइटोकाइनिन है, उसके विधि द्वारा हम उसको पुनर्जीवित करते हैं। और पुनर्जीवित करके पहले तो हम एक बीमारी फ्री पौधे का एक प्रारूप तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं कि पहला तो हम प्रारूप तैयार करेंगे कार्बन कॉपी से पहले। जब हमको वैसा मिल जाता है जिसमें कोई भी बीमारी नहीं होता है तो एक शूट, एक जो उसका तना है या एक ब्रांच जो निकलता है या एक छोटा पौधा निकलता है उससे हम कई पौधे बनाते हैं।
0: हालांकि टिश्यू कल्चर की तकनीक पर काम करने के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, साथ ही साथ इस प्रोसेस के दौरान कई बार निराशा भी हाथ लगी।

0: लिमोनॉइड श्रेणी के जो रासायनिक घटक होते हैं उनका जो है कीटनाशक गुण बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए इस तेल का उपयोग जो है कीटनाशक के रूप में किया जाता है। जो घटक इसके एंटी फंगल घटक खासकर जो है उनका उपयोग जो है चर्म रोग में भी किया जाता है। तो इस ऑयल इस जो ये जो तेल है नीम का तेल जो है ये औषधीय और कीटनाशक दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो यौगिक है उसका नाम है एजाडेरिक्टिन। एजाडेरिक्टिन के भी कई श्रेणियां हैं जिसमें मूल रूप से एजाडेरिक्टिन ए जो है ज्यादा सक्रिय माना गया है। ए से लेके एस तक के इसके वेरिएंट जो है ज्ञात हैं। ए जो है एजाडेरिक्टिन ए ये जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: नीम का इस्तेमाल आयुर्वेदिक औषधियों में सदियों से होता आया है। नीम का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है।
2: नीम के औषधीय गुणों की बात करें तो स्किन के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं यानी त्वचा की जितनी बीमारियां हैं उन सभी में लगभग नीम बहुत अच्छा काम करता है। हम एलर्जी की कंडीशंस लेते हैं, यदि हम इस तरह की बॉयल्स हो जाते हैं, फुंसियां हो जाती हैं जो गर्मियों में भी हो जाती हैं और इन्फेक्टेड फुंसियां भी होती हैं, बॉयल्स बोलते हैं जिनको, या नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं जो कि हील नहीं हो पा रहे, खासतौर से डायबिटिक पेशेंट्स को, यहां तक कि नीम जैसे कि डायबिटीज में भी बहुत उपयोगी है, शुगर को कम करने में भी कारगर है, और शुगर के पेशेंट्स को अक्सर देखा गया है कि स्किन डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं और उनको अगर कोई चोट लग जाती है, अल्सर हो जाते हैं तो वो नॉन हीलिंग वूंड्स या नॉन हीलिंग अल्सर्स कहलाते हैं, वहां पर भी नीम बहुत अच्छा काम करता है। इवन हम ऐसा भी एडवाइस करते हैं कि जो चोट आपकी ना भर रही हो उसमें नीम के पत्तों का काढ़ा बनाकर उसको वॉश करें और फिर बैंडेज या जो भी आपको चिकित्सा बताई गई है उसे करें।
3: नीम एक ऐसा वृक्ष है जिसको हम कल्प वृक्ष की संज्ञा दे सकते हैं। इस धरती के ऊपर जितनी भी तरीके की वनस्पतियों में रोग या कीड़े लगते हैं, जितने हमारे जानवरों में रोग या कीड़े लगते हैं, जितने मनुष्यों में मानव जाति में जितने रोग और कीड़े हैं, उन सबको मारने का, उन सबको नष्ट करने का, उन सबका समन करने का एक कोई उपाय है, वो नीम है।
1: नीम की ये नई प्रजाति किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार और देश की अग्रणी संस्थाएं जिस तरह से नीम की खेती और उसके अलग अलग उत्पाद को प्रोत्साहित कर रही हैं, उससे आने वाले दिनों में नीम किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकेगा।
4: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना हमने, जाना किस तरीके से नीम के खास गुण होते हैं और किस तरह से औषधि पौधे के रूप में इसको देखा जाता है और किस तरीके से इसको बाजार में बेचा जाता है और इसमें कितने सारे खास गुण रहते हैं इसके बारे में जानकारी को जाना। हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अब समझ गए होंगे कि हम अपनी एक नई खेती को कर सकते हैं, नई चीज है, नए खेती है, इसको किस तरीके से कर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया था कि इस तरीके की खेती हमारे किसान साथियों को औषधि खेती करना चाहिए जिससे आने वाले समय में हमारे किसान साथियों की आय में बढ़ोतरी हो। इसी के साथ साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से बीली गीत को। नमस्कार।
5: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

8 FM આપણું રેડિયો આપણી વાતે. ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM. आपनो रेडियो आपड़ी बातें. रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अर्जे मनीष कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं. और किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और तैयारी कर रहे होंगे आगामी फसल किस तरीके से करें. और खेतों की तैयारी के साथ साथ हमारे किसान साथी अब तो समझ ही गए होंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से यानी खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक वो छोटी छोटी बात को हम लेकर आते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहती है. खासतौर पर देखा जा रहा है कि पथरीला इलाका है और झाबुआ जिले को देखा जाए तो किसान साथियों के पास सीमित संसाधन, सीमित जगह होने के कारण किसान साथी अच्छी तरीके से खेती नहीं कर सकते हैं. लेकिन किसान साथियों, यदि आप वैज्ञानिक विधि से या फिर आपको लगता है कि हमें छोटे ही रकबे में अच्छी फसलों को करना है तो आप संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी या फिर वैज्ञानिक की सलाह लेकर अपने खेतों को अच्छा हरा भरा बना सकते हैं और साथ में अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं. क्योंकि हम उन छोटी छोटी बातों को लेकर आते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होती है. आज के हमारे इस खास कार्यक्रम बातें खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम नीम की खेती, चूंकि नीम की खेती भारतीय संस्कृति में नीम को एक विशेष महत्व मिलता है और नीम को यहाँ बहुत सी मान्यताओं के साथ जोड़ा भी गया है. नीम की गुणवाणी औषधि का दर्जा भी दिया गया है और नीम की खेती भी इतनी लाभकारी भी साबित होती है जिसमें मौजूद औषधीय गुण इतने गुणकारी और मूल्यवान हैं जिनकी इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है. भारत में कई स्थानों पर इसे पूजा भी जाता है और नीम का उपयोग दवाइयों के तौर पर किया जाता है. नीम से निर्मित तेल और निवोलियों से एकत्रित करके इसे बाजार में अच्छे भाव में बेचा जाता है. यह मैली ऐसी कुल का पौधा है. इसको मुख्य तह नाम दिया जाना जाता है. इसमें नीम पेड़, मोरगासा पेड़, भारतीय बकाहन, सफेद देवदार, स्वर्ण पेड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है. साथियों, नीम के होने वाले फायदे के बारे में भी थोड़ा आपको बता देना चाहते हैं कि घाव पर असरदार भी होता है नीम का पौधा, क्योंकि नीम में उपस्थित एंटीबायोटिक गुण जो रहते हैं अत्यंत लाभकारी साबित होते हैं. इसके पत्तों को पीसकर घाव पर लगाकर घाव को भराया जाता है. नीम की दातुन भी, क्योंकि आसपास नीम की दातुन नहीं मिलती है, शहरों में खासतौर पर ये नहीं मिलती है और शहर के लोग खास तौर पर इसको तलाशते हैं कि नीम की दातुन कहाँ मिले. और कोविड काल में अगर देखा जाए तो इसका तो जवाब ही नहीं है. वास्तव में नीम की निमोली और नीम की दातुन, नीम की कोंप को लोग देख रहे थे. कहाँ पर नीम का पौधा है वहां पर जाकर ताजी ताजी हवा ले रहे थे, नीम की कोंप खा रहे थे, जिससे हमारे खून भी साफ होता है. और दातुन की अगर बात है, रोजाना नीम का दातुन करने से दांतों में मजबूती बनी रहती है और दांतों में किसी प्रकार का रोग भी नहीं लगता है. साथ में बालों के लिए भी नीम का इस्तेमाल किया जाता है. नीम के पत्तों को पीसकर यदि बालों में लगाया जाता है तो बहुत लाभकारी साबित होता है. नीम का काढ़ा, आपको पता ही होगा कि नीम के पत्तों को उबालकर यदि काढ़ा बनाकर हम रोजाना एक गिलास पिया जाए तो उसके शरीर में अत्यंत लाभकारी होता है. नीम के पानी से स्नान करना, नीम के पत्तों को मिलाकर यदि पानी में डालकर स्नान किया जाए तो इसके शरीर साफ होता है और बहुत से फायदे भी हमें मिलते हैं. खासतौर में मलेरिया में असरदार होता है. नीम मलेरिया में फैलाने वाले मच्छरों को दूर रखने में अत्यंत सहायक है. जिस वातावरण में नीम के पेड़ रहते हैं वहां पर मलेरिया नहीं फैलता है. नीम के पत्तों को जलाकर रात को धुआं करके मच्छर नष्ट हो जाते हैं और विषम ज्वर, जिसे मलेरिया कहा जाता है, उससे भी बचा जा सकता है. बिच्छू को काटने में असरदार होता है, क्योंकि बिच्छू को काटने पर नीम के पत्तों को मसल कर काटे गए स्थान पर लगाकर यदि लगाते हैं तो जलन नहीं होती है और जहर का भी असर कम होता है. उपयुक्त जलवायु के लिए, क्योंकि नीम की खेती करने के लिए आपको तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. वर्षा 400 से 1200 मिलीमीटर होनी चाहिए. इसको उगाने के लिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है. इसको आप सभी प्रकार की मिट्टी में कैसे भी और सभी प्रकार

भूमि जैसे शुष्क पथरीली इलाका हो, रेतीला इलाका हो, खासतौर पर अगर देखा जाए झाबुआ जिले को देखा जाए तो पथरीला इलाका है, तो यहाँ पर आसान तरीके से इसको उगाया जा सकता है। गहरी चिकनी मिट्टी हो वहां पर भी उगाया जा सकता है, भूमि में आसानी से इसे उगाया जा सकता है। आरंभिक अवस्था में नीम के पौधों को पाले का खतरा बना रहता है, अतः वृक्षारोपण के बाद एक वर्ष तक पाले से बचाना आवश्यक होता है। तत्पश्चात पाला सहन कर सकने में यह सक्षम होकर तैयार होता है। कैसे तैयार करें? वैसे तो नीम सभी तरह की मिट्टी में उगाया जाता है, फिर भी खेत को अनेकों बार जोतकर इसमें कंकड़ पत्थर अलग करके इसको खेती लायक बनाया जाता है। और बीज का उपयोग कैसे करें? बीजों को खरीद करके समय आपको इतनी गुणवत्ता का विशेष ध्यान देना होगा जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना आए। आप इसको किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त बीज भंडार केंद्र से खरीद सकते हैं। बीज के अंडे जैसे सफेद और दीर्घवृत्तीय होते हैं। बुआई का सही समय जो रहता है, नीम की बुआई का समय जो रहता है, पनीरी लगाना अवश्य याद रखने के लाइम रखना जरूरी रहता है। और नीम का कलम दार को आसानी से लगाया जाता है। 12 से 13 महीने पुरानी नर्सरी के पौधों के कलम को तैयार किया जाता है। सीधी बुआई आसान होती है, इसे छिद्र रोपण छिटका विधि कतारों की बुआई द्वारा लगाया जाता है। और यह खेतों पर निर्भर करता है कि आपके खेत कैसे हैं। तो ये सारी बातें हैं और अधिक बात के लिए आज हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, तो उसमें हम जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने नीम की खेती कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से फीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटा व्हील 90.8 FM। आप लोग रेडियो आपने

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
1: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
0: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। और अभी आपने इस वीली गीत को सुना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस खास रिपोर्ट को हम सुनते हैं और जानते हैं नीम के कैसे हम खेती कर सकते हैं, नीम की खेती किस तरीके से कर सकते हैं, और इसके आइए हम जानते हैं इस खास रिपोर्ट में।
2: कृषि प्रधान देश के लिए खाद आत्मा की तरह होती है, और इस आत्मा की सलामती के लिए किसान हमेशा तत्परता के साथ कोशिश करता रहता है। किसान की आजीविका का साधन खेती है, और खेती खुशहाल रहे इसके लिए इसमें इस्तेमाल होने वाला खाद सीधे तौर पर उसका साथी होता है। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि सरकार ने अब यूरिया जैसे महत्वपूर्ण खाद में 100% नीम के इस्तेमाल की बाध्यता कर दी है। सरकार की इस बेहतरीन पहल के बाद से नीम की मांग बढ़ गई है। देश की कई अग्रणी संस्थाएं जो पहले ही नीम पर शोध कर रही थी, उन्होंने अब बढ़ चढ़ कर इसके शोध और प्रयोग के दायरे को बढ़ा दिया है। हर रोज नीम से जुड़ी नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी पिछले कई सालों से नीम को लेकर अलग अलग शोध कर रहा है। शोध के दौरान ही संस्था ने एक ऐसी नीम की वैरायटी की खोज की जो न सिर्फ कम समय में फल देने के लिए तैयार हो जाता है, बल्कि करीब करीब हर परिस्थिति में इसको उगाया भी जा सकता है।
3: पहली बार फूल आते हैं, लगभग जो सामान्य प्रजातियां हैं सामान्य ग्रोइंग नीम है, औसत 5 साल के बाद आते हैं। 5 से शुरुआत होकर के 6, 7, 8 तक भी आते हैं। लेकिन हमारी जो विकसित प्रजातियां हैं, ये प्रजातियां दूसरे साल प्लांटेशन के दूसरे साल से ही फूल आना शुरू करते हैं, और तीसरी चौथी फोर्थ ईयर का आता है तो सफिशियंट मात्रा में बीज हार्वेस्ट किया जा सकता है।
2: नीम पर नए नए शोध कर रहे वन वैज्ञानिकों का कहना है कि नीम की खेती से न सिर्फ किसानों की आय में इजाफा हो सकता है, बल्कि मिट्टी का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वन वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में नीम की खेती किसानों की आय को कई गुना बढ़ा सकती है।
4: जहाँ नीम एक तरह से एक फंडरू एक ट्री था जिसका कोई वैल्यू नहीं था, सवाए इसके कि हम कोई छाया ले लें, कुछ निम्बोलिया FIM बना लें, आज ये एक कमर्शियल क्रॉप में तब्दील एक तरह से कन्वर्ट हो रही है। और ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है, जहाँ वृक्ष और कृषि दोनों जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, ये आपस में मिलके किसान को एक अतिरिक्त आय और यूं कहूं कि जो एडिड इनकम है उसकी तरफ खींच रहे हैं।
2: नीम की मांग लगातार बढ़ रही है। खाद बनाने वाली कंपनियां भी नीम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव मदद कर रही हैं। इसी कड़ी में देश की अग्रणी खाद बनाने वाली कंपनी इफको ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता कर नीम की नई वैरायटी के रिसर्च और खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुजरात के अहमदाबाद में कलोल में मौजूद इफको की खाद कंपनी ने कई एकड़ जमीन नीम की खेती के लिए FRI को दी है, ताकि यहां इसकी खेती के साथ साथ रिसर्च भी किया जा सके।
5: पहले हम लोगों ने बहुत सारी जगह इसका प्रयास किया, विदेशों में भी कई जगह प्रयास किया गया, लेकिन अंतिम निर्णय यह हुआ कि हम अपने देश के शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसका शोध करेंगे। वहां पे हम लोग गए, वहां के निदेशक से बात की, और निदेशक से बात करने के बाद में ये निर्णय लिया गया कि पॉलीप्लाइडी विधि से, जिसमें नीम में क्रोमोसोम्स के नंबर को बढ़ा करके इसके उत्पादन को तेज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इसकी ग्रोथ को तेज किया जा सकता है, और इसमें नीम का तेल और एजरडिक्टिन की मात्रा दोनों बढ़ाई जा सकती है। तो ये शोध परियोजना यहां से शुरू होती है, फिर उस शोध परियोजना को हम लोगों ने वित्तीय मदद की, और उसका अनुश्रवण उनके लिए जो भी जरूरतें थी, उनके लिए जमीन की जरूरत थी, उनके लिए फंड्स की जरूरत थी, उनके लिए आदमी की जरूरत थी, जो भी उनकी आवश्यकताएं हुई उन आवश्यकताओं को पूरा करके ये 6 साल का अनवरत प्रयास हमारी इफ्को की टीम ने और एफआरआई के साइंटिस्ट ने, बहुत ही योग्य वैज्ञानिक है एफआरआई के, उन लोगों के प्रयास से 6 प्रजातियां रिलीज हुई हैं।
2: नीम को बढ़ावा देने के लिए आखिर इफ्को ने ये पहल क्यों की, इसकी वजह खुद कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर योगेंद्र कुमार बता रहे हैं।
5: 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हम अब देश में 100% नीम लेपित यूरिया का ही प्रयोग करेंगे, यानी जितना भी यूरिया बाजार में बिकता है जो किसान भाई हमारे प्रयोग करते हैं उसमें नीम के तेल की, नीम की एक लेपन किया जाएगा, नीम की एक कोट होगी। तो वो एक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी का था, उससे प्रेरित होकर हमारे प्रबंध निदेशक डॉक्टर वी एस अवस्थी साहब ने अपनी संस्था के में निर्णय लिया कि इतना नीम का तेल आएगा कहाँ से और इतना निमोली कहाँ से पैदा होगी, इसके उत्पादन को बढ़ाना है और इसके नीम में कोई ऐसी शोध करके प्रजाति हमको लानी है जिससे नीम का तेल ज्यादा मिले, वो जल्दी बढ़े, जो भी निमोली किसान भाई एकत्रित करते हैं उनको क्रय करने की एक सुनिश्चित व्यवस्था अगर हम कर लें और उस सुनिश्चित व्यवस्था को क्रय करने के बाद में क्रय करके उसका जो आगे का काम है, उसके प्रोसेसिंग का काम है, विधायन का काम है, उसे उत्पाद बनाने का काम है, इसको भी अगर हम बढ़ावा दें तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने में, उत्पादन को बढ़ाने में और साथ ही साथ जितने भी रसायन मुक्त खेती के लक्ष्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने बनाए हैं, उन सबको पूरा करने में एक बहुत बहुत ही लाभकारी कदम होगा इसके लिए।
6: इसमें पॉडी प्लांटिंग टेक्निक से एकदम टिश्यू कल्चर के माध्यम से नीम के पेड़ को ऐसा करें कि वे 3 या 5 साल के अंदर निमोली देने लगे, तो उसके कारण दो चीजें होंगी, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और उसके कारण वातावरण में जो प्रदूषण है वो कम होगा, और दूसरा ये निमोली ये जल्दी आ जाएगी तो उसको 15 रुपए किलो पे हम खरीदते भी हैं और इस पे हम रिसर्च भी करा रहे हैं कि किस तरीके से नीम के और जो अच्छी चीजें हो सकती हैं, जैसे बायोपेस्टिसाइड बन सकते हैं नीम से, उसमें बायोपेस्टिसाइड के माध्यम से हम किसान को ज्यादा पैसे दे सकते हैं, उसकी आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर हमने फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट किया और उनको उनके साथ संपर्क स्थापित करके

0: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। आज के कलाकार में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है और जैसा कि हम सब जानते हैं आज के कलाकार मंच है नए गायकों का, नए गायिकाओं का, नए टैलेंट का। और आज हमारे साथ जो टैलेंट हैं उनका नाम है रविका जी। बाकी की बातचीत हम रविका जी से करेंगे। रविका जी अपने बारे में बताएंगी और उनके गीत हम सुनेंगे। रविका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। वेलकम टू आवर प्रोग्राम।
1: थैंक यू सो मच। मैं रविका एक गायिका और संगीत प्रेमी हूँ और मैं अपनी सभी संगीत के जरिए लोगों को, दिलों को जुड़ने की कोशिश करती हूँ और अपने शो जज्बात के जरिए भावनाओं को सुरों में पिरोने का प्रयास करती हूँ।
0: अमेजिंग, ब्यूटीफुल, बहुत खूब। तो रविका जी हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दें, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं?
1: बेसिकली आई एम फ्रॉम मुंबई, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से ही हूँ मैं और बचपन में संगीत सीखा नहीं, शौक रहा हमेशा से
0: जी।
1: लेकिन तब थोड़ा बहुत गाया, शादी जल्दी हो गई, फैमिली जल्दी हो गई, लेकिन ड्यूरिंग कोविड मैंने फिर से शुरुआत करी एंड उसके बाद मैंने अपने कुछ पंजाबी एल्बम्स लॉन्च किए हैं और एवरी वेनेसडे आई हैव अ शो कॉल्ड जज्बात ऑन माय फेसबुक पेज जहां पर मैं 3 घंटे लोगों की पसंद के गाने गाती हूँ। साथ ही साथ मैं अभी कुछ और एल्बम्स में काम कर रही हूँ। सो दिस इज माय लाइफ अबाउट म्यूजिक।
0: वाओ, अमेजिंग। दोस्तों आपने सुना रविका जी फेसबुक पेज पर, उनके ही फेसबुक पेज पर 3 घंटे के लिए रियाज करती हैं, लोगों के जो फरमाइशें होती हैं वो सॉन्ग्स प्ले करती हैं, गाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को रविका जी के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत खूब। चलिए रविका जी, आपके बचपन में चलते हैं। आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: बचपन में बहुत से सपने थे। शुरुआत से गाने का बहुत शौक था, एक्टिंग का बहुत शौक था, और सबसे ज्यादा डांसिंग का बहुत शौक था। ये सभी कुछ करना चाहती थी, बहुत कुछ सपने लेकर जिंदगी में, स्कूल में, और परफॉर्मेंस करी, बहुत सारे अवार्ड स्कूल में भी जीते। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन के सपने शादी तक आकर फिर कहीं ना कहीं थम जाते हैं।
0: ओके। एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम रविका जी, लेकिन मैं इस बात को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि बचपन के जो सपने थे वो आपने हमेशा अपने जहन में संजो के रखे, और जिस वक्त भी आपको मौका मिला आपने अपनी प्रतिभा को एंजॉय करना शुरू किया, आपने गाना शुरू किया। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया बात। चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत रविका जी के आवाज में।

0: रविका जी, जैसे हम लोग अभी बचपन में ही हैं, आपके फेवरेट फेवरेट टीचर कौन थे और क्यों?
1: मेरी फेवरेट टीचर मेरी केमिस्ट्री टीचर थी, मिसेस मेनन। वो इसलिए फेवरेट थी कि मुझे उनके बात करने का तरीका, सबसे ज्यादा उनका साड़ी पहनने का तरीका, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, और मैं हमेशा सोचती थी कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। तो ना ही सिर्फ उनकी पढ़ाई, पर सिर्फ उनको देख देख कर आई गॉट सो इंस्पायर्ड बाय साड़ीज कि आज तक साड़ी मेरा पहला ही प्यार है। और कभी भी अगर मुझसे कोई फेवरेट आउटफिट पूछे तो अभी भी मैं वही टीचर को याद करके साड़ी ही बोलती हूँ।
0: क्या बात है, दैट्स सो क्यूट दैट यू प्रैक्टिकली लाइक्ड वन एस्पेक्ट ऑफ योर टीचर।
1: यस या
0: तो दोस्तों चलिए अगला गीत हम प्ले करते हैं रविका जी की ही आवाज में, जो मैं उन्हीं के टीचर को डेडिकेट करना चाहूंगा।
1: थैंक यू।

0: बहुत खूब रविका जी, आपको और थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू, आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौन से तीन शब्द हैं, वर्ड्स हैं, जो आपको सबसे अच्छी तरह से बयान करते हैं, परिभाषित करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं?
1: वाओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. सबसे ज्यादा वर्ड जो मुझे डिस्क्राइब करेगा वो है संगीत, म्यूजिक, गाना सबसे ज्यादा, क्योंकि आई ड्रिंक, स्लीप, ईट ओनली म्यूजिक. हर वक्त मुझे मतलब मैं गाने से ही रिलेटेड अपनी जिंदगी में किसी भी सिचुएशन में संगीत मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है. उससे भी कहीं गुना ज्यादा है भावनाएं, इमोशंस, लॉट्स ऑफ इमोशंस. इसलिए जो मैंने अपना ऑनलाइन शो भी रखा है उसका नाम भी जज्बात रखा है. एंड आई डू 30 minutes टॉक एवरी डे ऑन फेसबुक, उसका नाम मैंने दिल से रखा है. तो दिस इटसेल्फ शोज कि आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन एंड एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू इमोशंस, भावनाएं, जहां पर हम अपने इमोशंस को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ सामने वाले का भी सुन सकते हैं, मीन्स अ लॉट टू मी. एंड द थर्ड यू कैन से इज समर्पण. गेट समर्पित टू वॉट एवर यू आर डूइंग, बी यू, आप 100% हर उस चीज में समर्पित रहो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो आपकी जिंदगी हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपका पैशन क्यों ना हो, समर्पित होना बहुत जरूरी है. नेवर बी कि आई एम द बेस्ट और बस इसके आगे कुछ नहीं. अपने आप को समर्पित कर दीजिए खुद ब खुद जिंदगी में सब कुछ, एवरीथिंग. सो संगीत, भावनाएं और समर्पण, ये तीन चीजें बहुत जरूरी है.
0: वाह, क्या कहा है साहब, क्या कहा है, बहुत खूब. संगीत,
1: थैंक यू,
0: समर्पण और भावनाएं. जाहिर से बात है, भावनाएं हमें, हम इंसानों को जानवरों से इसीलिए अलग करती हैं कि हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. भावनाएं बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं हमारी जिंदगी के लिए. आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा.
1: थैंक यू.
0: तो चलिए दोस्तों, एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं रविका जी की ही आवाज में.

0: रविका जी, चलिए लेट्स हैव सम फन आराम से. आपने अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार खाना बनाने की कोई भी चीज क्या बनाई थी और वो कैसी बनी थी?
1: ओके, द फर्स्ट वाज ऑब्वियसली दाल चावल, बिकॉज उससे ज्यादा इजी कोई चीज होती नहीं है. एंड इमीडिएटली उसी दिन मैंने मैगी भी बनाई थी.
0: Okay.
1: तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैंने मैगी को इतना ज्यादा क्यों पका दिया, या पानी ज्यादा डाल दिया, या वो 2 मिनट्स के बदले में पता नहीं कितने मिनट उसको पका दिया. एंड द दाल वॉज प्रिटी गुड, क्योंकि मम्मा ने तड़का लगाना अच्छे से सिखाया था. दैट वॉज प्रिटी सिंपल. सो जितना मुझे याद है आई थिंक यही था.
0: सिंपल इज ऑलवेज ऑलवेज ब्यूटिफुल. दाल चावल वैसे भी बहुत बहुत सारे लोगों की, रादर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन की पसंद है. लेकिन yes. पहली बार फिर भी उसे सक्सेसफुली बना लेना अपने आप में एक अकॉम्प्लिशमेंट होता ही है.
1: बिकॉज डर लगता है ना कि पता नहीं ज्यादा पड़ रहा है या पानी ज्यादा पड़ रहा है.
0: करेक्ट करेक्ट. और जहां तक मैगी की बात करें तो मैगी तो हमारे देश का सबसे फेवरेट फूड काइंड ऑफ फूड है. मतलब खास करके जो हॉस्टल्स में रहते हैं बच्चे, उनके लिए तो वो कहते हैं ना, वो जन्म बूटी है, जीवन बूटी है, कि उनके लिए तो एक वरदान की तरह है वो.
1: And it is tasty.
0: Absolutely. तो दोस्तों आपने सुना, आइए फिर एक गीत भी हो जाए रविका जी की आवाज में.

0: बहुत हो, बहुत ही प्यारी गायकी। रविका जी, थोड़ा सा और बेहतर जानने के लिए आपको आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी हॉबीज क्या हैं? गाना गाने के अलावा बताइएगा।
1: ओके, गाने के अलावा मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है। आई लव टू ड्राइव और मैं घंटों तक ड्राइव कर सकती हूँ बिना थके, बिकॉज सचमुच मुझे बहुत मजा आता है। ऑब्वियसली उसमें म्यूजिक साथ में लगी होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आई लाइक टू ट्रैवल, मुझे ट्रैवल करना बहुत बहुत पसंद है। मतलब आप जितना चाहे मुझे घुमा लीजिए, मैं कभी भी बोर नहीं होती। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई लव टू मेक गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जो मेरी वेवलेंथ के साथ मैच हो सके, फ्रेंड्स जिनके साथ में, मतलब मैं बहुत जल्दी जल्दी जल्दी दोस्त बना लेती हूँ जिंदगी में। सो आई थिंक दीज आर माई हॉबीज।
0: ऑलराइट, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी ड्राइविंग हॉबी आपके ट्रैवल की हॉबी के साथ मैच करती है, तो इट्स अ सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट व्हिच एक्चुअली टेक्स यू टू प्लेसेस, और बहुत बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी होती है, तो थर्ड ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है हॉबी की आपको बहुत बहुत सारे लोगों से मिलना पसंद है।
1: yes,
0: दोस्ती करना पसंद है। अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर हो जाए एक और प्यारा सा गीत रविका जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब रविका जी, कई बार ऐसा होता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चलते चलाते कुछ ऐसे लोगों से इंटरेक्शन हो जाता है जो जिनके मैनरिज्म में, जिनके व्यवहार में कुछ ऐसी बात होती है जिससे कि हमारा मूड खराब हो जाता है, हमारा सारा का सारा दिन भी खराब होने की कगार पे आ जाता है। तो लोगों के मैनरिज्म में ऐसी क्या चीज मिलती है आपको जो आपको डिस्टर्ब कर देती हो?
1: सबसे ज्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा होती है हमसे कि हमारे बेस्ट करने के बावजूद भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते। ऐसे बहुत से रिश्ते होते हैं और उस वक्त जो उनका बिहेवियर या उनके बात करने का तरीका, दैट इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। और हम लोग हमेशा जिंदगी में परफेक्ट नहीं हो सकते, सो जो लोग हमेशा हमारे में परफेक्ट एटीट्यूड ढूंढते हैं वहां पर बहुत परेशानी आ जाती है। बिकॉज लाइफ इज सिंपल, नॉट एवरीबॉडी इज परफेक्ट, लेकिन लोगों को मैच करने में काफी वक्त चला जाता है, दैट इज विच इज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट मी।
0: वैसे भी रविका जी ये बात कही गई है, यू कैन नॉट मेक एवरीबॉडी हैप्पी ऑन दिस अर्थ, सबको तो आप खुश कर भी नहीं सकते।
1: जी जी बिल्कुल।
0: दूसरी बात ये भी है कि उम्मीदें इस दुनिया की, मेरा पर्सनल मानना यह है कि उम्मीदें इस दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ है। जब हम उम्मीद करना शुरू करते हैं तो हम पाने और खोने में लग जाते हैं और फिर फिर दुख आना शुरू हो जाता है।
1: बस यही एक परेशानी है कि उम्मीदें कभी कभी बहुत ज्यादा लोग लगा लेते हैं,
0: बस,
1: और जरूरी नहीं है कि हम पूरी कर पाए तो रिश्ते खराब हो जाते हैं।
0: सही कहा आपने, बहुत खूब। चलिए दोस्तों, फिर एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं रविका जी की आवाज में।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत। रविका जी, आपकी जिंदगी में, आज तक की जिंदगी में सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि, अकॉम्प्लिशमेंट क्या रहा है?
1: देखिए, कहने के लिए मैंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, चाहे वो सिंगिंग के लिए हो। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा तो जब हम लोग अपने बच्चे को जन्म देते हैं, दैट इज द मोस्ट प्राउड मोमेंट, बट दैट इज अ नेचुरल फैक्ट ऑफ लाइफ। बट अगर हम बात कर रहे हैं एज माय करियर, अदर देन हैविंग सो मेनी अवार्ड्स, एक चीज जो मुझे आज की तारीख में सबसे ज्यादा उपलब्धि देती है, दैट इज माय जज्बात शो व्हिच आई एम डूइंग ऑन फेसबुक। कहने के लिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हर बुधवार मैं 5,000 से 10,000, कभी कभी 50,000 लोगों को एक साथ में 3 घंटे उनकी पसंद के गाने गाती हूँ, और उसके बावजूद भी रात के 12:30 बजे तक लोग मेरा पूरी तरह से साथ देते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं उन्हें थोड़ी सी खुशी दे पा रही हूँ उनकी पसंद के गीत गाकर, या उन्हें उस दुनिया में ले जाकर जो शायद वो भूल चुके हैं। आई लव टू टेक वेरी ओल्ड सॉन्ग्स जो काफी बुजुर्ग सुनते हैं, ऑल्सो आई गो टू ओल्ड एज होम्स जहां पर मैं उनके लिए गाती हूँ। तो ये चीजें मुझे बहुत बहुत खुशी देती हैं, अदर देन ऑल द यू नो जो अवार्ड्स वगैरह, तो ऑफ कोर्स वो प्राउड मोमेंट्स हैं, बट इससे ज्यादा बड़ा अवार्ड नहीं है जब लोग आपको ब्लेसिंग्स देते हैं।
0: आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमाया मैम, बिल्कुल ठीक फरमाया। जब आप सेल्फलेसली किसी के लिए कुछ करते हैं, जैसे आपने कहा आप ओल्ड एज होम में जाकर उन लोगों के लिए जब गाती हैं, तो जाहिर से बात है उनके जो जज्बात आपके लिए उमड़ते होंगे, उनके आशीर्वाद आपके लिए आते होंगे, या जो खुशी उन्हें मिलती होगी, वो सबसे बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट है। यूं कहने को तो उसकी कोई कीमत नहीं है आज की इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में, कोई कीमत नहीं है उनकी। लेकिन
1: एग्जैक्टली ये जो मटेरियलिस्टिक दुनिया में जब इमोशंस जुड़ते हैं, जिसको मैं जज्बात बोलती हूँ, मुझे लगता है इससे बड़ी उपलब्धि किसी के लिए कुछ नहीं हो सकती इन टुडेज वर्ल्ड।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये महसूस करने वाली बात है मैम।
1: जी जी जी
0: दोस्तों, महसूस कीजिए इस चीज को और सुनिए एक प्यारा सा गीत रविका जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं रविका जी। क्या आप सपनों में विश्वास रखती हैं, रात को देखने वाले सपने?
1: बिल्कुल बिल्कुल, अगर सपने ना हो, उम्मीदें ना हो, तो हम मुकाम पाने की कोशिश नहीं करते। और अगर दिल से मेहनत की जाए तो सपने भी सच होते हैं। मैं आज भी अपने हर सपने में सपने भी देखती हूँ और उन सपनों पर मेहनत भी करती हूँ, बिकॉज सपने देखेंगे तो कुछ आगे जिंदगी में पाने की कोशिश करेंगे।
0: आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। हमारे देश के ही पूर्व प्रेसिडेंट माननीय राष्ट्रपति जी डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद भी कह गए कि सपने देखते रहिए, सपने देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सपने देखेंगे नहीं, हम पूरे कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे।
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत खूब। चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत रविका जी की ही आवाज में।

0: खूब। रवि का जी, आपके जीवन में जैसे मैंने ऊपर पूछा था लेकिन उससे थोड़ा सा अलग ये है कि आपके जीवन में सबसे अच्छा तोहफा, गिफ्ट आज तक क्या मिला है और किसने दिया है?
1: कि अगर आप मटेरियलिस्टिक चीजें बोलेंगे तो वैसी तो बहुत बहुत ज्यादा मिली है, बिकॉज दैट इज लाइफ राइट। बट ऑफ कोर्स जो फर्स्ट नाइट पे मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे रिंग दी थी, उसकी वैल्यू मेरी जिंदगी में बहुत बहुत ज्यादा है। नॉट बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ द रिंग, बिकॉज वो मोमेंट जिंदगी का सबसे प्यारा मोमेंट था। एंड अगर आप नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों की बातें करेंगे तो जो इतना प्यारा सा मेरा परिवार है, उनका सेल्फलेस लव, और आज की तारीख में फेसबुक या संगीत की दुनिया में या जहां पर मैं गाने गा रही हूँ, उनका जो सेल्फलेस ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो और चाहे वो नॉन मटेरियलिस्टिक।
0: बहुत खूब, बहुत बहुत क्यूट, बड़ी प्यारी बात। दोनों ही चीजें आपने मुझे बताई कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का तोहफा और जज्बातों के जिंदगी में, जज्बातों के दुनिया का तोहफा क्या क्या है वो आपने हमें बताया। अमेजिंग। तो दोस्तों, एक और बहुत ही खूबसूरत गीत रवि का जी की ही आवाज में

0: रविका जी, अब हम अपने प्रोग्राम के उस जगह आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सुनने वालों के लिए और नए सिंगर्स के लिए, अब कुछ मैसेज दीजिए, कुछ बात कीजिए उनसे।
1: सबसे ज्यादा तो फर्स्ट आई विल से थैंक्स टू यू, टू द होल टीम फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सेकेंडली, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मेरे लिए कि सभी का प्यार, सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, मेरे साथ जुड़े रहना, मेरे संगीत को सुनना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं बात करूंगी बाकी लोगों के लिए कि हमेशा जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो किसी भी फील्ड का क्यों ना हो। अपने आप को खुश रखिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए एंड ट्राई टू फॉलो योर पैशन, बिकॉज अगर आपने कहीं हिम्मत हार दी, आपका पैशन बीच में ही दम तोड़ देगा। ऑलवेज बी बोल्ड टू टेक स्टेप्स जहां पर बिना किसी का दिल दुखाए, बिना अपने मान मर्यादा और डिग्निटी को खराब किए अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए और जहां तक हो सके किसी का दिल ना दुखाए। दैट्स ऑल।
0: अमेजिंग, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही सीधा साधा और भावनात्मक मैसेज। दोस्तों, रविका जी के साथ हमने बातचीत की, उनके विचार हमने सुने, उनकी बातें हमने सुनी, उनको बहुत अच्छे तरीके से जाना और उनके बहुत खूबसूरत गीत भी हमने सुने। रविका जी, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए।
1: शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, मीन्स अ लॉट, एंड सभी को बहुत सारा प्यार।
0: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर? हमें अपने फीडबैक जरूर दें और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सजते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें।

0: नमस्कार दोस्तों, आज के कलाकार का एक अमेजिंग एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो साथी नितिन। एक नए प्रतिभा के साथ आज हम परिचित होते हैं। उनका नाम है रति शर्मा जी। रति जी, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द शो।
1: थैंक यू सो मच नितिन जी, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस शो में पार्टिसिपेट करके।
0: जी रति जी, जरा आपका इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं?
1: हाँ बिल्कुल, मेरा नाम रति शर्मा है। संगीत और आवाज की दुनिया में एक बहुत ही छोटी सी मुसाफिर। मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ, लेकिन बोर्न एंड ब्रॉट अप कलकत्ता में। अभी मैं बैंगलोर में सेटल्ड हूँ और यहीं पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल काम कर रही हूँ।
0: ओके, तो दोस्तों आपने सुना रति शर्मा जी का इंट्रोडक्शन, तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत रति शर्मा जी की बहुत ही प्यारी आवाज में।

कॉम्प्लेन बोले मैं अच्छा हूँ, क्या सबने सोचा मैं बच्चा हूँ, चॉकलेट खाने में टेंशन है, दूध भी।

0: शानदार गायकी।
1: थैंक यू सो मच। थैंक यू।
0: गाने का शौक आपको कब से हुआ रति जी?
1: गाने का शौक तो मुझे बहुत पहले से था, स्कूल टाइम से ही था। मतलब मैं ज्यादा सुनती थी, तब मैं पहले डांसिंग में बहुत शौक रखती थी, तो डांसिंग के दौरान जो भी गाने बजते थे मैं उनको बहुत ध्यान से सुनती थी। लेकिन धीरे धीरे स्पेशली आफ्टर 2024 मेरे गाने का शौक बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैं सिंगिंग एप्स में इंट्रोड्यूस की अपने आप को, स्मीहुल, और फिर यहाँ पे बैंगलोर में एक राग एंड रिदम नाम का एक कैरियोके क्लब है, वहां जाना शुरू किया और बहुत सारे लोगों के सामने पब्लिकली भी गाना मैंने शुरू किया। 2024 के बाद से मेरी म्यूजिकल जर्नी एक्चुअली में स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और अपने आप को आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की क्लासेस भी ज्वाइन की और वहां मुझे बहुत प्रोत्साहित मिला और बहुत लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला। मेरी जो गुरु है, जो मेरी टीचर है, वो मेरी फ्रेंड जैसी है बिल्कुल, और उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो इस तरीके से मेरी म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट हुई।
0: ओके, तो दोस्तों आपने सुना रति जी ने 2024 में सीरियसली गाना शुरू किया, फिर काफी सारे क्लब्स में ज्वाइन किए और फिर सिंगिंग एप्स में ज्वाइन किए, तो बहुत बढ़िया। तो चलिए सुनते हैं ना एक प्यारा सा गीत रति जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज में।

0: बहुत ही प्यारी गायकी।
1: थैंक यू सो मच।
0: रति जी, आप पब्लिकली परफॉर्म करते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका स्टेज परफॉर्मेंस कैसा रहा, पहला स्टेज परफॉर्मेंस?
1: मैंने पहला स्टेज परफॉर्मेंस एक्चुअली बहुत पहले दिया था, जब मैं 2016 या 17 में, जब मैं ऑफिस में, मेरे ऑफिस में एक एनुअल डे हुआ था, तो मुझे किसी ने बोला था कि तुम्हारी आवाज अच्छी है तो तुम गाओ एक गाना। तो मैंने ऐसे अपने आप को थोड़ा हिम्मत दे के गाने की कोशिश की। तो वो मैरियट में हुआ था वो फंक्शन, बहुत बड़ा और काफी सारे लोग थे, तो वहां मैंने गाया था गाना मैं तेनु समझावा की। तो उस वो परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो गया मेरा कि मैंने कभी खुद भी नहीं सोचा था। तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था।
0: क्या बात
1: मेरे स्टेज परफॉर्मेंस में, तो इतना मुझे प्यार और इतना लोगों का अप्रिसिएशन मिला उसके बाद कि मुझे मोटिवेशन तो आया गाने का, लेकिन फिर वही घर गृहस्थी और काफी सारी चीजों में उलझ गई मैं, और फिर बहुत ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो पहला परफॉर्मेंस मेरा वही था और बहुत ही अच्छा गया था, मुझे अभी तक याद है, मैं कभी नहीं भूलूंगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पहला स्टेज परफॉर्मेंस सबको याद रहता है और रहना भी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं ना एक खूबसूरत सा गीत रति जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज में।

0: बहुत ही प्यारी गायकी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: रति जी, आपको किस तरह का संगीत सबसे ज्यादा पसंद है?
1: अगर गाने सुनने की बात की जाए तो मुझे ज्यादा अनप्लग्ड रोमांटिक वर्जन जो आजकल चलते हैं बहुत ज्यादा, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसका रीजन ये है कि उसमें बहुत ही रॉ वॉइस निकल के आता है सिंगर्स का, और उसमें ज्यादा मुझे कनेक्शन फील होता है। भले ही बहुत ज्यादा परफेक्शन ना हो उसमें, लेकिन मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, वो बहुत सूदिंग होता है। लेकिन अगर वही मैं गाने की बात करूँ, खुद के सिंगिंग की बात करूँ, तो मुझे वो जो जितने भी जैजी टाइप के नंबर्स होते हैं ना, वो जितने भी रेट्रो जैजी सॉन्ग्स और नए वाले जैजी सॉन्ग्स, जैसे कि आज की रात है या सुनिधि चौहान के कुछ नंबर्स है, वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं गाने में, क्योंकि मुझे उसमें मौका मिलता है अपना वॉइस मॉड्यूलेट करने का, हरकतें डालने का। उसके जो सैक्सोफोन और पियानो के जो धुन बजते हैं पीछे, वो मुझे बहुत ही वाउ फैक्टर लगता है। तो मुझे जैजी नंबर्स बहुत पसंद है गाने में।
0: कोई एक गीत आपको जो अच्छा लगता होगा, एक आध लाइन आप जरा गुनगुना दीजिए ना प्लीज।
1: नहीं नहीं नहीं, ये बातें है पुरानी, कैसी पहली है ये, कैसी पहली जिंदगानी, थामा हरो का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी, कैसी पहली है ये, कैसी पहली जिंदगानी, ओ बेबे।
0: वाओ, फैंटास्टिक, बहुत ही अलग, बहुत ही अलग, बहुत ही शानदार।
1: हाँ, थैंक यू सो मच।
0: तो दोस्तों, आपने सुना कितनी अच्छी तरह से उन्होंने ये गाने को प्रस्तुत किया है रॉ वॉइस में। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सुनते हैं ना एक बहुत ही प्यारा गीत रति जी की बहुत ही शानदार आवाज में।

0: फैंटास्टिक सिंगिंग रति जी।
1: थैंक यू सो मच।
0: आपने पहली बार किस गायक या गायिका का गाना गाया था?
1: इतना तो मुझे याद नहीं है क्योंकि ऐसे मैं हमेशा गुनगुनाती ही रहती थी, लेकिन जिस टाइप की मेरी वॉइस टेक्सचर है, जैसे मुझे लोगों ने फीडबैक दिया, उस हिसाब से मैं हमेशा ज्यादा सुनिधि चौहान और आशा भोसले के गाने ही गाती थी।
0: ओके
1: तो वैसे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन एक सॉन्ग है जो मेरा फेवरेट है और मैं गाती भी थी पहले बहुत, वो एक सॉन्ग है, जब छाए मेरा जादू कोई बच ना हो। हाय
0: यस, आपको आशा भोसले का जो वॉइस टेक्सचर है वो मिलता है, पक्की बात है ये।
1: कोशिश करती हूँ मैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: थैंक यू सो मच।
0: बस आप रियाज ज्यादा करते रहिए और खिलेगा आपका वॉइस, पक्की बात है।
1: बिल्कुल मैं एकदम लगी हुई हूँ
0: जी। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं ना एक प्यारा सा गीत रति जी की बहुत ही प्यारी आवाज में।

0: बहुत ही मधुर लगता है मुझे, और एकदम नेचर और डिविनिटी की तरफ लेके जाता है, क्योंकि हमारे कृष्ण कन्हैया भी मुरली बजाते थे ना,
1: जी,
0: तो वो फ्लूट जो है वो बहुत ही मुझे डिवाइन सा एक फीलिंग देता है, तो फ्लूट मेरा फेवरेट है। हाँ
1: फ्लूट बहुत स्वीटेस्ट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
0: हाँ हाँ और उसको लंबे लंबे टाइम तक सुन भी सकते हैं,
1: जी,
0: मतलब बहुत
1: और
0: देर तक शोर नहीं होता इतना।
1: जी, और वैसे भी जब फ्लूट जब बजता है तो ऐसा लगता है कि कहीं दूर से कोई बैठे फ्लूट बजा रहा हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हाँ
1: तो दोस्तों, आपने सुना रति जी का जो फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है फ्लूट। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत रति जी की प्यारी आवाज में।

0: बहुत ही शानदार गायकी।
1: थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
0: अब एक बात बताइए, स्टेज पर सबसे बड़ी चुनौती वो क्या होती है?
1: स्टेज पे सबसे बड़ी चुनौती होती है हमारा आत्मविश्वास, क्योंकि जब हम स्टेज में गाते हैं तो सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। एक बंद रूम में गाना और एक स्टेज में गाना बहुत ही अलग बात होती है। बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जैसे कि कभी साउंड की प्रॉब्लम, कभी माइक की प्रॉब्लम, लोगों की मूवमेंट, ऑडियंस का कैसा है हमारी तरफ अप्रोच, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। तो कभी अगर हमारा एक छोटा सा ताश

0: जाए या छोटा सा बीट छूट जाए तो हम एकदम नर्वस हो जाते हैं बीच में, और हम फिर बाकी का गाना भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते। इसीलिए आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है ताकि उस सिचुएशन में भी हम अपने वॉइस को कंट्रोल करके प्रॉपरली गाने को कंप्लीट कर सके। एंड वैसे भी द शो मस्ट गो ऑन, कभी ऐसे बीच में रुकना भी नहीं चाहिए। मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि कभी मुझसे कोई गलती हो जाए बीच में लाइव परफॉर्मेंस में तो मैं उसको वहां रोकू ना, उसको वैसे ही कंटिन्यू करूं अपने आत्मविश्वास के साथ। तो मेरे लिए आत्मविश्वास बहुत ही जरूरी फैक्टर है सिंगिंग में।
1: जी, जैसे कि कहीं पर भी आप परफॉर्म करते हैं और गलती होती है तो ऐसे दिखाना जरूरी है कि वो गलती नहीं हुई है, उसमें कुछ इनोवेशन हुआ है, इनोवेशन आपने लाया है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
1: उसी तरह से ही वो परफॉर्मेंस को आगे चलना चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल, कभी कभी ऑडियंस को समझ में भी नहीं आता लेकिन हम अपने एक्सप्रेशन से उनको समझा देते हैं कि हमने गलती कर दी है, तो उस चीज को हमें नहीं करना चाहिए। मैं खुद भी उसको अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। ये बहुत ही पते की बात कही है रति जी ने कि द शो मस्ट गो ऑन। कुछ भी गलती हो तो गलती है, ऐसे अपने मन में जरा भी डाउट मत रखिए। हालांकि हमें पता है कि हमने गलत गाया है या हमने कोई बीट को मिस किया है, मगर उसको कैचअप करके उसी को आगे लेके जाना, उसको एक खूबसूरत मोड़ देना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये हमेशा याद रखिएगा बात को। तो इसी सोच के साथ चलो आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत रति जी की बहुत ही प्यारी आवाज में।

0: बहुत ही शानदार गायकी।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: रति जी, ये बताइए कि गाने में आपको मुखड़ा ज्यादा पसंद है या अंतरा?
1: वैसे तो मुखड़ा और अंतरा दोनों ही बहुत ही यूजफुल पार्ट होते हैं सॉन्ग्स के। मुखड़ा जैसे कि कोई हुक स्टेप है, वो एक तरह का ट्रेलर है, हमें नहीं पता मूवी में क्या स्टोरी है, तो वो एक ट्रेलर है मुखड़ा। लेकिन मुझे पर्सनली अंतरा बहुत ही पसंद है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि जो सिंगर है वो अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है और उस गाने का क्या तत्व है, वो हमें अंतरा से ही पता चलता है। तो मुझे पर्सनली अंतरा बहुत ही पसंद है। और कुछ गानों के तो अंतरा जो होते हैं, स्टैंजास जो होते हैं, वो बिल्कुल अलग अलग भी होते हैं, क्योंकि उनके अलग अलग भाव होते हैं। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जैसे लंबी जुदाई जो सॉन्ग है, उसका हर एक स्टैंजा ही अलग है, हर एक स्टैंजा अलग ही इमोशन को इमोट करता है। तो इसीलिए मुझे पर्सनली अंतरा बहुत पसंद है, लेकिन मुखड़ा इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही लोगों को याद रह जाता है
0: जी। और कभी कभी आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं कि जब भी आप परफॉर्मेंस करते हैं स्टेज पे, तो आप शुरुआत अंतरे से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: अंतरे से जो उसका जो म्यूजिक शुरू होता है, जैसे इंटरल्यूड शुरू हो जाता है, तो लोगों को एक गेसिंग मोड में चले जाते हैं कि भाई ये गाना कौन सा गाना था,
1: कौन सा है। हाँ,
0: तो उनका उनका जो ऑडियंस का जो गाने की तरफ जो खिंचाव वो ज्यादा हो जाता है, और जब आप उसको स्टार्ट करोगे तो एक अलग सा एप्रिसिएशन मिल सकता है आपको। तो यू मस्ट ट्राई समथिंग डिफरेंट एज वेल, मेरे हिसाब से।
1: बिल्कुल बिल्कुल नितिन जी, मैं फॉलो करूंगी ये
0: जी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत रति जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज में।

0: बहुत ही बढ़िया गायकी।
1: धन्यवाद।
0: अब ये बताइए, ऐसा कोई गाना जिसे गाने में आपको बहुत बहुत मजा आता हो?
1: मुझे वो जो जुगलबंदी वाले गाने होते हैं ना, छेड़छाड़, लड़की नाराज हो गई, लड़का मना रहा है, या फिर लड़का बोल रहा है अगर मैं कहूँ तो उसमें लड़की कुछ और बोल रही है, ठीक है, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, तो उसमें लड़की जवाब दे रही है अपना, इस टाइप के जो जुगलबंदी वाले सॉन्ग होते हैं ना, ये मुझे बड़े पसंद है। गाने में भी मजा आता है और जो हमारे साथ गाता है मुझे लगता है उसको भी बड़ा मजा आता है। और जो पुराने रेट्रो टाइप के जो गाने होते हैं ना, जिसपे नेजल वॉइस बहुत यूज होती है, वो गाने भी मुझे बहुत मजा आता है गाने में, मुझे पर्सनली बहुत मजा आता है।
0: जैसे
1: एक गाना है, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओए होए,
0: किशोरदा का।
1: इस टाइप के गाने जिसमें हम वॉइस मॉड्यूलेशन कर सकते हैं और थोड़ा मजा भी ले सकते हैं, इस टाइप के गाने मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपने सुना, क्योंकि रति जी की गायकी में काफी इनोवेशन है, तो आप लोग भी उसे ट्राई कर सकते हैं और प्रैक्टिस जरूर करिए। प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन वेरी परफेक्ट। और क्योंकि म्यूजिक एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है, इट ऑलवेज रिमेन्स इनकम्प्लीट। द मोर यू लर्न द मोर यू गेन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ना और सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत से गीत रति जी की बहुत ही प्यारी आवाज में।

0: बहुत ही शानदार गायकी रति जी।
1: थैंक यू सो मच।
0: रति जी, आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: मैं लिसनर्स को यही बताना चाहती हूँ कि म्यूजिक जो है वो सबकी लाइफ बदल सकता है, क्योंकि मेरी लाइफ बदली है म्यूजिक ने। मुझे अब डर नहीं लगता अकेले घर में भी रहने से, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। अगर मेरे घर पे कोई नहीं है तो मुझे लगता है अरे कोई बात नहीं, मेरा दोस्त म्यूजिक तो है ना। तो म्यूजिक हमारी जिंदगी ही बदल सकता है। और गाना सुनते सुनते अंदर एक इमोशनल कनेक्ट हो जाना, आंखों में आंसू आ जाना और रोते रोते हंसने लग जाना, अगर ये आप सीख गए म्यूजिक के थ्रू तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। वो ना पैसा लेता है आपसे और ना आपसे कुछ मांगता है। आप जितना गलती करोगे वो उतना आपके पास आएगा, वो दूर भी नहीं जाएगा। वो जितनी बार आप कोशिश कर लो वो आपसे नाराज भी नहीं होगा कि अरे मुझे तू गलत क्यों गा रहा है, ऐसा नहीं बोलेगा वो। तो म्यूजिक एक ऐसा चीज है जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है और वो आपके साथ हमेशा रहेगा विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो गाते रहिए सब लोग, हमेशा गाइए, मुस्कुराइए, इमोशनली अपने आप को कनेक्ट कीजिए म्यूजिक से और फिर देखिए जिंदगी कितनी सुंदर हो जाती है।
0: दोस्तों, ये बहुत ही पति की बात कह दी है रति जी ने। तो
1: थैंक यू सो मच।
0: तो चलिए इसी सोच को आगे बढ़ाएंगे और हमारी जिंदगी में म्यूजिक को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हम दिखाएं म्यूजिक की तरफ। इसी के साथ हम ये प्रोग्राम को संपन्न करते हैं। थैंक यू वेरी मच रति जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।
1: थैंक यू सो मच नितिन जी फॉर मेकिंग मी हियर एंड कॉलिंग मी हियर एंड मेकिंग दिस हैपन। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच।

दोस्तों, आज के कलाकार के इस सुरीले से सफर में बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है आज की ये महफिल आपके दिल में एक मीठी याद छोड़ गई होगी। दोस्तों, कुछ गीत खत्म नहीं होते, बस दिलों में बस जाते हैं और जब भी याद आते हैं तो फिर से मुस्कुराहट बिखेर जाते हैं। तो हम फिर आएंगे नए सुरों और नए कलाकारों के साथ। तब तक अपने दिल को बस यूं ही गुनगुनाने दीजिए।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।